आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 जुलाई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। सुप्रभात आगरा।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर प्रातः के 6 बजे हैं। अब आप आकाशवाणी से समाचार सुनेंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमियों को सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जेआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रूपये का अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमी कंडक्टर मिशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेंगी और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाएंगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नायडू ने अगले वर्ष 1 जनवरी से इस योजना के अनिवार्य चरण से पहले सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन अकाउंटिंग और आपूर्ति श्रृंखला विकास के लिए देश की कार्य योजना की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

96.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 और 20 सेकंड हुए हैं। आराध्य के श्री चरणों में निवेदित है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जगत सकलाय विघ्नेश्वराय एक दंताय नमो नमः, गौरी सुत शंभु सुताय सुरप्रियाय नमो नमः।

आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। जन्म मरण का टूटे बंधन, शरण मिले प्रभु तेरी, दया निधि हे कृपा।

राधा की प्रिय मधुर मनोहर, जय जय छैल बिहारी, लाज रखो अपने भक्तों की, हे प्रभु बांके बिहारी।

0: इस नश्वर संसार में भगवन बस तुमसे ही आशा है, जीवन नैया पार लगा दो इतनी सी अभिलाषा है। इसी के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न हुआ। इसमें आज आपने साधना सरगम हरिओम शरण जगजीत सिंह और साथियों के स्वर में भजन सुने। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं चिंतन। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय के विचार।
1: ये भारतवर्ष जो कि हिंदुस्तान के नाम से प्रसिद्ध है, बड़ा पवित्र देश है। धर्म सुख देने वाला ये देश सब देशों से उत्तम है। कहते हैं देवता लोग ये गीत गाते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत भूमि में होता है, जिसमें जन्म लेकर मनुष्य स्वर्ग का सुख और मोक्ष दोनों पा जाता है। ये हमारी मातृभूमि है, हमारी पितृभूमि है। जो लोग सुजन्मा हैं, जिनके जीवन बहुत अच्छे हुए हैं, उन राम कृष्ण बुद्ध आदि महापुरुषों के, महात्माओं के, आचार्यों के, ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों के, गुरुओं के, धर्मवीरों के, शूरवीरों के, दानवीरों के, स्वतंत्रता प्रेमी देशभक्तों के उज्जवल कामों की ये कर्म भूमि है। इस देश से हमको परम भक्ति करनी चाहिए। धर्म के अनुसार चलने वालों को कभी इसका त्याग नहीं करना चाहिए। देश की उन्नति के कामों में देशभक्त, पारसी, मुसलमान, ईसाई, हिंदू, सिख और यहूदियों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। सब भाइयों को मिलकर अनाथों, विधवाओं, धार्मिक स्थानों और गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। स्त्रियों और पुरुषों को निडरता, सच्चाई, चोरी का त्याग, ब्रह्मचर्य, धीरज और क्षमा का सदा अमृत के समान सेवन करना चाहिए। सनातन धर्मी, आर्य समाजी, सिख, जैन और बौद्ध आदि सब हिंदुओं को चाहिए कि वे अपने अपने विशेष धर्म का पालन करते हुए एक दूसरे के साथ प्रेम और आदर बरतें, अपने विश्वास में दृढ़ता, दूसरों की निंदा का त्याग, मतभेद में सहनशीलता और समस्त प्राणी मात्र से मित्रता रखनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि जिसको वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा उसके साथ करे, उस काम को वो भी किसी दूसरे के प्रति ना करे, क्योंकि वह जानता है कि यदि उसके साथ कोई ऐसी बात करता है जो उसको प्रिय नहीं है तो उसको कैसी पीड़ा पहुंचती है। मनुष्य को चाहिए कि ना किसी से डरे और ना किसी को डर पहुंचावे। भारतवर्ष केवल हिंदुओं का देश नहीं है, ये तो मुस्लिम, ईसाई, पारसियों का भी देश है। ये देश तभी सम उन्नत और शक्तिशाली हो सकता है जब भारतवर्ष के विभिन्न जातियां और यहाँ के विभिन्न संप्रदाय पारस्परिक सद्भावना और एकात्मकता के साथ रहें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म में दृढ़ आस्था होनी चाहिए, किंतु दूसरे धर्मों की निंदा नहीं करनी चाहिए। मुझे अपने धर्म में बड़ी आस्था है, किंतु जब मैं गिरजाघर या मस्जिद के सामने से गुजरता हूँ तो मेरा सिर स्वयं श्रद्धा से झुक जाता है, क्योंकि मंदिरों की तरह ये भी भगवान भक्ति के पुण्य स्थान हैं।
0: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित मदन मोहन मालवीय के विचार। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से

रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर 6:30 और 20 सेकेंड हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज रात 8 बजे आप सुनेंगे संसद में आज होने वाली कार्यवाही की समीक्षा। रात 9:30 बजे कार्यक्रम होगा कंट्री वाइड इनसाइट्स और रात 10 बजे हम प्रसारित करेंगे संसद में आज होने वाले प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 9:15 पर कार्यक्रम जिले की हलचल हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम विवरण के तुरंत बाद 6:35 पर हम प्रसारित करेंगे श्री रामचरित मानस गान। खेती की बातें कार्यक्रम में आज सुबह 7:45 बजे हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर AK सिंह की वार्ता। विषय रहेगा पशुओं में बांझपन रोग। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 7:10 पर डॉक्टर पुनीत अग्रवाल की लघु वार्ता प्रसारित की जाएगी। विषय रहेगा पेट रोगों से बचाव। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास आप सुनते हैं 7:31 पर। कार्यक्रम होगा आज के कलाकार। ये कार्यक्रम आज प्रसिद्ध पार्श्व गायक सोनू निगम पर केंद्रित होगा। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुनेंगे 11:30 पर। इसमें आज के विषय हैं मित्रों के साथ सहज होती जिंदगी, सच्चे मित्रों का सम्मान जरूरी। दूसरा विषय रहेगा मानव तस्करी, मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध। महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा घर संसार दिन में 1:15 पर। इसमें आज चर्चा करेंगे जल संचयन भविष्य का वरदान विषय पर। इसके अलावा परिवेश में हम बात करेंगे बदलते परिवेश में दोस्ती के मायने। क्रम रहेगा होम डेकोर, ज्ञान विज्ञान, कुछ तुम कहो कुछ हम। इसी कार्यक्रम में सुश्री गीता कपूर धवन की वार्ता प्रसारित की जाएगी समय होत बलवान। स्वास्थ्य समस्याओं पर आधारित कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर हम प्रसारित करेंगे 4:00 बजे। इसमें आज भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी बच्चों के विरुद्ध आक्रामक व्यवहार और हिंसा। इस विषय पर डॉक्टर साहब सिंह से भेंट करेंगे अनिंद्र सिंह। युवाणी कार्यक्रम में 5:30 बजे हमारे युवा श्रोता चर्चा सुनेंगे। विषय रहेगा मैत्री और विश्वास। क्रम रहेगा आज का सवाल। इसी कार्यक्रम में एक भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी हॉस्पिटलिटी और होटल क्षेत्र में करियर संभावनाएं। वार्ताकार होंगे मृदुल सचदेवा और आपसे भेंट करेंगे विनय प्रताप सिंह। ग्राम्यलोक कार्यक्रम में 6:00 बजे वार्ता प्रसारित की जाएगी वर्षा ऋतु में दुधारू पशुओं की खिलाई पिलाई और देखभाल। वार्ताकार होंगे डॉक्टर रेवती लाल राजपूत। इसी कार्यक्रम में हमारे किसान भाई मंडी भाव की जानकारी ले सकेंगे, मौसम की जानकारी दी जाएगी और लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे। मजदूर मंडल कार्यक्रम में 6:30 बजे चर्चा करेंगे मानव तस्करी के खिलाफ दिवस विषय पर। क्रम रहेगा देश दुनिया, मेरा देश मेरी शान। सुश्री मंजू द्विवेदी की वार्ता प्रसारित की जाएगी। विषय रहेगा उपभोक्ता के अधिकार और संरक्षण। क्रम रहेगा आज का प्रश्न, ज्ञान सागर और सेहत टिप्स। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम में आज

डॉक्टर रेखा पत्सारिया की वार्ता प्रसारित की जाएगी, अंग्रेजियत का बढ़ता मोहपाश। कार्यक्रम होगा मेरी माटी मेरा देश, शाम 7:31 पर। कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस का आज का ये प्रसंग।

राजा जनक की यज्ञशाला में शिव के जिस धनुष को रावण तथा बाणासुर जैसे जगत विजयी वीर हिला तक नहीं सके, उसे खंडित करने के लिए गुरु विश्वामित्र का आदेश पाकर श्री राम उठ खड़े हुए। इधर लक्ष्मण ने अग्रज को धनुष की ओर ताकते देखकर अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाकर दिक्पालों, कच्छप तथा शेषनाग और वराह को सावधान होकर पृथ्वी को दबाए रहने का आदेश दिया ताकि वो हिलने ना पाए। श्रीराम धनुष के निकट पहुंचे। सबका संदेह और अज्ञान, अभिमानी तथा दुष्ट राजाओं का अभिमान, परशुराम के गर्व की क्रूरता, देवताओं की कातरता, सीता जी की सोच, राजा जनक का संशय, सभी मानो शिव जी के धनुष रूपी जलयान पर आकर सवार हो गए। लगा वो राम की भुजाओं के बल का सहारा पाकर भव सागर पार कर जाना चाहते हैं। श्री राम ने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और बड़ी सहजता से धनुष को उठा लिया। उसे उठाते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा कि एक भयंकर नाद के साथ वो दो खंडों में टूटकर पृथ्वी पर आ गिरा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार थे भूपिंदर सिंह, संगीत संयोजक सतीश भाटिया। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। आकाशवाणी आगरा से अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर एके सिंह की वार्ता। विषय है पशुओं में बांझपन रोग।
1: प्रिय किसान बंधुओं, पशुओं में बांझपन का होने के कई कारण हैं, जैसे कि मादा पशुओं जैसे गाय या भैंस का गर्मी में नहीं आना। साधारणतः गर्भित मादा पशु शांत रहते हैं और उनमें गर्मी के लक्षण नहीं पाए जाते। इसी प्रकार प्रायः ब्याने के 2 या 3 माह तक भी पशु गर्मी में नहीं आते, परंतु इसके पश्चात गर्मी के लक्षण नहीं दिखने पर मादा पशु को बांझपन का रोग हो सकता है। मादा पशुओं के जनन अंगों में स्थित रजग्रंथि पर गांठ या मस्से हो जाने पर भी पशु गर्मी में नहीं आते, और ऐसी दशा में कुशल पशु चिकित्सक की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। इसी प्रकार कुछ मादा पशुओं का ऋतुकाल छोटा होता है, विशेषकर ओसर, बछिया और पाड़ियों में, जिसकी वजह से पशुपालक अपने पशुओं में गर्मी के लक्षण ठीक प्रकार से देख नहीं पाते और उनके पशु गर्भित होने से वंचित रह जाते हैं। अतः ऐसे मादा पशु जो देरी से गर्मी में आते हैं या बिल्कुल गर्मी के लक्षण नहीं दिखाते, उन्हें पशु चिकित्सक को दिखाकर बांझपन की चिकित्सा करानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जिस नर अथवा मादा पशुओं के खान पान का शुरू से ध्यान न दिया जावे, वैसे पशुओं में भी बांझपन के रोग हो सकते हैं। पशु चारे में उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा न होने पर एवं लगातार कई दिनों तक ऐसा चारा बढ़ते बछियों और पाड़ियों द्वारा खाए जाने पर उनकी शारीरिक वृद्धि में देरी होती है। फलस्वरूप जननांगों का उचित विकास नहीं होता और मादा पशु देरी से ऋतुकाल के लक्षण दिखाते हैं अथवा बिल्कुल नहीं दिखाते। अतः यहाँ पर पशुपालकों को चाहिए कि वे प्रारंभ से ही अपने पशुओं को अच्छा पौष्टिक चारा दें, जिससे उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण पशुओं को प्राप्त हों। पौष्टिक आहार खिलाने से पशुओं की शारीरिक वृद्धि में काम आने वाली हार्मोन ग्रंथियाँ भली प्रकार से कार्य करती हैं और उनसे पर्याप्त मात्रा में हार्मोन शरीर को प्राप्त होता है, जो कि पशुओं को बांझपन रोग से बचाते हैं। किसान बंधु अपने पशुओं के चारे में हरे चारे को अवश्य शामिल करें, क्योंकि इसमें विटामिन ए बहुतायत होता है, जो कि पशुओं की प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा सादा नमक 50 ग्राम तथा 100 ग्राम खड़िया मिट्टी भी पशुओं के चारे में प्रतिदिन मिलाने से पशुओं की शारीरिक वृद्धि और प्रजनन क्षमता के लिए आवश्यक खनिज जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, फॉस्फोरस व विटामिन डी आदि प्राप्त होते हैं। आजकल बाजार में बने बनाए खनिज लवण के मिश्रण भी दवा की दुकानों पर उपलब्ध हैं, जिसकी 25 से 50 ग्राम की मात्रा चारे में प्रतिदिन डालकर पशुओं को खिलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पशुओं में होने वाले दीर्घकालिक रोग भी बांझपन रोग का कारण हैं, जैसे कि पशुओं के शरीर के बाहर व भीतर पाए जाने वाले परजीवी एवं टीबी जैसे रोग, जो कि पशुओं के शरीर को कमजोर बनाते हैं और जिसके कारण पशुओं की प्रजनन क्षमता घट जाती है। ऐसी दशा में भी पशु चिकित्सक की सलाह से रोगी पशु की उचित चिकित्सा करानी चाहिए। दीर्घकालिक रोगों के अतिरिक्त गाय और भैंसों के गर्भाशय में पाए जाने वाली सूजन भी बांझपन का एक मुख्य कारण है। गर्भाशय की सूजन जीवाणु और विषाणु के संक्रमण द्वारा होती है और यह संक्रमण कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि गर्भाशय में घाव होना या ब्याते समय गर्भाशय के रास्ते में रुकावट होना अथवा गर्भ का गिरना अथवा जेर का भीतर रुक जाना तथा पशुग्रह का वातावरण स्वच्छ न होना। गर्भाशय की सूजन होने पर गर्भाशय के भीतर मवाद बनने लगती है और पशु के शरीर से दुर्गंध आने लगती है तथा योनि द्वार से सफ़ेद, पीला अथवा लाल रक्त मिश्रित स्राव बाहर आने लगता है, जो कि गर्भाशय के सूजन की पहचान है। ऐसी दशा में पशु चिकित्सक की सहायता से गर्भाशय की सफाई कराने के पश्चात कुछ एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग कराना भी आवश्यक हो जाता है। गर्भाशय की सूजन के अलावा गर्भधारण में रुकावट संबंधी कुछ कारण भी बांझपन का रोग पशुओं में उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि रजकण तथा शुक्राणुओं के आकार प्रकार में असमानता होना, रजवाहिनियों के रास्ते में रुकावट होना।

वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि रजस्खलन होने के 2 से 8 घंटे के भीतर वीर्यदान कराने पर रजकणों को शुक्राणुओं द्वारा गर्भित कराने में 70% तक सफलता मिलती है। अतः यहाँ पर पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि मादा पशु के गर्मी में आने पर इसे 10 से 12 घंटे पश्चात ही वीर्यदान करावें, क्योंकि रजकण की आयु शुक्राणुओं की आयु से कम होती है। निश्चित गर्भधारण के लिए यह भी आवश्यक है कि उत्तम प्रजनन क्षमता वाले सांड का वीर्य उपयोग में लाया जाए। ऐसे सांडों के रखरखाव और उनके उचित पोषण पर ध्यान दिया जाना भी आवश्यक है, ताकि उनकी दीर्घकाल तक प्रजनन क्षमता बनी रहे। गर्भित मादा पशुओं के गर्भाशय में पल रहे भ्रूण के रोग ग्रस्त हो जाने पर भ्रूण नष्ट हो जाता है, तथा यह भी बांझपन का कारण हो सकता है। ट्राइकोमोनाज विब्रियो

0: कारण हो सकता है। ट्राइकोमोनाज, विब्रियो और ब्रुसेला नामक जीवाणुओं के कारण भ्रूण रोगग्रस्त हो सकते हैं। अतः इन बीमारियों से बचाव के लिए गर्भधारण से पूर्व मादा पशुओं को टीका लगवाना चाहिए। मैं अंत में बांझपन के रोगों का प्रसार रोकने के लिए कुछ सुझाव देता हूँ। सबसे पहले पशुओं में नज़दीकी रिश्ते वाले संसर्ग को रोकना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में इनब्रीडिंग कहते हैं, जिससे कि अवांछित आनुवांशिक गुणों को अगली पीढ़ी में जाने से रोका जा सके, जो कि बांझपन का कारण बनते हैं। दूसरा उपाय अच्छे रखरखाव का होना चाहिए और इसके लिए पशुपालक को अपने प्रत्येक प्रजनन योग्य पशुओं का ब्रीडिंग रिकॉर्ड रखना चाहिए। इस रिकॉर्ड में पशु की जन्म से प्रजनन योग्य आयु तक नापा गया वजन व पहले ऋतुकाल की तिथि, वीर्यदान की तिथि, सांड का नाम, गर्भ जांच की तिथि, ब्याने की तिथि दर्ज होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पशुपालक को सवेरे पशुगृह में स्थित गाय अथवा भैंसों का निरीक्षण करते हुए देखना चाहिए कि पशु के योनि द्वार से बाहर आने वाले स्राव का रंग कैसा है। यदि सफ़ेद चमकीला स्राव है तो ऐसे मादा पशु को गर्मी में समझना चाहिए और उसके गर्भधारण हेतु प्रयास करना चाहिए। किसी गाय या भैंस को ब्याने के 60 दिन के पश्चात ही गर्भधारण कराना चाहिए ताकि गर्भाशय पूर्ण रूप से सिकुड़ सके। जिस गाय या भैंस का गर्भपात हो गया हो अथवा जेर भीतर रह गई हो उसे 3 से 4 माह के पश्चात ही गर्भित करवाना चाहिए। इसी प्रकार एक सांड द्वारा 3 बार से अधिक गर्भधारण कराने पर यदि गाय गर्भित न हो तो उसे किसी अन्य सांड के पास ले जाना चाहिए। इसी प्रकार सुबह गर्मी के लक्षण दिखाने वाली गाय अथवा भैंस को सायंकाल में तथा सायंकाल में गर्मी के लक्षण दिखाने वाले पशु को सवेरे गर्भित कराना ठीक रहता है। 250 किलोग्राम शारीरिक वजन से ऊपर की ओसर बछिया को गर्भित कराना ठीक रहता है। सभी गर्भित गाय अथवा भैंस का दूध ब्याने से 2 माह पूर्व निकालना बंद कर देना चाहिए। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि बांझपन के रोग संबंधी इन सभी बातों का ध्यान रखकर हमारे किसान भाई अवश्य लाभान्वित होंगे।
1: पशुओं में बांझपन रोग, अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे, वार्ताकार थे डॉक्टर ए.के. सिंह। इसके साथ ही खेती की बातें कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। आपको याद दिला दें, आज गुरुवार है। आज शाम 3:30 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य समस्याओं पर आधारित कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। इस कार्यक्रम में आज भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी। विषय रहेगा बच्चों के विरुद्ध आक्रामक व्यवहार और हिंसा। इस विषय पर डॉक्टर साहब सिंह से भेंट करेंगे अनिंद्र सिंह। समय याद रखिए, आज अपराहन 3:30 पर।

0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 7:10 पर आप सुन रहे हैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल की वार्ता। विषय रहेगा पेट रोगों से बचाओ। सदाबहार फिल्मी गाने हम आपको सुनवाएंगे गीतांजलि कार्यक्रम में सुबह 8:45 पर और सुरसरिता कार्यक्रम में 10:00। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने को हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवासरे इत्युक्ते अगस्त मासस्य द्वितीय दिनांके मादक मुक्त युव विकसित भारत संकल्पाभियानस्य शुभारंभो विधास्यति। वस्तुतस्तु एतत् मादक पदार्थान् विरुध्य शत सप्ताहात्मकः राष्ट्रव्यापी जनसहभागितान्दोलनं वर्तते। एतस्याभियानस्य नेतृत्वं

0: भारत मंच करिष्यति यश्च यूनां नेतृत्व क्षमतायाः अथ च सामाजिक सहभागितायाः संवर्धनाय कार्यं करोति। अस्य पदक्षेपस्य उद्देश्यं जागरूकतायाः सामाजिक सहभागितायाः सतत जनसहयोगस्य च माध्यमेन यूनां संघटनं कृत्वा मादक मुक्त भारतस्य निर्माणम् इत्यस्ति। लोकसभायां लोकपरीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 26,000 पारित। अस्योद्देश्यं तावत् परीक्षा प्रकरणेषु वञ्चनायाः निरोधाय कठोर दंडविधानं सहैव द्रुतगति न्यायालयानां स्थापनम् इत्यस्ति। अनेन लोकपरीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमे 24,000 संशोधनं विधीयते। अस्मिन् विधेयके दशवर्षात्मकः कारावासः, दशकोटिरूप्यकाणां दण्डः, सहैव सिद्धापराधिनां सम्पत्तेः अधिग्रहणम् इत्यादीनि प्रावधानानि सन्ति। विधेयकानुसारं प्रत्येकं राज्यम् अथ च केन्द्रशासितप्रदेशः दैनन्दिनवादश्रवणाय विशेषद्रुतगतिन्यायालयानां स्थापनं करिष्यति। चर्चायाः उत्तरं प्रददन् कार्मिक राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंहः न्यगादीत् यत् नियमस्य सुदृढीकरणाय सहैव पत्रगोप्यता भंग प्रकरणेषु शीघ्र न्यायार्थम् एतत् संशोधनम् आनीतम्।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी।
0: राज्यसभायां 26,000 राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयकं पारितम्। एतत् विधेयकं राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण अधिनियमे 171 संशोधनं करोति। अस्य विधेयकस्य उद्देश्यं वन्दे मातरम् इत्यस्मै राष्ट्रगीताय अपि राष्ट्रगानेन समं वैधानिक सुरक्षा प्रदानम् इत्यस्ति। एतादृशेषु अपराधेषु त्रिवर्षात्मकः कारावासः, द्रव्यदण्डः उत वा उभयमपि भवितुमर्हतः। उत्तरप्रदानकाले गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः प्रावोचत् यत् एतत् संशोधनं भारतस्य आत्मने राष्ट्रियचेतनायै, सांस्कृतिकन्यासाय, सहैव स्वतन्त्रतासङ्ग्रामस्य आदर्शेभ्यश्च सामूहिकप्रतिबद्धतां दर्शयति।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: ओडिशा राज्ये अतिवृष्ट्या उच्छ्वसित नदीभिश्च विकट जलौघस्थितिः दुरापद्यते। अस्माद् हेतोः 4 मृत्युमुपगताः, सहैव 4,00,000 जनाः प्रभाविताः अभवन्। श्रावणमासस्य वार्षिकी कावडयात्रा अद्यारभ्य प्रवर्तते। अस्यां यात्रायां भक्ताः गङ्गाजलमानेतुम् उत्तराखण्डस्य हरिद्वार, गोमुख, गङ्गोत्री इत्यादिषु तीर्थस्थलेषु गच्छन्ति। अस्याः विशालयात्रायाः सुव्यवस्थायै उत्तराखण्ड उत्तरप्रदेशसर्वकाराभ्यां व्यापकप्रबन्धाः प्रकल्पिताः इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और अपराधियों की संपत्ति जब्त किए जाने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई

0: आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमों को और सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जीआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने कहा कि देश को उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मेड इन इंडिया उत्पाद गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करें। श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रुपये का अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमीकंडक्टर मिशन शामिल हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने में मदद करता है। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री नायडू ने बताया कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी का पवित्र जल लेने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। The Lok Sabha has passed the Anti-Paper Leak Bill, proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state

0: मुख्य हैं। गंदा पानी पीने से पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। इनसे रोगी को पेट में दर्द रहता है, उल्टियाँ होती हैं, वजन कम होता जाता है, बच्चों का विकास रुक जाता है। इसका इलाज कुछ गोलियों द्वारा संभव है, लेकिन कीड़े दोबारा ना पड़ें इसके लिए अपने पीने के पानी पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पानी को उबालकर ठंडा करके पीना चाहिए। मानव जाति के लिए सर्वाधिक कष्टकारक पेट रोग है कब्ज। कब्ज का निरंतर इलाज न लेने पर रोगी कई कई महीने या सालों तक इस रोग से परेशान रहते हैं। कब्ज के रोगी को कई बार मल के अवरोध के कारण तेज पेट दर्द भी हो सकता है। शाकाहारी लोगों के भोजन में एक विशेष तत्व फाइबर या रेशा होता है, जिससे उन्हें कब्ज कम होता है। यह रेशा मल के रूप में बड़ी आंत में इकट्ठा होकर मल की मात्रा को बढ़ाता है। अधिक रेशा होने पर मल भी मुलायम होगा। भोजन के वे अवयव जिनमें रेशा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इस प्रकार हैं। रेशेदार सब्जियां जैसे भिंडी, करेला, मूली, गाजर, शलजम, सरसों का साग, पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, टिंडा, लौकी, टमाटर, तोरई, चोकर समेत आटे की रोटी, राजमा, सोयाबीन, चना, लोबिया, साबुत मूंग आदि। रोगी को मैदे से बने हुए पकवान नहीं खाने चाहिए। कब्ज के इलाज में सबसे महत्वपूर्ण है नियमित शौच जाने की आदत। शौच में आलस्य ना करें। शौच साफ लाने के लिए कभी धूम्रपान अथवा बीड़ी सिगरेट का सेवन ना करें। कब्ज के रोगी को पानी भी अधिक मात्रा में पीना चाहिए। पेट रोगों का दूसरा प्रमुख कारण है पेट में घाव हो जाना, जिसे हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। इन घावों के बनने का मुख्य कारण है खाने को पचाने वाले अम्ल का अधिक मात्रा में बन जाना। जो लोग मिर्च, मसाले, घी में तले पकवान खाते हैं अथवा भूख से अधिक खाते हैं, उन्हें भी घाव होने की संभावना अधिक रहती है। दिमाग में परेशानी होने पर, कोई मानसिक तनाव होने पर भी अम्ल की मात्रा पेट में अधिक हो जाती है। घाव के रोगी अक्सर सीने में जलन तथा पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, तनाव या भारीपन महसूस करते हैं। दर्द निवारक दवाइयाँ भी नियमित रूप से लेने पर पेट में घाव बन जाते हैं। अल्सर के रोगी को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गर्म खाना नहीं खाना चाहिए। खाने में मिर्च, मसाले, घी, तेल, चिकनाई अथवा चीनी की मात्रा कम होनी चाहिए। फायदा नहीं होने पर किसी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। दस्त भी एक प्रमुख पेट रोग है। आंतों में संक्रमण होने पर दस्त हो जाते हैं। दस्त होने का कारण है पानी का संक्रमित होना। खराब पानी से आंतों में संक्रमण हो जाता है, जिसे अमीबाइसिस कहते हैं। इसमें मल के साथ शौच में आम भी आता है। हमारे पेट में ऊपर दाईं तरफ यकृत अथवा जिगर होता है। इसमें खाने को पचाने के लिए पाचक रस बनते हैं, जिसे हम पित्त कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो पित्त एक नली के द्वारा छोटी आंत में भोजन से मिल जाता है एवं उसे पचाने में सहायता करता है। यकृत में संक्रमण होने पर पीलिया हो जाता है। यह संक्रमण एक छोटे जीवाणु वायरस द्वारा होता है। यह वायरस कई प्रकार का होता है। ए वायरस दूषित एवं संक्रमित पानी तथा भोजन से फैलता है। पीलिया होने का दूसरा प्रमुख कारण है बी वायरस द्वारा संक्रमण। बी वायरस संक्रमित खून, वीर्य, योनि द्रव अथवा खुले घाव द्वारा एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। किसी मरीज को संक्रमित खून चढ़ाने से या संक्रमित सुई से इंजेक्शन लगवाने पर भी यह रोग फैल सकता है। कोई भी रोग हो, स्वयं इलाज न करके किसी योग्य पेट रोग चिकित्सक से सलाह लेकर इलाज लेना ही उचित रहता है। इसी प्रकार हम अपने पेट तथा शरीर को स्वस्थ रख सकेंगे।
1: पेट रोगों से बचाओ। अभी आप डॉक्टर पुनीत अग्रवाल की यह लघु वार्ता सुन रहे थे। कार्यक्रम था स्वास्थ्य चर्चा। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का।

आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं देशभक्ति पर गीत। 7:18 और 20 सेकंड हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा ने पारित किया लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। पेपर लीक रोधी इस विधेयक में परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का है प्रावधान। राज्यसभा में पारित हुआ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण देगा यह विधेयक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास की 650वीं जयंती पर

0: वाराणसी से भाजपा के राष्ट्रव्यापी समरसता संकल्प अभियान का किया शुभारंभ, भदोही का नाम संत रविदास नगर करने की घोषणा। आज से शुरू हुए श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में किए गए हैं व्यापक इंतजाम। कई जिलों में लागू हुआ ट्रैफिक डायवर्जन, रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन। और राष्ट्रमंडल खेल में प्रदेश के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने कल लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया।
1: विधेयक के तहत लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन का दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 27 जुलाई को यह विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक फोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
2: प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशंस थी उसमें से भी 35 इंप्लीमेंट हो चुकी है।
0: इस बीच राज्यसभा ने भी कल राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
3: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्रप्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष के अवसर पर उनके जन्मस्थली वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर से भारतीय जनता पार्टी द्वारा कल राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान शुरू किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक नागरिक संत रविदास के आदर्शों को अपनाकर विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे।
4: इस सामाजिक समरसता अभियान को गांव गांव और घर घर तक पहुंचाने के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के संकल्पों को लेकर के चल रही है। हर सच्चे भारतीय का दायित्व बनता है जो सद्गुरु रविदास जी महाराज ने आज से 650 वर्ष पहले जो संदेश हम सबको दिया उसको जमीनी धरातल पर उतार करके कर्म की साधना के माध्यम से हम विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें।
0: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर भदोही जिले का नाम संत रविदास नगर किया।

0: जाने की घोषणा की। राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान के तहत संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि की मिट्टी 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों, संगठनात्मक जिलों, मंडलों, गांवों और बस्तियों में जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ स्थित केंद्रीय कमान के कमांड अस्पताल में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। विशेष रूप से सैन्य चिकित्सा पर केंद्रित यह देश का पहला समर्पित शैक्षणिक और परिचालन विभाग है। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आर्थिक और सामाजिक विकास राष्ट्र निर्माण के आवश्यक पहलू हैं, लेकिन किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और प्रगति का मूल आधार उसकी सेना की शक्ति और मनोबल में निहित है।
1: किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और उसकी प्रगति का मूल आधार उसकी सैन्य शक्ति और उस सैन्य शक्ति का मनोबल हुआ करता है, और मनोबल का सबसे बड़ा संरक्षक यदि कुछ है तो यह विश्वास है कि जब मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा हूं, मेरे पीछे एक ऐसा सिस्टम खड़ा हो जो हर आपात स्थिति में मुझे सुना लेगा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। आज से पवित्र श्रावण मास की शुरुआत हो गई है। इस दौरान निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कई जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। लखनऊ की DCP ट्रैफिक रवीना त्यागी ने बताया कि एक माह के लिए यह व्यवस्था की गई है। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम के मंदिर ट्रस्ट के CEO विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए वहां विशेष व्यवस्था की गई है।
2: जो हमारा एक मानक संचालन प्रक्रिया हमारे तैयार की गई है, उसी के अंतर्गत सारी व्यवस्था जिगजैग की, छाया की, ग्लूकोज वाटर की, ORS वितरण की इत्यादि व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा प्रातः काल किया जाता है श्रावण सोमवार के दिन और प्रथम दिवस पर इसकी व्यवस्था भी रहेगी, और इसके अंतर्गत जो हमारे श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे पहले महत्वपूर्ण है, स्नान सभी प्रकार के विशेष अनुरोध प्रोटोकॉल दर्शन जो काशी द्वारा अलग से संचालित किया गया है वह सोमवार के दिन और प्रथम सप्ताह में शेष दिनों में भी भीड़ के अनुसार अभी तो प्रतिबंधित किया गया है।
0: श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए NCRTC ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। वहीं देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की भी घोषणा की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में प्रदेश के गुरवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वह स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। गुलवीर की सफलता पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सपूत और नायब सूबेदार गुलवीर सिंह की यह ऐतिहासिक उपलब्धि अथक परिश्रम, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। लखीमपुर खीरी में शारदा, जबकि बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। बदायूं जिले में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने पारित किया लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। पेपर लीक रोधी इस विधेयक में परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का है प्रावधान। राज्यसभा में पारित हुआ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण देगा यह विधेयक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास की 650वीं जयंती पर वाराणसी से भाजपा के राष्ट्रव्यापी समरसता संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। भदोही का नाम संत रविदास नगर करने की घोषणा। आज से शुरू हुए श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में किए गए हैं व्यापक इंतजाम। कई जिलों में लागू हुआ ट्रैफिक डायवर्जन, रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन। और राष्ट्रमंडल खेल में प्रदेश के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा।

0: नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही
2: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। 7:31:30 हुए हैं। इस समय आप सुनते हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। आसपास सुनने वाले सभी श्रोताओं को विशेष कुमार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ही होंगे और यही आप कहना चाहते होंगे, क्योंकि अक्सर कहते हैं कि अगर हम ये भी कहते हैं कि ठीक नहीं है तो आप क्या कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, जब आप ये कहना चाहते हैं किसी से कि हम ठीक नहीं हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपके मन में एक ऐसा भाव है उस व्यक्ति के प्रति जो आपके बहुत करीब है। और जब निकटता की बात होती है, समीप होने की बात होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि वही हमारा एक सच्चा मित्र होता है। आज मित्रता दिवस है और हम में से ऐसा कोई भी नहीं होगा, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कि हमारे मित्र ना हो। हम जहां कार्य करते हैं वहां हमारे मित्र हो सकते हैं, हम जहां निवास करते हैं वहां हमारे मित्र हो सकते हैं, यहां तक कि अगर हम कहीं आते जाते हैं या कुछ घंटों का, कुछ दिनों का अगर हम सफर भी करते हैं, तो कई बार इस तरह भी हमारे मित्र बन जाते हैं। लेकिन अब मित्रों की कई तरह की श्रेणियां होती हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप कैसे हैं, तो किसी से तो आप कहेंगे बहुत अच्छे हैं, और किसी से कहेंगे यार सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो ये जो दो बातें हैं ना, इस तरह कहने की, ये कहीं ना कहीं ये भिन्नता पैदा करती हैं कि जिससे हमने ये कहा कि हाँ ठीक है, हमने झूठ बोल दिया या सच बोल दिया, और एक से हमने कहा कि नहीं यार ठीक नहीं है, परेशानी है, ये है वो है, हम शिकायत कर रहे हैं, तो जिससे हम शिकायत कर रहे हैं वो हमारे लिए एक अलग महत्व रखता है, और जिससे हमने यूं ही एक औपचारिकता में कह दिया कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छे हैं, तो वहां एक अलग तरह का भाव, एक अलग स्तर है। हम चाहे किसी भी उम्र में हो, चाहे हम बिल्कुल उस उम्र में हो जब हम दोस्ती का, मित्रता का कोई अर्थ नहीं समझते हैं, उस समय भी हम ये महसूस करते हैं कि कोई हमारी ही उम्र का हो और जो हमारे साथ खेले कूदे, हम उसके साथ बैठें, बातचीत करें, जबकि हम नहीं जानते कि ये दोस्ती या मित्रता का कोई रिश्ता होता है। ये उस समय की हम बात कर रहे हैं। धीरे धीरे हम किशोर होते हैं तो हम समझने लगते हैं कि दोस्ती क्या होती है, मित्रता क्या होती है, और कहीं भीतर से एक चाह होती है कि हमारा कोई साथी हो जिससे हम अपनी बहुत सारी बातें कह सकें, उसकी सुन सकें, उसके साथ खेल सकें, उसके साथ कहीं जा सकें, हम कुछ ऐसे काम करना चाहते हैं। अब यूं कहें कि चोरी छिपे कोई काम करना चाहते हैं। बचपन की अगर हम बात बताएं, जब हम पढ़ते हैं 9th में 10th में या 11th 12th ग्रेजुएशन में, तो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने चले जाते हैं। और उनके साथ क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो कहेगा नहीं और हमारे लिए एक साथ भी मिल जाएगा। तो कई बार हम ऐसे काम कर लेते हैं जो दोस्त के साथ ही कर पाते हैं, बाकी और किसी के साथ नहीं कर पाते। अपने घर में हमारा बड़ा भाई है तो नहीं कर पाएंगे, बहन है तो नहीं कर पाएंगे, पिता माता के सामने भी नहीं कह पाएंगे और ना ही ऐसा कोई काम कर पाएंगे। लेकिन दोस्त एक ऐसा होता है जिसके साथ या जिसके साथ रहकर हम बहुत सारे ऐसे काम कर लेते हैं और हमारे घर पता भी नहीं चलता है। तो ये होती है दोस्ती। अब जब हम युवा हो जाते हैं, थोड़े से और बड़े हो जाते हैं, तो हम समझने लगते हैं कि दोस्ती के मायने क्या हैं, उसके अर्थ क्या हैं। तब हमें यह भी लगता है कि ये दोस्त हमारे लिए उपयुक्त है या नहीं है, हमारा इसका साथ निभेगा या नहीं निभेगा। अब ऐसा नहीं है कि हम दो लोग एक जैसे होंगे तभी हमारे बीच में मित्रता होगी या दोस्ती होगी, ऐसा भी नहीं है। भिन्न गुण वाले या भिन्न प्रवृत्ति वाले, भिन्न प्रकृति वाले, भिन्न सोच वाले ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपस में एक बहुत अच्छी मित्रता निभा सकते हैं।

हम इतना समझने लगते हैं कि मित्रता के मायने क्या हैं, तो वहां पर हमारी कुछ अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। और अच्छे वक्त में, बुरे समय में, मुसीबत के समय में हम ये भी सोचते हैं कि मित्र ही हमारे काम आएगा और हम अपने मित्र के काम आएंगे। यानी पारस्परिक जो सहयोग की बात होती है, ये दो मित्रों के बीच होती है, दोस्तों के बीच होती है। और जब कभी परेशानी हो, मुसीबत हो, तो हमारा दोस्त हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाता है। यही सबसे अच्छी और सच्ची एक मित्रता होती है। जीवन में कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जब हमें एक अच्छे दोस्त की, एक अच्छे साथी की जरूरत महसूस होती है। और ये दोस्ती तब होती है, हमें अच्छा साथी या अच्छी मित्रता हमारी तब होती है जब हम दोनों के बीच में, हम तीनों के बीच में, हम चार दोस्त हैं तो चारों के बीच में कहीं ना कहीं एक अटूट बंधन, जिसके लिए जरूरी है विश्वास। ये जो विश्वास शब्द है, ये एक छोटा सा शब्द जरूर है, लेकिन इसके अर्थ बहुत बड़े हैं। इसके भीतर बहुत गहराई है। जब हम इसके बारे में सोचते हैं, तो ये विश्वास ही एक ऐसा आधार है जो हमारे जीवन में, चाहे माता पिता हों, भाई बहन हों, दोस्त हों, कोई भी रिश्ता हो, बिना विश्वास के वो नहीं चलता है। यानी जीवन में हम चाहे कोई भी रिश्ता निभाएं, विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां विश्वास का तात्पर्य ये नहीं कि आएगा कहां से, ये आता है हमारे भीतर से, हमारी ईमानदारी से। यानी कि हम अपने दोस्त के प्रति या हम अपने साथियों के प्रति ईमानदार रहें, नैतिक रूप से उनका साथ निभाएं। और अगर हमारा दोस्त किसी गलत राह पर चल रहा है, किसी गलत संगत की ओर जा रहा है, तो हमें समय रहते उसको रोकने का अधिकार भी है और रोकना चाहिए। सच्ची मित्रता का अर्थ भी यही होता है। और अगर हम कहीं गलत रास्ते पर जा रहे हैं या हम कुछ गलत कर रहे हैं, कोई हमने गलत निर्णय ले लिया है, और हमारा दोस्त अगर हमें समझाता है, वो कहता है कि नहीं, ये गलत है, तो हमें ऐसे में अपने दोस्त की बात स्वीकार करनी चाहिए, माननी चाहिए, और एक बार ये विचार जरूर करना चाहिए कि हाँ, हम गलत हैं और हमारा मित्र जो हमें समझा रहा है, उस पर हमें अमल करना चाहिए। और ऐसे दोस्तों का कभी भी साथ न छूटे, ये हमेशा दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। और प्रार्थना के अलावा ये संकल्प भी लीजिए कि अगर मित्र है, सच्चा मित्र है, सच्ची दोस्ती है, तो हमेशा उसके साथ रहिए, कंधे से कंधा मिलाकर रहिए। और मुसीबत में तो आप, खुशियों में एक बार अगर उसको याद करते हैं, नहीं करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा ये मैटर नहीं है। लेकिन जब आपके दोस्त पर कोई मुसीबत हो, कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, तो आप उसके साथ अवश्य खड़े हों। और यही आपके मित्र का भी कर्तव्य है, और यही एक सच्ची मित्रता होती है। ऐसे दोस्तों को अपने जीवन में हमेशा साथ रखिए और उनको बुलाते रहिए।

जी हाँ, जीवन में दोस्तों को अपने साथ रखिए, उनको बुलाते रहिए, और ऐसे दोस्तों को अपने साथ जरूर रखिए जो आपके भीतर, आपके

0: आचरण में नुक्ताचीनी करते हैं, यानी आपके कुछ कामों की निंदा करते हैं। क्योंकि ऐसे दोस्त अगर हमारे जीवन में हैं तो बुराई नहीं है बल्कि अच्छा ही है, क्योंकि निंदा करने वाले मित्र ही दोस्त भी हमारे सच्चे होते हैं और वही हमको पहचानते हैं, और उनकी ही ये कोशिश होती है, उनका प्रयास रहता है कि हम अच्छे बने, सही मार्ग पर चलें। वरना तो ऐसे दोस्त भी बहुत मिल जाएंगे। एक शेर है कि पुराना दोस्त था, रिश्ता निभाने आया था, वो आदमी जो मेरा घर जलाने आया था। तो ऐसे दोस्तों से, ऐसे मित्रों से बचकर रहिए और दूर रहिए। कभी मत बुलाइए जब आपका घर जलाने के लिए आए, घर तोड़ने के लिए आए। आप सुन रहे हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास, अपने रेडियो हमसफर विशेष कुमार शर्मा के साथ। एक छोटा सा अंतराल और उसके बाद सूचनाएं आपके लिए।
1: खिलती पहली किरण के साथ आकाशवाणी अपने एक और नए अंदाज में दे रही है आवाज। DTH यानी डायरेक्ट टू होम सेवा कर आप सभी का स्वागत है।
2: गाता एक राम
3: भक्ति संगीत, प्रादेशिक संगीत, विविध भारती FM के कार्यक्रम, प्रादेशिक समाचार और देश विदेश के समाचारों का भरपूर आनंद DTH सेवा के साथ।
1: आज की के किसी भी कोने में रहते हो आप, अपने ही राज्य से उस कोने में भी DTH के माध्यम से जुड़ सकते हैं आप।
3: बस DTH सेवा का उठाए लाभ,
1: आपकी हर सांस के साथ साथ DTH सेवा 2400 घंटे रहे आपके पास।
3: डिजिटल क्वालिटी का ऐसा सुंदर प्रसारण और कहां, DTH सेवा है जहां।
0: आसपास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक भर्तियां पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। इसके लिए परीक्षा पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। आयोग ने चयन प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव किया है। एकेडमिक मेरिट व्यवस्था खत्म कर दी गई है। लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 90 प्रश्न पाठ्यक्रम से होंगे, जबकि 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहेंगे। चयन के लिए शिष्टता सूची 360 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि इसके पूर्व यह शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी कराता था, जिसमें 150 अंकों की परीक्षा के बाद एकेडमिक अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाती थी। परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते थे और हर प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित था। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कराई जाने वाली लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। हर प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए जाएंगे। गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग होगी। अभी बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोग के पोर्टल पर रिक्तियों का विवरण नहीं भेजा गया है, लेकिन आयोग परीक्षा तैयारी के लिए प्रतियोगियों को समय देने के उद्देश्य से परीक्षा पाठ्यक्रम जल्द करने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेज यानी GIC प्रवक्ता पुरुष महिला भर्ती 2025 की मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी 12 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर GIC प्रवक्ता भर्ती 2025 के लिंक के माध्यम से OTR नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। प्रमाणीकरण के बाद अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड से परीक्षा शुल्क जमा कर सकेंगे। मुख्य परीक्षा अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, नागरिक शास्त्र, मनोविज्ञान और हिंदी विषयों के लिए आयोजित की जाएगी। आवेदन सबमिट होने के बाद केवल एक बार संशोधन हो सकेगा। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को कड़ा करने के लिए सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण कानून में संशोधन का विधेयक लोकसभा में पेश किया है। गृह मंत्रालय की ओर से पेश किए गए विधेयक का उद्देश्य फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने पर अंकुश लगाना है। विधेयक में जन्म या मृत्यु के 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद प्रमाण पत्र बनाने पर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की मंजूरी अनिवार्य करने का भी

स्थान है। मुख्यालय परिक्षेत्र के जनपदों में दूसरी पाली में भी आधार पंजीयन अपडेट और संशोधन सुविधा शुरू करने के बाद इस व्यवस्था को प्रदेश के सभी जनपदों में लागू किया जा रहा है। अब सभी मुख्य डाकघरों यानी हेड पोस्ट ऑफिस में दूसरी पाली में भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। पहली पाली में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक, दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक आधार नामांकन अपडेट और संशोधन किया जाएगा। सभी परिषदीय सहायता प्राप्त विद्यालयों, मदरसों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अगस्त में 2 विशेष टीकाकरण अभियान चलेंगे। पहले चरण में 3 से 7 अगस्त तक बच्चों का टिटनेस, डिप्थीरिया और काली खांसी से बचाव के लिए

में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक, दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक आधार नामांकन अपडेट और संशोधन किया जाएगा। सभी परिषदीय सहायता प्राप्त विद्यालयों, मदरसों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अगस्त में 2 विशेष टीकाकरण अभियान चलेंगे। पहले चरण में 3 से 7 अगस्त तक बच्चों का टिटनेस, डिप्थीरिया और काली खांसी से बचाव के लिए टीडी और टीडीएपी टीकाकरण होगा, जबकि दूसरे चरण में 18 से 28 अगस्त तक मीजल्स और रूबेला से बचाव के लिए एमआर अभियान चलाया जाएगा। परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को जून में 15 दिन के ग्रीष्मावकाश के बावजूद पूरे माह का मानदेय जारी किया गया था। अब अतिरिक्त भुगतान का समायोजन जुलाई के मानदेय में किया जाएगा। इससे अगस्त में मिलने वाले मानदेय में 15 दिन की कटौती होगी। समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय ने संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश दे दिए हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2026 की 2 लाख से ज्यादा सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 3 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करते हुए 5 अगस्त तक आवेदन का प्रिंटआउट ले सकेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारियों यानी बीईओ भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने अर्हता के संबंध में असमंजस दूर करते हुए साफ किया है कि बीएड के समकक्ष दूसरा कोई पाठ्यक्रम नहीं है। इस संबंध में बुधवार को अपर शिक्षा निदेशक बेसिक को पत्र भेजा गया है। नीट यूजी 2026 की काउंसलिंग में छात्रों को राहत देते हुए कई अहम बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के अंतर्गत सीट अपग्रेडेशन के लिए उम्मीदवारों को संबंधित मेडिकल कॉलेज में उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। इसके साथ ही सीट छोड़ने की ऑनलाइन सुविधा भी शुरू की गई है। अहम बदलाव के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित की जा चुकी है और जिन्होंने अगले राउंड में सीट अपग्रेडेशन के लिए विकल्प चुना है, उन्हें केवल प्रवेश औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कॉलेज जाकर रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इस भ्रम को दूर करते हुए स्पष्ट किया है कि सिर्फ आधार नंबर या आधार से जुड़े बैंक खाते की जानकारी के आधार पर कोई भी व्यक्ति खाते से पैसे नहीं निकाल सकता। बैंक खाते से लेनदेन के लिए आधार नंबर के साथ वैध प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। प्राधिकरण के अनुसार जिस तरह एटीएम से पैसे निकालने के लिए डेबिट कार्ड और पिन या ऑनलाइन लेनदेन के लिए ओटीपी की जरूरत होती है, उसी तरह आधार आधारित बैंकिंग सेवाओं में फिंगरप्रिंट, आयरिस स्कैन या आधार से जुड़े मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के जरिए पहचान सत्यापित की जाती है। केवल आधार नंबर जान लेने से बैंक खाते तक पहुंच पाना संभव बिल्कुल नहीं है। आयकर रिटर्न दाखिल करते समय यदि किसी करदाता से गलती हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि रिटर्न अभी तक ई सत्यापित नहीं किया गया है तो उसे रद्द करते हुए दोबारा नया रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। हालांकि एक बार ई सत्यापन पूरा होने पर रिटर्न को रद्द नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में केवल संशोधित रिटर्न दाखिल करने का विकल्प उपलब्ध रहता है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई ट्रेनों के फेरे बढ़ाने की घोषणा की है। पीआरओ के अनुसार मुंबई सेंट्रल कानपुर अनवरगंज स्पेशल ट्रेन 30 अगस्त तक प्रत्येक रविवार को और कानपुर अनवरगंज मुंबई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन 31 अगस्त तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत मंटोला नाले की टैपिंग और 1400 मिलीमीटर व्यास की राइजिंग मेन सीवर लाइन बिछाने के लिए पुरानी मंडी चौराहे से शाहजहां पार्क तक मार्ग गुरुवार को भी बंद रहेगा। परियोजना के अंतर्गत 900 मीटर सड़क की खुदाई का कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य के दौरान राहगीरों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस मार्ग को एकल मार्ग यानी वन वे में परिवर्तित कर दिया गया है। पुरानी मंडी चौराहे पर मंगलवार दोपहर से बैरिकेटिंग लगाकर शाहजहां पार्क की ओर जाने वाले वाहनों को रोक दिया गया था और यह व्यवस्था गुरुवार यानी आज भी प्रभावी रहेगी।

0: मेट्रो के पहले कॉरिडोर में 15 अगस्त से पूर्व बिजली घर चौराहे से आईएसबीटी स्टेशन तक मेट्रो का संचालन शुरू हो सकता है। 6 किलोमीटर लंबे ट्रैक में 4 भूमिगत और 1 एलिवेटेड स्टेशन शामिल है। प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुमति 5 से 8 दिनों में मिल जाएगी। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की टीम ने तैयारी शुरू कर दी है। अप और डाउन लाइन में मेट्रो का कार्य तेजी से चल रहा है और परीक्षण किया जा रहा है। और अब आसपास कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के बारे में कुछ सूचनाएं। प्राप्त सूचना के अनुसार पुष्पा रानी निवासी राजपुर चुंगी लक्ष्मीपुरम गुम्मट थाना सदर बाजार जनपद आगरा। पुष्पा दिनांक 26 जून 2026 से अपने घर से लापता है। पुष्पा की उम्र लगभग 55 वर्ष है। कद 153 सेंटीमीटर, शरीर सामान्य है। पुष्पा के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना मिले तो आप थाना प्रभारी थाना सदर बाजार जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। एक अन्य सूचना के अनुसार आशीष गोयल पुत्र श्री मुकेश चंद्र गुप्ता निवासी कमलानगर थाना कमलानगर जनपद आगरा। आशीष गोयल 22 जून 2026 से सुबह 9:45 से अपने घर से लापता है। आशीष गोयल की उम्र लगभग 34 वर्ष है। कद 5 फीट 11 इंच, रंग गेहुआ है, इकहरा बदन है और घटना के समय दाढ़ी बढ़ी हुई थी। आशीष गोयल के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना आपको मिले तो आप थाना प्रभारी थाना कमलानगर जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। एक अन्य सूचना के अनुसार रानी पुत्री दशरथ निवासी गांव रसूलपुर थाना खेरागढ़ जनपद आगरा। रानी दिनांक 17 जून 2026 से अपने घर खेरागढ़ से लापता है। रानी की उम्र 24 वर्ष है। कद 5 फीट 4 इंच, इकहरा बदन है, रंग साफ है, काले बड़े घने बाल हैं। रानी के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना आपको मिले तो आप थाना प्रभारी थाना खेरागढ़ जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। और इसके साथ ही आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सवेरे के ठीक 8 बजे हैं। अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम

0: संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक कारावास का प्रावधान। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक फोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने ये विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपने संदेश में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस विधेयक से परीक्षा में होने वाली धांधली से निपटने के लिए सख्त कानूनी ढांचा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के तंत्र को खत्म करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाना है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
2: अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई। शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात में मंजलापुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय

0: जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखा भाई रवारी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में दतिया सीट राजेंद्र भारती का अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने और ये सीट छोड़ने के बाद कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी 164 मतदान केंद्रों के 422 बूथों पर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर इस बार कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जहां कुल 3,79,616 मतदाता सभी उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जन स्वराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। उपचुनाव में एक तरफ जहां भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगाई है, वहीं जनसुराज भी इस चुनाव में जीत के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। सविता पारेख का आकाशवाणी समाचार पटना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू राजनैतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से पैदा अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस बाजारों में अस्थिरता, साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की अनिश्चितता और लाल सागर संकट शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। अमेरिका में 2022 में सलमान रुश्दी पर हुए चाकू हमले के मामले में एक व्यक्ति को संघीय आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर दशकों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। जूरी ने हादी मटार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समेत सभी आरोपों में दोषी पाया। 28 वर्षीय मटार पहले से ही अगस्त 2022 में एक एम्फी थिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास के लिए आरोप में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए हैं जब ईरान ने सप्ताह के शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में

0: यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादुगावित ने 10.71 सेकेंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल मोर सिंगानखथ ने 10.83 सेकेंड के साथ रजत पदक हासिल किया। भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में दिलीप महादुगावित को स्वर्ण पदक और मोहम्मद बैसिल मोर सिंह नाकाटी को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरलम और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर संसद में पारित और प्रस्तुत विधेयकों की चर्चा सुर्खियों में है। अमर उजाला ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है, परीक्षा में गड़बड़ी पर 10 साल तक जेल, विधेयक लोकसभा में पास। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, लोकसभा राज्यसभा में एक एक बिल पास, जन्म मृत्यु पंजीकरण में संशोधन बिल पेश। लोकसत्ता ने लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर शीर्षक दिया है, गृहमंत्री पर राहुल की टिप्पणी से लोकसभा में जमकर हंगामा। दैनिक ट्रिब्यून ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के चित्र सहित उनकी उपलब्धियों को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है, जबकि पंजाब केसरी ने शेयर बाजार में आई तेजी को मुख्य पृष्ठ पर दिया है। राजस्थान पत्रिका ने सड़क सुरक्षा को लेकर संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है सिर्फ तेज रफ्तार नहीं हमें सुरक्षित सड़कें भी चाहिए। लेख में कहा गया है कि आधुनिक राष्ट्र की असली परीक्षा ये नहीं कि उसकी सड़कें लोगों को कितनी तेजी से गंतव्य तक पहुंचाती हैं, परीक्षा ये है कि क्या उन सड़कों पर निकलने वाला हर व्यक्ति जीवित अपने घर लौट सकता है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा है इतिहास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। लोकसभा पासेस एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल विद स्ट्रिक्टर पनिशमेंट ऑफ अप टू 10 इयर्स इन जेल। पोलिंग बिगिंस फॉर बाई इलेक्शंस टू 3 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन बिहार, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। Bihar government decides to reopen closed sugar mills at Rayam in Darbhanga and Sakri in Madhubani. India's merchandise exports rise 15% despite Red Sea crisis and global turmoil. Annual Kanwad Yatra for Shravana month to begin today. And para-athlete Dilip Kavit wins gold while Mohammad Basil bags silver in men's 100-meter race at Commonwealth Games. The Lok Sabha has passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam

0: जुलाई की मुद्दत के दौरान 15% का इजाफा इंदिराज हुआ है। जीआरडी टाटा मेमोरियल लेक्चर 2026 से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि आलमी कशीदगी और तिजारती रास्तों में रुकावटों के बावजूद भारत की अशिया की बरामदात लचकदार रहीं। जनाब गोयल ने मजीद कहा कि यह कारकर्दगी ऐसे वक्त में मुल्क की मजबूत इकतसादी बुनियादों की अक्कासी करती है जब मगरबी एशिया के बहरान और जहाजरानी की अहम राहदारियों में रुकावट की वजह से दुनिया भर में कारोबार गैर यकीनी हालात के शिकार हैं। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बरामदात को फरोग देने वाली काउंसिलों और सनती अंजुमनों के साथ मीटिंग की जिसका मकसद भारत के बरामदाती इको निज़ाम को मुस्तहकम करने के इकदामात का जायजा लेना था। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंग के बाद मुल्क की आलमी मसाबिका आरई को बढ़ाने पर तबादले ख्याल किया गया। जनाब गोयल ने मीटिंग के दौरान मजबूत मसाबिका आरई पर मबनी और मुस्तकबिल के लिए तैयार बरामदाती इको निज़ाम की तामीर की हुकूमत के अज़्म को दोहराया ताकि भारत की माशी तरक्की में मदद मिले और विकसित भारत का नजरिया पूरा किया जा सके। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि इख्तरा स्टार्टअप्स और जदीद टेक्नोलॉजी एमएसएमईज और आलमी सतह की मुकाबला जाती मैन्युफैक्चरिंग भारत को माशी तरक्की के अगले मरहले तक ले जाएगी और साल 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत के विजन को पूरा करने में मदद फराहम करेगी। नई दिल्ली में 22वें जेआरडी टाटा मेमोरियल लेक्चर से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत को महारत की जानिब बढ़ना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि मियार इख्तरा और मुकाबला जाती सलाहियत के जरिए भारत में बनी हुई मसनूआत को आलमी सतह पर काबिल एहतराम मुकाम हासिल हो। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा हाई अलर्ट पर है क्योंकि रियासत में नदियों में सतह आब में इजाफे से कहर बरपा हो गया है। इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने शदीद बारिश की पेशगोई की है। महानदी में दरमियानी दर्जे के सैलाब का खदशा है और कई नदियों के तास पर गहरी नजर रखी जा रही है। इंतजामिया ने राहत और तैयारी से मुतालिक इकदाम तेज कर दिए हैं। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि भद्रक सबसे ज्यादा मुतासर जिला बना हुआ है जहाँ हुकाम ने शदीद खतरात वाले इलाके के लोगों से अपील की है कि वो नामजद करदा राहत कैंपों से बाहर न जाएं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ओडिशा में भद्रक जिला सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर है जहां जिले के 5 ब्लॉक्स में 322 गांव सैलाब के पानी में डूब गए हैं। पड़ोसी जिले जाजपुर में लबरेज हो चुकी बैतरानी और कानी नदियों ने रोजमर्रा की जिंदगी को शदीद तौर से मुतासिर किया है जिससे नशेबी इलाकों में पानी भर गया है। महानदी के बलाई इलाकों में लगातार बारिश की वजह से सतहआब में इजाफा हो रहा है जिससे दरमियानी दर्जे के सैलाब और नदी के तास में पानी भर जाने का खदशा है। इस दौरान भारत के महकमा मौसमियात ने नौपाड़ा, कालाहांडी, नबरंगपुर और कोरापुट जिलों में आज शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जबकि दीगर 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भद्रक, कालाहांडी और नबरंगपुर में एहतियाती कदम के तौर पर तालीमी इदारों को बंद रखा गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: केरलम के 3 जिलों में बहुत शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: शुमाली केरलम में कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जिसके तहत इन तीनों जिलों के दूरदराज इलाकों में बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। वायनाड जिले में आज तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान किया गया है जबकि 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है जहाँ बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कल आधी रात से तकरीबन सभी जिलों में 5 मिलीमीटर से लेकर 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तवक्को है कि जुमे और हफ्ते को करैलम में बारिश की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। स्मिथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
0: इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने आज वस्ती महाराष्ट्र और मगरबी मध्य प्रदेश में कुछ मकामात पर शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। शुमाल मशरकी भारत, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी राजस्थान, गुजरात खित्ता, हिमाचल प्रदेश, केरला और माहे, कोंकण और गोवा, साहिली कर्नाटक, मराठवाड़ा, पंजाब, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कई हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। कांवड़ यात्रा आज हरिद्वार उत्तराखंड में शुरू हो गई है। रियासती सरकार ने लाखों शिव भक्तों की हस्ब मामूल आमदरफ्त उनकी आसानी और तहफ्फुज के लिए जबरदस्त इंतजाम किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: कांवड़ यात्रा के लिए हिफाजत के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। ये यात्रा 11 अगस्त तक जारी रहेगी। नीम फौजी दस्तों के साथ रियासती पुलिस के अमले को कांवड़ियों के आने जाने के रास्ते कौमी शाहराओं, बड़े घाटों, मंदिरों और दीगर हसास मुकाम पर तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी नेटवर्क्स और जदीद मरबूत कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे निगरानी की जाएगी। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी

0: ने कहा है कि देवभूमि की यात्रा करने वाले लाखों अकीदतमंदों के लिए हर मुमकिन इकदाम किए गए हैं ताकि उन्हें यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न उठाना पड़े। यात्रा के दौरान ट्रैफिक की नकलो हमल को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक की आमोदरफ्त का खसूसी मंसूबा नाफिज किया गया है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आफात से निपटने वाली इकाइयों को भी हाई अलर्ट पर रखा जाएगा। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: उत्तर प्रदेश में बहुत से जिलों में ट्रैफिक को मुंतकिल करने से मुतालिक इंतजाम को नाफिज किया गया है ताकि कांवड़ियों और दीगर लोगों के बहिफाजत और खुश असलूबी से आने जाने को यकीनी बनाया जा सके। पेश है एक रिपोर्ट।
2: लखनऊ की डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी ने बताया कि एक महीने के लिए राजधानी के कई रास्तों पर ट्रैफिक मुंतकिल किया गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर एनसीआर में मुसाफिरों की सहूलियत के मद्देनजर एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले अकीदतमंदों के लिए रेलवे ने गोरखपुर से दो श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। अयोध्या में आला अफसरों ने राम की पैड़ी और नया घाट इलाके का मुआयना किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि श्रद्धालुओं की सहूलियत और हिफाजत के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, जिनमें जिगजैग की छाया, ग्लूकोज वाटर और ओआरएस तकसीम किए जाएंगे। अकीदतमंदों पर फूल भी बरसाए जाएंगे। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा मुहिम का आगाज करेंगे। ये नशावर अशिया के इस्तेमाल के खिलाफ 100 हफ्ते तवील एक जन भागीदारी मुहिम है। भारत ने दौलत मुश्तरका खेलों में पैरा एथलेटिक्स में एक तारीख रकम की है और मर्दों के 100 मीटर T47 फाइनल में दिलीप गावित ने सोने का तमगा और मोहम्मद वासिल ने चांदी का तमगा जीता है। गावित ने सोने का तमगा जीतने के लिए 10.71 सेकंड में बेहतरीन रिकॉर्ड कायम किया, जबकि वासिल ने दौड़ के सख्त मुकाबले में कांसे का तमगा जीता और 10.83 सेकंड में अपनी दौड़ मुकम्मल की। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक।
3: शुक्रिया जमीर। लोकसभा में पेपर लीक रोकथाम बिल मंजूर होने को राजधानी से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने अपनी बड़ी खबर बनाया है। बकौल रोजनामा इंकलाब, 10 साल तक की कैद और 50 लाख रुपए जुर्माने का इल्तिजाम। रियासत में फास्ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी। इसी अखबार ने नीट पेपर लीक की पूरी साजिश बेनकाब करने के सीबीआई के दावे की खबर को भी नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा इंकलाब ने वंदे मातरम की तौहीन को अब काबिल सजा जुर्म करार दिए जाने को अपनी पहली खबर बनाया है, जिसके तहत 3 साल तक की सजा का इल्तिजाम है।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा ने पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें 10 साल तक की सख्त सजा की गुंजाइश मौजूद है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों में जिमनी चुनाव के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने दरभंगा में रैयाम और मधुबनी में साकरी में चीनी की बंद मिलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। बुहरा अहमर के बहरान और आलमी सतह पर उथल पुथल के बावजूद भारत की तिजारती बरामदात में 15% का इजाफा हुआ है। श्रवण महीने के लिए सालाना कांवड़ यात्रा आज शुरू हो रही है। और दौलत मुश्तरका खेलों में मर्दों की 100 मीटर दौड़ में पैरा एथलीट दिलीप गावित ने सोने का तमगा जीता है, जबकि मोहम्मद वासिल ने चांदी का तमगा अपने नाम किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से ये खबरनामा खत्म हुआ।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। 8:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गाने। कार्यक्रम है गीतांजलि और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी विशेष कुमार शर्मा। ये है कार्यक्रम का पहला गीत।

गीतांजलि कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना दोस्ती फिल्म से। इसे गाया था मोहम्मद रफी ने, बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में है। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है बेताब।

0: बेताब फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। कार्यक्रम का अगला गीत एक व्यावसायिक संदेश के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: ये जवानी फिल्म का गीत है, आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में। बोल गुलशन बावरा के, संगीत राहुल देव बर्मन का।

ये युगल आवाजें थीं आशा भोसले और अमित कुमार की। फिल्म का नाम था जवानी। गीतकार थे गुलशन बावरा, संगीतकार राहुल देव बर्मन। अब हम आपको खय्याम की तर्ज पर गुलजार के गीत रचना सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई। आवाजें हैं अनवर और सुलक्षणा पंडित की।

खय्याम की धुन पर आप सुन रहे थे गुलजार की गीत रचना, आवाजें थी अनवर और सुलक्षणा पंडित की, फिल्म का नाम था थोड़ी सी बेवफाई। गीतांजलि प्रोग्राम के आखिर में आइए सुनते हैं आशा फिल्म का एक गीत। गीत आनंद बख्शी का है, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

0: आशा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और गीत की तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाई थी। इसके अलावा इस कार्यक्रम में आज आपने शेषनाग, दोस्ती, बेताब, जवानी और थोड़ी सी बेवफाई फिल्मों के गीत सुने। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज़ पर
1: है। जिले की हलचल आज सुनिए, महोबा और गोरखपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोतिय का।
2: कारगिल विजय दिवस पर पूर्व सैनिकों ने महोबा तहसील के पचपहरा गांव पहुंचकर अमर सपूत जगदीश यादव की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर मातृभूमि के लिए प्राणों की बाजी लगाने वाले अमर सपूतों के जीवन से जुड़े रोचक प्रसंग पूर्व सैनिकों के द्वारा सुनाए गए। बुंदेलखंड पूर्व सैनिक कल्याण संघ के उपाध्यक्ष कैप्टन देवीदीन यादव ने बताया कि 60 दिन तक चले कारगिल युद्ध में देश के 527 अमर सपूत शहीद हुए थे। कारगिल युद्ध में वीर भूमि से बालेंद्र सिंह और जगदीश यादव ने शहादत दी। वहीं गंज गांव के बलदानी बालेंद्र के बड़े भाई रणविजय सिंह ने कहा कि भाई ने देश की रक्षा के लिए शहादत दी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत महोबा जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज कनकुआ में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को संचारी रोगों के लक्षण, बचाव एवं स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रीति सिंह ने कहा कि डेंगू, मलेरिया और संचारी रोगों से बचाव के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि घर और आसपास पानी जमा न होने दें, स्वच्छ वातावरण बनाए रखना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाना इन बीमारियों से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है। उन्होंने छात्राओं को औषधीय पौधों के महत्व, संतुलित एवं पौष्टिक आहार तथा नियमित दिनचर्या अपनाने के लाभों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर कई बीमारियों से बचा जा सकता है। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनैना ने कहा कि जागरूकता ही संचारी रोगों की रोकथाम का सबसे बड़ा माध्यम है। यदि लोग समय रहते सावधानी बरतें और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करें तो डेंगू, मलेरिया सहित अन्य संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। लगातार हो रही बारिश और ऊपरी क्षेत्र से पानी की आवक बढ़ने के कारण यूपी मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित लहचूरा बांध का जलस्तर अधिकतम भंडारण क्षमता तक पहुंच गया। स्थिति को नियंत्रण करने

0: के लिए सिंचाई विभाग ने एहतियातन बांध के दो फाटक करीब 1.5 फीट तक खोलकर 4100 क्यूसेक पानी धसान नदी में छोड़ा। पानी छोड़े जाने के बाद महोबा और झांसी जनपद के नदी के किनारे बसे 15 गांव में काशीपुरा, धवार, लिलवा, कोटरा, रिपनौर, बीहट, नगारा घाट, सेवड़ी और सिलैया गाँव के साथ साथ झांसी जनपद के लहचूरा, बरौड़ा, असपुरा, झारखण्ड और सुजातपुर गाँव में अलर्ट जारी कर दिया गया। ग्राम प्रधानों, लेखपालों तथा संबंधित अधिकारियों को ग्रामीणों को सचेत करने और नदी के तटों पर अनावश्यक आवाजाही रोकने के निर्देश दिए गए। लोगों से अपील की गई कि वे नदी में स्नान, मवेशियों को पानी पिलाने तथा अन्य किसी कार्य के लिए नदी के निकट न जाएं तथा प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अभर अभियंता रामाश्रय ने बताया कि लहचूरा बांध की न्यूनतम भंडारण क्षमता 179.83 मीटर तथा अधिकतम भंडारण क्षमता 182.30 मीटर निर्धारित है। लहचूरा बांध पूर्ण क्षमता से भर गया है। अर्जुन नहर के जरिए बांध से करीब 1500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है जो अर्जुन बांध, चंद्रावल बांध, कबरई बांध में पहुंच रहा है। इन बांधों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं प्रशासन ने धसान नदी के किनारे बसे गांव में तत्काल सतर्कता बढ़ा दी है। 69वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक वैज्ञानिक अनुसंधान, पुलिस फोटोग्राफी, डॉग स्क्वाड, कंप्यूटर एवं सबोटाज चेक प्रतियोगिता में महोबा पुलिस ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में महोबा टीम के निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने अपने पेशेवर कौशल का शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत पदक अपने नाम किए। पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह ने बताया कि प्रयागराज जोन में आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने महोबा पुलिस के लिए गौरव बढ़ाया है। उनकी सफलता पूरे महोबा पुलिस परिवार के लिए गर्व का विषय है। इससे अन्य पुलिसकर्मी भी प्रेरणा लेकर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। महोबा जिले में 900 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत व्यापक कार्य कराए गए। जिले के 416 गांव में से 343 गांवों को इस योजना से जोड़ा गया। योजना के सभी ओवरहेड जलाशयों का निर्माण पूरा हो चुका है। इन गांवों में 3213 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के लक्ष्य के मुकाबले 3206 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। घरेलू नल कनेक्शन का कार्य 99.83% पूरा हो चुका है, जबकि सड़क मरम्मत का कार्य भी अधिकांश गांव में पूरा किया जा चुका है। स्थानीय निवासी सुमन देवी बताती है कि वे कई किलोमीटर दूर से पानी लाती थीं, लेकिन आज घरों में पानी साफ आ रहा है। बम्हौरी काजी निवासी मोतीलाल कुशवाहा बताते हैं कि वे पहले कुओं से पानी भरते थे, पानी के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता था। आज जल जीवन मिशन योजना से अब उनके परिवार में स्वच्छ पानी आता है।
1: पहले हम लोग कुआं से पानी भरते थे, बड़ी परेशानी होती थी। अब जल जीवन मिशन के तहत हम लोग टोंटी वाले पानी से पानी भरते हैं, पानी रोज आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे दर्द को समझा और हमारी हालात बदल गई, पानी मिल रहा है।
2: महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है जीएन चौबे का।
3: 6 जुलाई को गोरखपुर के नगरीय और व्यावसायिक विकास को और ऊंचाई देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी। लखनऊ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में गोरखपुर नगर निगम के 80 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल बांड लाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। नगर निगम इस बांड से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल मल्टी स्टोरी कमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने में करेगा। यह अत्याधुनिक और बहुआयामी कॉम्प्लेक्स गोलघर स्थित जलकल परिसर में बनाया जाएगा। योगी सरकार ने स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के अपने संकल्प के अंतर्गत नगर निगम गोरखपुर द्वारा म्युनिसिपल बांड के क्रियान्वयन से जुड़े 80 करोड़ रुपए की धनराशि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस स्वीकृत प्रस्ताव के माध्यम से नगर निगम जलकल परिसर में एक अत्याधुनिक और विशाल मल्टी स्टोरी कमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल पर उतारने से पहले स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी स्टेक होल्डर्स, बिल्डर्स और ट्रस्टियों के साथ व्यापक स्तर पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से सुनिश्चित की गई थी, जिसके बाद इस लोक कल्याणकारी और राजस्व जनित प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भटहट बांस स्थान फोर लेन सड़क सहित करीब 758 करोड़ रुपए की लागत वाले 24 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राजनीति पर जोरदार शाब्दिक प्रहार करते हुए कहा कि जब भी मौका मिला कांग्रेस और सपा ने भारतीय मान बिंदियों पर कुठाराघात किया है। सपा का इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है, जबकि कांग्रेस

0: देश की जब केंद्र में सरकार थी तब उसने सुप्रीम कोर्ट का हलफनामा देकर भगवान श्री राम को मिथक और काल्पनिक साबित करने का कुत्सित प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सपा जाति के नाम पर समाज को बांटने की साजिश रचकर विकास प्रक्रिया को बाधित करती है, इससे आमजन को सतर्क रहना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है।
1: ये विकास इसलिए हो पाया है क्योंकि सुरक्षा का माहौल है, डबल इंजन की सरकार है, बिना भेदभाव के विकास की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने के लिए संकल्पित ये सरकार है। और उस कार्य के साथ जब सभी लोग मिलकर के कार्य करते हैं, ये सब चुनने का परिणाम क्या है, विकास इतनी तेजी के साथ हो रहा है।
0: सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस शुरुआत से ही हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करती रही है। भगवान सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जब तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया तब भी इसका विरोध कांग्रेस ने ही किया था। 23 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 लेन फ्लाईओवर सहित गोरखपुर को 995 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उपहार दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 813.52 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का लोकार्पण और 181.77 करोड़ रुपए की 10 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की विकास परक उपलब्धियों को नई ऊंचाई देने के लिए आयोजित जिले के पहले 6 लेन फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 के पहले इंसेफ्लाइटिस को लेकर सरकारी उदासीनता, सुरक्षा और निवेश के बदतर हालात को लेकर भी कांग्रेस और सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले इंसेफ्लाइटिस बीमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए नियति बन चुकी थी। इसकी चपेट में आकर हजारों बच्चों की मौत हो गई, पर तब की सरकारों के कान में जूं तक नहीं रेंगता था। सरकारें कान में रुई डालकर सोती रहती थीं। उन्होंने जनता की पीड़ा महसूस करने की फुर्सत नहीं थी। उन्होंने कहा कि बच्चों, किशोरों और नौजवानों के साथ कांग्रेस और सपा ने जितना शोषण और अत्याचार किया उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जिले में श्रावण मास को लेकर तैयारियां व्यापक स्तर पर चल रही है। भगवान शिव के मंदिरों में साफ सफाई की जा रही है। आगामी 30 जुलाई से सावन की शुरुआत होगी, जिसमें भगवान शिव के मंदिरों पर श्रद्धालुओं की ओर से जलाभिषेक किया जाएगा, जिसको लेकर नगर निगम की ओर से भी साफ सफाई को लेकर तैयारी की जा रही है। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक हर हर महादेव व ओम नमः शिवाय के जयकारों के साथ होगा।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी आगरा। इसे आप सुनते हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। 9:25 और 35 सेकेंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं गीत पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम है गीत मंजूषा। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म सरदारी बेगम से। इसे गाया है आरती एंकलेकर ने, जावेद अख्तर के बोल हैं, धुन बनाई है वनराज भाटिया ने।

आरती एंकलेकर के स्वर में आप सुन रहे थे सरदारी बेगम फिल्म का गीत। इसे लिखा था जावेद अख्तर ने, धुन बनाई थी वनराज भाटिया ने। रतन फिल्म का एक गीत आइए सुनते हैं, बोल डीएन मधुक के, तर्ज नौशाद की, आवाजें हैं जोहराबाई अंबाले वाली और करण दीवान की।

जोहराबाई अम्बाले वाली और करण दीवान की आवाजों में आपने रतन फिल्म का गीत सुना। गीत लिखा था डीएन मधोक ने और इसकी धुन बनाई थी नौशाद ने। अब हम आपको किस्मत फिल्म का एक गीत सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं अरुण कुमार और अमीर बाई की, संगीत अनिल विश्वास का है।

था अरुण कुमार और अमीर भाई ने। गीत मंजूषा कार्यक्रम का अगला गीत रोशन की तर्ज पर है, साहिर के बोल हैं। फिल्म का नाम है बरसात की रात। गायक कलाकार हैं सुमन कल्याणपुर और कमल बारोट।

बरसात की रात फिल्म का गीत आपने सुना सुमन कल्याण पर और कमल बारोट की आवाजों में। गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार रोशन। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं हेमंत कुमार की तर्ज पर हेमंत कुमार का लिखा गीत हेमंत कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है बीबी और मकान।

ये था हेमंत कुमार की आवाज में, हेमंत कुमार की तर्ज पर हेमंत कुमार का लिखा गीत। फिल्म का नाम था बीवी और मकान। इसके साथ ही पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत मंजूषा समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। समय मिला लीजिए, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के ठीक 9:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं निर्मला चोपड़ा के गाए ब्रज लोकगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं निर्मला चोपड़ा के गाए ब्रज लोकगीत। आइए सुनते हैं एक और लोक रचना।

लोक संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे निर्मला चोपड़ा के गाए ब्रज लोक गीत। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत। कार्यक्रम है सुरसरता और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी विशेष कुमार शर्मा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

ये दो आवाजें हैं किशोर कुमार और मुन्ना डे की। फिल्म का नाम है शोले। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: मन्ना डे और किशोर कुमार की आवाजों में ये था आनंद बख्शी का लिखा गीत। इसकी धुन तैयार की थी राहुल देव बर्मन ने। फिल्म का नाम था शोले। कार्यक्रम का अगला गीत एक विज्ञापन संदेश के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: ये है सुरसरिता कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत।

संगीत एक बार फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीत आनंद बख्शी का, फिल्म का नाम है आया सावन झूम के, आवाजें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों के।

आया सावन झूम के। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मेरा गांव मेरा देश, आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक गीत। गीतकार एक बार फिर आनंद बख्शी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

ये आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था मेरा गांव मेरा देश। गीतकार थे आनंद श्री, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कार्यक्रम का अगला गीत एक विज्ञापन संदेश के बाद।

ये है सुरसरिता कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत। इसे हमने फिल्म हमसे मिले तुम से लिया है। आशा भोसले और शब्बीर कुमार की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के बोल हैं, नारायण दत्त का संगीत है।

आशा भोसले, शब्बीर कुमार और साथियों की आवाज़ों में आपने हमसे मिले तुम फिल्म का गीत सुना। गीतकार थे हसरत जयपुरी, संगीतकार नारायण दत्त। जुर्माना फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर की आवाज़ है, गीत गुलजार का, संगीत राहुल देव बर्मन का।

लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में ये था जुर्माना फिल्म का गीत। गीत लिखा था गुलजार ने, इसे संगीतबद्ध किया था राहुल देव बर्मन ने। इसके साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसेता समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 10:30 हुए हैं। इस समय आप सुनते हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं जगन्नाथ और साथियों का बजाया शहनाई पर राग चंद्रप्रभा।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जगन्नाथ और पाटी से राग चंद्रप्रभा में शहनाई वादन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर 30,530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आपकी रेडियो हम सफर मुकुल तिवारी लेकर आ गई है आपका पसंदीदा कार्यक्रम आज के कलाकार, जिसमें हम उन खास कलाकारों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने अपनी शानदार कला से दर्शकों का दिल हमेशा जीता है। चाहे वो अभिनय से हो, संगीत से हो, शायरी और गजल से हो, गीत या कविता से हो, कहानी से हो या फिर आवाज से हो, इन कलाकारों को हम जितना पसंद करते हैं उतने ही उत्सुक भी रहते हैं कि उनको हम और करीब से जानें। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, आज हम उस कलाकार के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने मखमली आवाज के गिरफ्त में हर आयु वर्ग के लोगों को लिया है। एक ऐसी आवाज जिसका जादू हर दौर में हुआ है, क्या ही कहना उस आवाज का। और कमाल की बात यह है श्रोताओं कि आज उनका बर्थडे भी है, तो मुझे नहीं लगता कि आज किसी हिंट की जरूरत है उस कलाकार को पहचानने के लिए। जी हाँ, वो है आवाज की दुनिया के जादूगर सोनू निगम साहब। वाओ, नाम सुनकर ही मन झूम उठा ना, मुझे पता था। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम का उनके गाए इस खूबसूरत से गीत के साथ।

जुलाई 1973 में हरियाणा के फरीदाबाद में सोनू निगम का जन्म हुआ था। पिता का नाम आगम कुमार निगम है, जो कि स्टेज सिंगर हैं। मोहम्मद रफी के गानों को गाने के लिए मशहूर भी हैं। पारिवारिक माहौल ही संगीतमय था, तो अलग से संगीत की तरफ झुकाव का सवाल ही नहीं था। सुरों में सजा सुबह और गुनगुनाती शाम। क्या पता है आपको श्रोताओं कि मात्र 4 साल की उम्र में सोनू निगम ने स्टेज पे गाना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता गया, आवाज में खूबसूरती और ज्यादा आने लगी। लोग कहने लगे कि ये मोहम्मद रफी

साहब जैसा गाता है। ये सोनू निगम के लिए तारीफ तो थी ही, लेकिन चुनौती भी थी। तारीफ इसलिए कि किसी महान गायक की याद दिलाना कोई छोटी बात तो है नहीं, और चुनौती इसलिए कि अगर पूरी जिंदगी लोग आपको किसी की परछाई समझें तो आपको खुद की पहचान कैसे बना पाएंगे। शायद यही बात सोनू निगम ने बहुत जल्दी समझ लिया और सोनू निकल पड़े अपने सपने को पूरा करने के लिए मुंबई। लेकिन उन्होंने मोहम्मद रफी साहब को अपना आदर्श हमेशा माना। श्रोताओं, संघर्ष के दिनों में उनकी मुलाकात हुई गुलशन कुमार से, जिन्होंने सोनू निगम को पहचान और नाम दोनों दिलवाया। सोनू निगम को उन्हें एल्बम्स और भक्ति गीतों के माध्यम से घर घर पहुंचाया। इमेजिन कीजिए, ये वो दौर था जब मोबाइल और म्यूजिक एप्स नहीं हुआ करते थे। कैसेट के माध्यम से घर घर पहुंचकर लोगों के दिलों तक पहुंचना आसान बात तो थी नहीं। तो श्रोताओं, आगे की बातें इस प्यारे से गीत के बाद।

श्रोताओं, एक वो दौर भी आया जिसने खासकर युवा वर्ग को सोनू निगम का दीवाना बनाया। याद है वो एल्बम दीवाना? उफ, कॉलेज हो या बस, पार्टी हो या एकांत, हर जुबान पर बस उसी एल्बम के गाने। 90 का वो दशक, पॉकेट मनी बचा बचा कर दीवाना एल्बम या बैक टू बैक आए, जान यादों की डोली हर संगीत प्रेमी खरीदने लगे। खुद मैंने भी खरीदा था। श्रोताओं, लोग रेडियो पर फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में फोन कर कर कहते थे, सोनू निगम का कोई भी गाना बजा दीजिए, ये होती है दीवानगी, है ना? पहली पसंद सिर्फ दर्शकों के ही नहीं, संगीतकारों के भी बन गए सोनू निगम। उस वक्त हर अभिनेता भी चाहने लगा कि उनकी आवाज सोनू निगम बने। शाहरुख खान और सोनू निगम की जोड़ी बहुत पसंद की गई उस टाइम। लेकिन यहां भी सोनू किसी नाम से नहीं बंधे, उन्होंने उस दौर के हर सफल हीरो के लिए अपनी आवाज दी। कमाल की बात है कि हर हीरो की आवाज में उनका गाना अलग पहचान बना लेता था। फिल्मों में अभिनय कहानी एक तरफ और सोनू निगम के गाने एक तरफ। अब जब गानों की बात हुई है तो सुनिए एक और गीत, और अगर मैं गलत हूं तो बताइए।

श्रोताओं, अब बात उन गीतों की जिन्होंने सोनू निगम को सम्मान भी दिलवाया और इतिहास में उनका नाम भी दर्ज करवाया। 2002 में आई फिल्म साथिया, इस फिल्म का टाइटल ट्रैक इतनी खूबसूरती से गाया सोनू निगम ने कि इसके लिए उन्हें अपने संगीत करियर का पहला सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का अवार्ड भी मिला और दूसरा फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार मिला फिल्म कल हो ना हो के लिए। उस फिल्म का टाइटल ट्रैक याद है आप सबको, तो आइए सुनते हैं वही टाइटल ट्रैक।

2012 में आई फिल्म अग्निपथ, जिसका गाना अभी मुझ में बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, ये गाना सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक हर जिंदा दिल इंसान की भावना है। इसी गाने के लिए सोनू निगम को अपने जीवन का तीसरा सर्वश्रेष्ठ गायक का अवार्ड भी मिला। यही नहीं श्रोताओं, सोनू निगम को जाने कितने पुरस्कार मिले हैं। इन्होंने सिर्फ हिंदी ही नहीं, कन्नड़, बंगाली, मराठी, भोजपुरी, तमिल, ओडिया आदि कई भाषाओं में अपनी खूबसूरत सी आवाजें दी हैं। श्रोताओं, सोनू निगम पर आधे घंटे का कार्यक्रम तो समेटना मुश्किल है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ कि आपको क्या सुनाऊं और क्या रहने दूं। पर आज तो इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये कार्यक्रम आप सबको बहुत पसंद आया होगा। आपको टाटा बाय बाय करने से पहले ये खूबसूरत सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज की कलाकार, जिसमें हमने बात की पार्श्व गायक सोनू निगम की। पिटन वेव 196.1 मीटर 30,530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। समसामयिक विषयों का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर एक बार फिर से हाजिर है आपकी रेडियो हम सफर मुकुल तिवारी। हम सफर बोलते ही याद आया श्रोताओं की हमारा साथ कितना पुराना है ना। मेरा आप सबसे बात करने का और आपका मुझे सुनने का सिलसिला जब स्टार्ट हुआ था ना, तब मैं भी ये सोच कर नर्वस होती थी क्या आप सब मुझे पसंद करेंगे या शायद ना भी करें। और एक आज का दिन है श्रोताओं कि हम दोनों एक दूसरे को बिना सुने इनकम्प्लीट से हैं और मिस भी करते हैं। आप करते हैं ना मुझे मिस, क्योंकि श्रोताओं हम दोनों के बीच एक रिश्ता कायम हो चुका है जिसका नाम है दोस्ती। वैसे दोस्ती ये शब्द सुनते ही सबसे पहले किसका चेहरा याद आता है? शायद वो पड़ोस का हम उम्र बच्चा जिसके साथ पार्क में हम खेलने जाया करते थे, या फिर स्कूल का वो साथी जिसमें टिफिन बॉक्स शेयर किया करते थे, क्योंकि कभी उसकी बॉक्स में तो कभी हमारे टिफिन बॉक्स में फास्ट फूड हुआ करता था, जिसको पाने के लिए हमें घर में डांट तक पड़ जाती थी। या फिर वो दोस्त जिसे आपने पहले क्रश के बारे में बताया होगा, छुप छुप के बात किया होगा कि यार कहीं से उसका नंबर तो दिला दे, या फिर वो इंसान जिसको रात 2:30 बजे कॉल करके अपने ब्रेकअप की कहानी रो रो कर सुनाते होंगे। और भी कई बातें और भी करनी है साझा आपसे इस दोस्ती के बारे में। फिलहाल सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अब ये सोचना भी लाजमी है कि दोस्त जो हर पल अपनी दोस्ती को सेलिब्रेट करते हैं, उसके लिए या उसके नाम पर एक दिन तय करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। तो श्रोताओं, एक्चुअली दुनिया में बढ़ती हिंसा, नफरत, भेदभाव और संघर्ष के बीच ये महसूस किया गया कि अगर देशों के बीच भी इंसानों की तरह शांति कायम रखनी है तो शुरुआत दोस्ती से ही होनी चाहिए। इसीलिए 2011 से 30 जुलाई का ये दिन अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के नाम किया गया। इस दिन का उद्देश्य केवल शुभकामनाएं देना नहीं था, बल्कि ये याद भी दिलाना था कि दोस्ती समाज को और देश को एक साथ जोड़ती है, और जहां दोस्ती होती है वहां प्यार और शांति भी होती है।

श्रोताओं, दोस्ती वो धागा है जिसमें प्यार, विश्वास, सम्मान की मोती को पिरोया जाता है। एक ट्रांसपेरेंसी होती है इस रिश्ते में। चूंकि ये रिश्ता हमें जन्म से तो मिलता नहीं, हमें उसे खुद चुनना होता है बिना भेदभाव के। जहां वाइब मैच हुई वही हमारा दोस्त हुआ। ना उम्र, ना जाति, ना धर्म, ना हैसियत, बस है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, है ना। इस रिश्ते में कोई हमें जज नहीं करता बिना शर्त। हर जगह एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ खड़े होने का नाम ही तो दोस्ती है। श्रोताओं, जहां झिझक, डर, खोने पाने का उम्मीद और लालच, उसके लिए तो तमाम रिश्ते हैं। और शायद इसीलिए हम उन रिश्तों में सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हैं। इसीलिए वहां दूरियां भी हैं, लापरवाही भी है और गलतफहमियां भी हैं।

श्रोताओं, अपने माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग, भाई बहन और जीवन साथी से भी अगर दोस्ती वाला रिश्ता बनाया जाए तो यकीन माने रिश्ता कभी बोझ नहीं बनेगा। फूलों से सजा हुआ बाग लगेगा और आपकी जिंदगी संवर जाएगी, महकी महकी सी हो जाएगी। बुरे वक्त में साथी काम आते हैं श्रोताओं, रीति रिवाजों से बंधे हुए रिश्ते नहीं, क्योंकि दिल के नज़दीक वही लोग होते हैं, वही रिश्ते होते हैं जो शोर में भी आपकी खामोशी और खामोशी में आपके अंदर के उथल पुथल को भी पहचान लें। अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त है तो उसकी कदर करें।

श्रोताओं, अगर आपके पास भी ऐसे दोस्त हैं जो मस्ती की पाठशाला चलाते हैं तो यकीनन आप बहुत भाग्यशाली हैं। पर मैं श्रोताओं, इस दुनिया में

दोस्ती के नाम पर दगा देने वाले भी बहुत हैं। इसी दोस्ती और विश्वास की आड़ में लोग कई घिनौना क्राइम भी करते हैं। उनमें से एक है मानव तस्करी। जी हाँ श्रोताओं, आज है मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस। श्रोताओं, मानव तस्करी का नाम लेते ही जो तस्वीर हमारे सामने सबसे पहले आती है वो है किसी बच्चे या लड़की का अपहरण करके बच्चे को बेच दिया जाए। नहीं, इसके अलावा भी किसी इंसान को लालच देकर, दबाव बनाकर, जबरदस्ती ऐसी जगह ले जाना जहां से वो भाग न सके और उससे उनकी मर्जी के खिलाफ गलत काम करवाया जाए, उनका शोषण किया जाए, ये भी मानव तस्करी ही है। जैसे कि नौकरी का झांसा देकर शहर या विदेश बुलाना, पैसे का या पढ़ाई

शहर या विदेश बुलाना, पैसे का या पढ़ाई का लालच देकर भीख मंगवाना, गैर कानूनी काम भी करवाना या फिर देह व्यापार करवाना, और सबसे बड़ी बात, मानव तस्करी उम्र नहीं देखती बल्कि अपना मकसद देखते हैं। श्रोताओं श्रोताओं मानव तस्कर आज के समय में इतने स्मार्ट हो गए हैं कि उनका भी क्राइम करने का तरीका स्मार्ट हो गया है। आजकल मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म के जरिए क्राइम हो रहा है। अट्रैक्टिव प्रोफाइल्स, चिकनी चुपड़ी बातें, फेक डॉक्यूमेंट्स, फर्जी नौकरी का विज्ञापन या ऑफर्स, आप आसानी से पता नहीं कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। काम लेने के बाद अकाउंट्स बंद हो जाते हैं और नंबर्स भी बंद हो जाते हैं। उन लोगों का कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता किसी के पास। हम इंटरनेट के इतने दीवाने हो चुके हैं कि हमें रियल वर्ल्ड और जमीनी हकीकत में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। सवाल ये है कि इस क्राइम से निजात कैसे पाएं? तो उसका एकमात्र उपाय है जागरूकता और पढ़ाई। थोड़ी सी आप मदद कीजिए और थोड़ा सहयोग सरकार करेगी। तो जागरूक होइए और स्मार्ट बनिए, और मानव तस्करी से बचिए भी और बचाइए भी।

अभी आप सुन रहे थे समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम जिसका नाम था कुछ बातें कुछ गीत। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार हमेशा की तरह, जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
2: वो लिखते हैं, जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान और जीवन में खुशियां लाता है वही सबसे सफल इंसान है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
3: और भटीपारा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
2: नमस्कार। खनिज पदार्थों पर केंद्रित ये भी जानिए श्रृंखला बेहद रोचक, दिलचस्प और अद्भुत रही। ऐसी जानकारी जरूर प्रसारित करते रहें।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं लगातार संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। अब एक बार फिर से लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और रोचक प्रेरक प्रसंग लेकर हम प्रस्तुत हैं।
2: आज हम बात करेंगे भारत के उस महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी की, जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उनका एक अन्य प्रसिद्ध नारा था, जय हिंद।
3: श्रोताओं आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं।
2: बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी थे। आपको बता दें कि उन दिनों में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा को इंडियन सिविल सर्विसेज या ICS कहते थे। आज इसी सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा या IAS कहते हैं।
3: श्रोता उन्होंने इंग्लैंड जाकर भारतीय सिविल सेवा यानी ICS की परीक्षा दी। उस समय ICS को ब्रिटिश शासन की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन सेवाओं में से एक माना जाता था।
2: उन्होंने परीक्षा में उच्च स्थान यानी चौथा स्थान प्राप्त किया। उनके सामने एक सुरक्षित, सम्मानित और समृद्ध सरकारी जीवन का अवसर था।
3: ये उपलब्धि इसलिए भी विशेष मानी जाती है क्योंकि उस समय ICS परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन और लब्ध प्रतिष्ठ परीक्षाओं में गिनी जाती थी और अधिकांश भारतीयों के लिए इसे पास करना बहुत कठिन हुआ करता था।
2: लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या मैं उस सरकार की सेवा कर सकता हूँ जिसके अधीन मेरा अपना भारत देश गुलाम है।
3: बहुत विचार विमर्श करने के बाद सन 1921 में उन्होंने स्वेच्छा से ICS से इस्तीफा दे दिया और त्याग पत्र पर लिखा कि वे विदेशी शासन की सेवा नहीं बल्कि भारत की सेवा करना चाहते हैं।
2: जब ये समाचार भारत पहुंचा तो अनेक युवाओं को देश के लिए काम करने की नई प्रेरणा मिली। शुरुआत में उनके परिवार के सभी सदस्य इस निर्णय से सहमत नहीं थे,
3: लेकिन धीरे धीरे समय के साथ परिवार ने उनके निर्णय का सम्मान किया और जब वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता बने तो उनके परिवार को उन पर बड़ा गर्व हुआ।
2: ये प्रसंग उनके जीवन का एक प्रेरक उदाहरण है जो बताता है कि व्यक्तिगत सफलता से अधिक देश की सेवा महत्वपूर्ण है।
3: श्रोताओं आज भी उनके जीवन का ये प्रसंग हजारों युवाओं और सबको प्रेरणा देता है। ये घटना बताती है कि महान व्यक्तित्व केवल सफलता से ही नहीं बल्कि अपने आदर्शों के प्रति अटल रहने से बनते हैं।
2: जी
3: श्रोताओं आज के प्रसंग में आपने एक शब्द सुना, शब्द था
2: लब्ध प्रतिष्ठ।
3: इसका अर्थ है
2: अत्यंत प्रतिष्ठित या सम्मानित।
3: तो श्रोताओं अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, अंग्रेजी शासन काल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है।

0: और साथ ही साथ आपको अर्थ बताना है लब्ध प्रतिष्ठ शब्द का। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अंग्रेजी शासनकाल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ आपको बताना है लब्ध प्रतिष्ठ का अर्थ।
0: श्रोताओ, आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम। शीर्षक है पहली बूंद।
1: ये कार्यक्रम NCERT की कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो किस तरह धरती पर आनंद और उल्लास का वातावरण रच जाता है और लोगों को बहुत राहत मिलती है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम पहली बूंद। जरा सोचिए मित्रों, क्या होता यदि हम बीमारियों और संक्रमणों का इलाज नहीं खोज पाते। पहले बहुत सी महामारियों से हजारों लोग मरते थे। इतिहास बताता है कि गांव के गांव खत्म हो जाते थे, लेकिन अब इलाज या रोग निरोधक टीके खोज लिए गए हैं।
1: जी हाँ, रोगाणु विज्ञान में एक महान चिकित्सक लुई पाश्चर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने बहुत सी बीमारियों के टीकों की खोज की और दुनिया को महामारियों से बचाया।
0: तो आज का कार्यक्रम लुई पाश्चर के जीवन पर आधारित है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लुई पाश्चर।

0: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
1: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
0: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
2: De Marseille, dans le sud de la France.
3: Ladies and gentlemen, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मोनसिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय

0: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है, उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
1: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
2: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
0: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
2: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
0: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
3: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
4: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी

0: में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
1: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
0: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
1: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
2: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
1: चलो,
3: अरे भेड़िया, अरे
2: भेड़िया। लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
4: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
3: चलो चलो चलो चलो,
5: अरे पकड़ो, चलो चलो, मुझे
6: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है,
3: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
2: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
4: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
2: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
4: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठा पटक में कहीं दब के रह गए थे।
2: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
4: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
2: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
7: लुई पाश्चर
8: सर,
7: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
8: कहिए सर।
7: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
8: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
7: ठीक है।
4: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है।

0: साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
0: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
0: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
0: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
0: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
0: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा, हाँ इंजेक्शन लगा दूं।
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
0: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताईं।
4: सर सर, ये टेलीग्राम।
3: अच्छा, लाओ दिखाओ। हाँ, अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
3: देखो, टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
3: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
3: हाँ चार्ल्स।
0: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
1: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
5: सर देखिए, एक पागल।

0: ने मेरे बेटे के हाथ पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
1: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
0: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए वरना मेरा बेटा।
1: आप
0: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
1: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ
0: मेरा
1: अच्छा,
0: बेटा।
1: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा। हाँ।
2: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
3: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
2: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
3: पास्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पास्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
2: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पास्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
3: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पास्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
2: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
4: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
2: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज़ द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल। ही वाज़ अ ह्यूमनिस्ट, ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
5: और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुमलता,
6: जगबंधु,
5: चेतना,
6: अर्शद और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार। उमंग।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। पीटीएम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम नए डराने का।

सुनिधि चौहान की आवाज में आपने सुना फिल्म अय्यारी का वो गीत जिसमें संगीत था रोचक कोहली का और गीत को लिखा था मनोज मुंतशिर ने। श्रोताओं, अगला गाना भी हमने लिया है मनोज मुंतशिर का ही लिखा हुआ, आवाज है अरमान मलिक की, संगीत है अमाल मलिक का और फिल्म का नाम है MS धोनी।

0: गा और फिल्म का नाम था सांवरिया। श्रद्धा फिल्मी गीतों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आपने सुना श्रेया घोषाल की बेहद मीठी सी प्यारी सी आवाज में फिल्म साया का ये गाना, जिसमें शब्द थे सैयद कादरी के और म्यूजिक था अनु मलिक का। अब आइए सुनते हैं स्त्री मूवी का ये गाना, जिसे गाया है आस्था गिल, सचिन सिंधवी, जिगर सरैया और दिव्या कुमार ने।

श्रोताओं, स्त्री मूवी का जो गाना आपने सुना उसको लिखा था वायु ने और संगीत था सचिन जेगर का। नए तराने कार्यक्रम का आखिरी गाना हमने लिया है फिल्म सुपर 30 से। आवाज़ है श्रेया घोषाल और उदित नारायण की।

श्रेया घोषाल और उदित नारायण की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत। फिल्म था सुपर 30। इसी गीत के साथ नए तरानी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीटर वेव 196.1 मीटर 31,530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, कुछ देर के बाद हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलेंगे जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। सभापति ने बताया कि उन्होंने डॉ. जितेंद्र सिंह की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने संबंधी सूचना स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि विधेयक की प्रतियां सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं, जिससे वे इसमें संशोधन प्रस्तुत कर सकें। लोकसभा ने कल यह विधेयक पारित कर दिया है। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
1: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
0: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
2: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के गोला बारूद के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के बरनाला में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े सफाई कर्मचारियों के साथ कथित पुलिस ज्यादती के मामले में पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से इस मामले में 7 दिन के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर किए गए इसके जवाब में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड

0: effect. In a social media post, Rahane said the time is right for him to move on from international cricket and all formats. Rahane last played for India in 2023 when he was called up to the test team for the tour of West Indies. The Indian men's team has stormed into the semi-finals of the Squash Junior Team Championships in Ontario, Canada. The fifth-seeded Indian men's team defeated England 2-1 to reach the semi-finals. They will next face the United States. And with that, we end this.
1: अब आप शाइस्ताबानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गाजीपुर में 692 करोड़ रुपए के 268 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह संग बुनियाद प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 12 वर्षों में हमारी हुकूमत में नौजवानों को रोजगार के मौके मिले हैं और मुख्तलिफ स्कीमों का निफाज किया गया है।
2: पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिला है। प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजनाएं, प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजनाएं, डिजिटल भारत की योजनाएं, एनईपी 2020 और अनेक ऐसी योजनाएं हैं। मिशन रोजगार के अंदर भी देश के अंदर लाखों नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं।
1: इस मौके पर मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों से इस्तफादा करने वालों में कबूलियत नामा और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का दौरा किया और रियासत की खुशहाली और भलाई के लिए दुआ करते हुए बाबा विश्वनाथ की पूजा की। सावन के पहले दिन मंगला आरती के बाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर मंदिर के अहाते और अतराफ के इलाकों में सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। मंदिर इंतजामिया के मुताबिक सावन के महीने में लाखों अकीदतमंदों के काशी पहुंचने के इम्कान के पेश नजर खसूसी इंतजाम किए गए हैं। श्रावण माह के सालाना कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। बाकी तफसीलात हमारे नामानिगार से।
3: लखनऊ में डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी ने बताया कि एक महीने के लिए राजधानी के कई रास्तों पर डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनमें जिगजैग की छाया, ग्लूकोज वाटर और ओआरएस वितरण की व्यवस्थाएं शामिल हैं। श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं यौम पैदाइश के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने कल उनके जाए पैदाइश सिर गोवर्धनपुर वाराणसी से मुल्क की श्री गुरु रविदास महाराज हम आहंगी करारदाद मुहिम का आगाज किया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मुहिम का इफ्तिताह किया। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल और बीजेपी के रियासती सदर पंकज चौधरी भी इस तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा कि हर शहरी संत रविदास के नजरियात को अपनाकर तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का हदफ हासिल कर सकता है। इस मौके पर वजीर आला ने भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदास नगर रखने का ऐलान किया। मुल्कगीर श्री गुरु रविदास महाराज हारमोनी रिजर्वेशन मुहिम के तहत संत रविदास जी के मुकदस जाय पैदाइश से मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ रियासतों तंजीमी अजला डिवीजनों देहातों और बस्तियों में भेजा जाएगा। लोकसभा ने कल अवामी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 को मंजूर कर लिया। लोकसभा ने अवामी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तरीकों की रोकथाम बिल 2026 को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और मुजरिमों को जायदाद जब्त करने का इंतजाम किया गया है। मुकदमा और मरकज के जेर इंतजाम इलाके को रोजाना की समाअत के लिए खसूसी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने का हुक्म दिया गया है। पुलिस स्टेशन में इतला दर्ज होने की तारीख से 2 माह के अंदर जराइम की तफ्तीश मुकम्मल की जानी चाहिए। मरकजी वजीर मुमलकत जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये तरमीम कानून को मजीद सख्त बनाने और तेज रफ्तार इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए की गई है। दरअसल राज्यसभा ने कौमी इज्जत के तहफ्फुज़ के लिए कौमी इज्जत की तौहीन की रोकथाम तरमीम बिल 2026 भी मंजूर किया है। यह बिल वंदे मातरम को कौमी तराने की तरह कानूनी तहफ्फुज फराहम करेगा। मरकजी वजीर मुमलकत बराए उमूर दाखला नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम की तौहीन करने पर 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। हज 2027 पर जाने वाले अफराद के नामों का इंतखाब आज कुरानदाजी के जरिए किया जाएगा।

0: इंतखाब का ये अमल मुंबई में हज कमेटी ऑफ इंडिया के दफ्तर में किया जाएगा। हज के लिए दरख्वास्त देने वाले हज कमेटी ऑफ इंडिया के सरकारी वेबसाइट पर अपने कवर नंबर का स्टेटस चेक कर सकेंगे। इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया को उत्तर प्रदेश से हज के लिए 22,623 इब्तदाई दरखास्तें मौसूल हुई हैं। रियासती वजीर बराए मुस्लिम वक्फ हज दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि इस बार भी आजमीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएगी। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में मुनाकिद होने वाले 2026 दौलत मुश्तरका खेलों में उत्तर प्रदेश के गुलवीर सिंह ने मर्दों के 10,000 मीटर की दौड़ में चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम किया है। वो इवेंट में तमगा जीतने वाले पहले हिंदुस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गुलवीर को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर 30,530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है घर संसार।

0: घर संसार सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को आज की रेडियो सखी अर्चना का प्यार भरा नमस्ते। बहनों, आज से श्रावण मास का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। कहते हैं ये महीना महादेव को अत्यंत प्रिय है। सावन की फुहारों में प्रकृति मुस्कुराने लगती है, जल की हर बूंद एक नए जीवन की आस जगाती है। यानी बहनों, जल की हर बूंद का बहुत ही महत्व है, और बहनों पानी के इसी महत्व को समझने के लिए आज हम चर्चा करेंगे जल संचयन विषय पर। तो आइए बहनों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा से। बहनों, जल संचयन यानी कि पानी की हर बूंद को बचाने का संकल्प, क्योंकि पानी की हर बूंद हमारे भविष्य के लिए वरदान है। बहनों, बारिश का पानी प्रकृति का अनमोल उपहार है। यदि हम इसे सही तरीके से संचित करें तो ना केवल पानी की कमी को दूर कर सकते हैं, बल्कि अपने आप को और समाज को एक सुरक्षित भविष्य भी दे सकते हैं। जरा सोचिए, सुबह की चाय से लेकर सफाई करने, खाना बनाने, कपड़े धोने, पेड़ों को पानी देने, हर काम के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन आज बढ़ती आबादी, बदलती जलवायु, प्रदूषण की वजह से पानी की कमी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्या पानी सभी को उपलब्ध होगा। बहनों, ये बिल्कुल सच बात है कि अगर हम पानी की बर्बादी नहीं रोकेंगे तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम सभी पानी के लिए तरसेंगे। लेकिन अगर हमारी थोड़ी सी कोशिश हमें इस समस्या से निजात दिला सके तो कितना अच्छा होगा। अगर हर व्यक्ति, हर परिवार रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी बचाने का संकल्प ले तो हजारों लीटर पानी बचाया जा सकता है। हर कोई ये प्रण ले कि हमारी छत पर गिरने वाले वर्षा के जल की हर बूंद व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, तो हमारे ये छोटे बदलाव भविष्य की सूरत बदल सकते हैं। बहनों, वर्षा के जल को बचाने के लिए छत से आने वाले पानी को जमीन के अंदर बनी टंकियों में स्टोर करना, सोखता गड्ढे बनाना, घर के आसपास पौधे लगाना कुछ अच्छे और आसान उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हम आसानी से जल का संचयन कर सकते हैं। बहनों, पानी बचाना कोई कठिन कार्य नहीं है, बस एक संकल्प लेने की ज़रूरत है। तो आइए लेते हैं आज एक संकल्प, ना पानी व्यर्थ बहाएंगे, हर बूंद को बचाएंगे। बहनों, इसी थॉटफुल संदेश के साथ हम चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, और अब समय है एक वार्ता सुनने का जिसका विषय है समय होत बलवान, और आज की वार्ताकार हैं गीता कपूर धवन जी। तो चलिए बहनों, सुनते हैं और समझते हैं समय के महत्व को इस वार्ता के माध्यम से।
1: समय मनुष्य के जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। धन, वस्तुएं और अवसर खो जाने पर फिर से प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसीलिए कहा गया है, समय ही जीवन है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। संसार के सभी महान व्यक्तियों की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य समय का सदुपयोग ही रहा है। समय एक ऐसा धन है जो

सभी को समान रूप से मिलता है। अमीर और गरीब, छोटे और बड़े, सभी के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। अंतर केवल इतना है कि कोई इन घंटों का सही उपयोग करता है और कोई उन्हें व्यर्थ गवा देता है। समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है, जबकि समय को नष्ट करने वाला व्यक्ति बाद में पछताता है। समय का सदुपयोग, प्रत्येक कार्य को उचित समय पर करना और अपने समय को ऐसे कार्यों में लगाना जिससे स्वयं, परिवार और समाज का कल्याण हो। पढ़ाई, मेहनत, व्यायाम, अच्छे संस्कार, नई बातें सीखना और दूसरों की सहायता करना समय का सदुपयोग है। वहीं आलस्य, बिना उद्देश्य के मोबाइल चलाना और निरर्थक बातचीत में समय बिताना समय का दुरुपयोग है। विद्यार्थी जीवन भविष्य की नींव होता है। यदि विद्यार्थी समय का सही उपयोग करे, नियमित पढ़ाई करे, समय पर गृह कार्य पूरा करे और अनुशासन का पालन करे, तो वे अवश्य सफल होते हैं। परीक्षा के समय घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने पूरे वर्ष समय का सदुपयोग किया होता है। समय का सदुपयोग करने के लिए समय का सही प्रबंधन आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, नियमित अध्ययन करना, समय पर भोजन करना, खेल कूद करना और पर्याप्त विश्राम करना अच्छी आदतें हैं। इससे जीवन संतुलित और सफल बनता है। आज के समय में मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, वीडियो गेम और मनोरंजन के अनेक साधनों के कारण लोग अपना बहुत सा समय व्यर्थ कर देते हैं। कई लोग काम को कल पर टालते रहते हैं। आलस्य और लापरवाही भी समय की बर्बादी के मुख्य कारण हैं। धीरे धीरे यही आदतें सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति अपने सभी कार्य समय पर पूरा कर लेता है। उसे मानसिक शांति मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। ऐसे लोग अपने लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। समाज में उनका सम्मान होता है और वे दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। इतिहास गवाह है कि संसार के अनेक महान व्यक्तियों ने समय का अत्यंत मूल्य समझा। उन्होंने अपने प्रत्येक क्षण का उपयोग ज्ञान, परिश्रम और समाज की सेवा में किया। इसी कारण वे आज भी पूरे विश्व में सम्मान के साथ याद किए जाते हैं। उनकी सफलता हमें सिखाती है कि समय का सदुपयोग ही महानता का आधार है। समय बचाने के लिए हमें पहले से योजना बनानी चाहिए, कार्यों की प्राथमिकता तय करनी चाहिए, अनावश्यक मोबाइल उपयोग कम करना चाहिए, हर कार्य समय पर पूरा करने की आदत डालनी चाहिए, खाली समय का उपयोग पुस्तकें पढ़ने, नई कला सीखने या परिवार के साथ अच्छे समय बिताने में करना चाहिए। समय का सदुपयोग अनुशासन के बिना संभव नहीं है। अनुशासित व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है, वह समय का पालन करता है और हर कार्य को पूरी लगन के साथ करता है। अनुशासन सफलता की पहली सीढ़ी है। जब देश के नागरिक समय का सही उपयोग करते हैं, तो देश की उन्नति होती है। मेहनती विद्यार्थी अच्छे नागरिक बनते हैं, कुशल कर्मचारी अपने कार्य को ईमानदारी से करते हैं और वैज्ञानिक, शिक्षक, किसान तथा सैनिक अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करके राष्ट्र को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए समय का सदुपयोग केवल व्यक्तिगत सफलता ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के विकास के लिए भी आवश्यक है। समय का सदुपयोग का अर्थ समय को व्यर्थ न गंवाना, बल्कि उसे उपयोगी कार्यों में लगाना है। समय का सही प्रबंधन हमें तनाव से बचाता है और शरीर व मन को स्वस्थ रखता है। यदि हमें समय की कद्र करें और उसका सदुपयोग करें, तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। इसके विपरीत समय को व्यर्थ करने से जीवन में पछतावा होता है। अतः हमें हमेशा समय का सम्मान करना चाहिए और उसका बुद्धिमानी से उपयोग करना सीखना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहते हैं,
तो आपको अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। आप चाहें कितने ही होशियार क्यों ना हो, समय बर्बाद करने और पढ़ाई ना करने से परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे। कार्यस्थलों पर भी समय का सदुपयोग करने वाले लोगों की बहुत सराहना की जाती है, उन्हें पदों

0: उन्नति, प्रदर्शन, बोनस आदि मिलते हैं, दूसरी ओर आलसी कर्मचारियों की सराहना नहीं की जाती और उन्हें कोई पदोन्नति नहीं मिलती। समय का सही उपयोग करके ही प्रसिद्धि प्राप्त होती है। जैसे कि पेशेवर और व्यापारी जो खूब पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, वे अपने समय का सदुपयोग करना जानते हैं। जो लोग समय ही धन है इस कहावत के महत्व और अर्थ को समझते हैं, वे अपने जीवन में समृद्ध होते हैं और आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति प्राप्त करते हैं। वे अक्सर अपने जीवन में असफलता का सामना करते हैं। समय अनमोल है क्योंकि हमें अपने जीवन काल में सीमित समय ही मिलता है। हम यह नहीं कह सकते कि अगले कुछ घंटों में क्या होगा। यह लचीला और निर्दयी है क्योंकि यह किसी का इंतजार नहीं करता। इसीलिए हमेशा अपने समय का सदुपयोग करें। हमें अपना समय अनावश्यक चीजों या गतिविधियों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको अपने समय के हर पल को सार्थक बनाना चाहिए। आधुनिक युग में पैसा हर किसी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक बन गया है, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि समय पैसे से कहीं अधिक कीमती है। आप समय नहीं खरीद सकते।
1: बहनों, अभी हम सुन रहे थे एक वार्ता गीता कपूर धवन जी से। अब समय हो चला है आज के कार्यक्रम के अगले सेगमेंट ज्ञान विज्ञान का, जिसमें आज हम बात करेंगे वर्चुअल ट्राई ऑन की, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।

बहनों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहनों, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने ऑनलाइन कोई साड़ी, कुर्ती, चश्मा या कुछ ऑर्डर किया, लेकिन जब वे आया तो आपने उसे ट्राई किया तो आपको लगा रही है तो मेरे ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो बहनों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आजकल AI के ज़माने में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा आप बिना दुकान पर जाए, बिना ट्रायल रूम यूज़ किए, सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर ही उस वस्तु को अपने ऊपर ट्राई करके देख सकती हैं, और इस टेक्नोलॉजी का नाम है वर्चुअल ट्राई ऑन। बहनों, आज इस टेक्नोलॉजी की मदद से हमारा मोबाइल हमारा स्टाइल सलाहकार भी बन चुका है। इसकी मदद से ऑनलाइन शॉपिंग अब और ज़्यादा आसान व समझदारी भरी हो गई है। लेकिन बहनों, आप हम सभी ये बात जानते हैं कि इन तकनीकों का इस्तेमाल हमारे लिए जितना फ़ायदेमंद हो सकता है उतना तकलीफदेह भी हो सकता है। इसलिए किसी भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते समय सावधानी बरतना बहुत ही आवश्यक है। तो बहनों, अब से आप भी इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए, मगर ध्यान से। और बहनों, जब तक आप AI वर्चुअल ट्राई ऑन का प्रयोग करके स्मार्ट शॉपिंग की योजना बनाते हैं, तब तक हम आपको सुनवाते हैं एक मधुर गीत।

बहनों, हमारे जीवन में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, जिनमें से एक रिश्ता ऐसा भी होता है जिससे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं होता और ना ये रिश्ता किसी भी सामाजिक बंधन का मोहताज होता है, लेकिन फिर भी सबसे प्यारा होता है और वह रिश्ता है दोस्ती का। कहते हैं दोस्त वह होता है जो आपके चेहरे की मुस्कान के पीछे के दर्द को समझ ले, भरोसेमंद हो, आपसे निस्वार्थ प्रेम भाव रखता हो। लेकिन बहनों, आज के बदलते समय में, बदलती जीवन शैली और तकनीक के दौर में क्या दोस्ती के मायने भी बदल गए हैं? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बहनों, बचपन में दोस्ती मिट्टी के घरौंदों, कंचों, पतंगों, गुड्डी गुड़िया के खेलों व स्कूल की घंटियों के बीच पनपती थी। बिना बताए दोस्त के घर चले जाना, दोस्तों के साथ एक ही टिफिन बांट कर खा लेना, छोटी छोटी बातों पर रोटना मनाना। आपको नहीं लगता कि आजकल के दौर में सब कुछ बदल चुका है? आज पूरी दुनिया हमारी हथेलियों में सिमट कर रह गई है। आजकल मोबाइल से और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच की दूरियां तो कम हुई हैं, पर दिलों की दूरियां कहीं बढ़ गई हैं। आज हम जन्मदिन, शादी की सालगिरह की शुभकामनाएँ फ़ोन पर ही एक बधाई संदेश और इमोजी के माध्यम से दे देते हैं। आपको नहीं लगता कि आत्मीयता कम और औपचारिकता ज़्यादा है? दरअसल बहनों, आज भी दोस्ती का मूल भाव तो वही है, लेकिन निभाने का तरीका थोड़ा बदल गया है। बहनों, आज हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पर बना हर रिश्ता दोस्ती नहीं होता। दोस्ती वह रिश्ता है जिसमें विश्वास टूटने ना पाए, संवाद रुकने ना पाए व संवेदनाएँ जीवित रहें। क्योंकि बहनों, किसी ने सच ही कहा है कि दोस्ती की पहचान मित्रों की संख्या से नहीं बल्कि उनके साथ गहराई से होती है। दोस्ती का सबसे सुंदर पक्ष तो यही है कि यह हमें बेहतर इंसान बनाती है। तो आइए बहनों, हम भी अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा सा वक्त अपने दोस्तों के लिए निकालें। बहनों, अब जब रिश्तों की बात होती है तो एक और प्यारा सा रिश्ता बनता है एक बच्चे का, जब वह समाज से स्कूल के माध्यम से जुड़ता है, और वो प्यारा सा रिश्ता बनता है उसका अपने टीचर के साथ। तो बहनों, इसी रिश्ते के विषय में आज हम बात करेंगे अपनी मेहमान वीणा अब्राहम जी से, जो एक शिक्षिका हैं और अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही प्यारे से रिश्ते में बंधी हैं। तो आइए बहनों, सुनते हैं उनसे बातचीत के कुछ अंश।

0: वीना जी, हाँ, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद अर्चना जी।
0: वीना जी, एक माँ होने के नाते सबसे पहले तो आज मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आज के समय में बच्चों की परवरिश को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है?
1: आज के समय में जैसा आप देख रहे हो कि बच्चे जो है वो डिजिटल वर्ल्ड से बहुत ज्यादा प्रभावित है, बहुत जल्दी माइंड उनका डाइवर्ट हो जाता है। तो आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती मेरे ख्याल से बच्चों को सही संस्कार देना और उनको समय देना और भावात्मक रूप से उनको सुरक्षित बनाना बहुत जरूरी है।
0: तो बच्चों की पढ़ाई में घर और स्कूल के बीच
1: जी,
0: कोऑर्डिनेशन कितना जरूरी है?
1: बहुत जरूरी है। घर और स्कूल का समन्वय बच्चे की सफलता की कुंजी आप उसे कह सकते हो, क्योंकि यदि अध्यापक और अभिभावक नियमित रूप से कॉन्वर्सेशन करते रहेंगे, संवाद बनाए रखेंगे, तो बच्चे की प्रगति, उसका व्यवहार और कठिनाइयों पर मिलकर काम करेंगे, तो मैं मानती हूँ कि बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है इससे और उसका संपूर्ण विकास होता है। तो बहुत जरूरी है घर और स्कूल का समन्वय बनाकर रखना, पेरेंट्स और टीचर्स में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए।
0: जी, तो उसी के लिए स्कूलों में आजकल पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी
1: हाँ,
0: अरेंज की
1: पीटीएम
0: जाती है।
1: होता है जिसमें
0: जी
1: पेरेंट्स आके बच्चों के जो भी प्रॉब्लम्स हमसे पूछते हैं हम बताते हैं और कई बार सॉल्यूशन भी देते हैं उनको कि कैसे उसको उस बच्चे की प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए।
0: वीना जी, आज तो आपके बच्चे बड़े हैं, लेकिन एक समय
1: जी
0: रहा होगा जब आपके बच्चे छोटे रहे होंगे और आप साथ ही
1: जी
0: साथ शिक्षिका का कार्य भी करती थी, तो किस तरीके से मैनेज कर पाती थी ये सब?
1: हाँ, थोड़ा मुश्किल जरूर है जॉब के साथ एक माँ की भूमिका भी निभाना, लेकिन हर भूमिका की जैसे अपनी जिम्मेदारी होती है, तो उसी प्रकार से मैंने उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश की और शायद सफल भी रही हूँ। तो जब बच्चे छोटे थे तो मैंने समय का सही प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट रखा, उसके अलावा परिवार और जॉब के बीच में एक संतुलन बनाकर चलने की कोशिश की मैंने।
0: वीना जी, आज के समय में हम सुनते हैं कि बच्चों पे पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो
1: जी
0: मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर कैसे कम किया जा सकता है?
1: हाँ, ये सही है कि बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा है। बोर्ड एग्जाम्स में अगर उनको सही परसेंटेज ना मिले और 90s में एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे पेरेंट्स भी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि बच्चों पर अपनी अपेक्षाओं को थोपा ना जाए, बोझ नहीं डालना चाहिए उनसे पेरेंट्स को, और उनकी रुचि है, जो क्षमता है, तो इतना रोचक बनाना चाहिए और जिससे बच्चा इंटरेस्ट ले उसमें, और उसके अलावा उसको खेलने के लिए, करिकुलर एक्टिविटीज के लिए थोड़ा रेस्ट का भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे कुछ इतना मतलब रेस्टलेस रहते हैं। उनसे मैंने पूछा भी, कहते हैं माँ स्कूल से जाते हैं, खाना खाते हैं, फिर ट्यूशन चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर होमवर्क करते हैं, तो उनके पास टाइम ही नहीं है खेलने के लिए। और अगर वो छोटी छोटी उपलब्धियां उनको मिलती है तो उनकी करनी चाहिए, जैसे बहुत खुश होते हैं, इससे उनकी टेंशन कम होगी, तनाव कम होगा और पढ़ाई और सीखने में उनको रुचि भी होगी।
0: क्योंकि बच्चों को मेरे हिसाब से बिना जी की पढ़ाई के लिए उनको इंटरेस्ट जगाना बहुत जरूरी है उनके
1: हाँ,
0: अंदर।
1: क्योंकि आज को थोड़ा इजी में अगर बच्चा नहीं, उसका मन नहीं, तो जबरदस्ती थोपे नहीं उस,
0: हाँ,
1: तो
0: कई
1: वो
0: बार बच्चों का
1: सीखेगा।
0: मन पढ़ाई से हटकर दूसरी
1: हाँ,
0: अलग एक्टिविटीज में होता है, तो उसके लिए भी
1: उसके लिए भी टाइम देना चाहिए। कई बार पेरेंट्स डांट देते हैं, अरे क्या करोगे, क्या डांस सीखना, क्या म्यूजिक सीखना, तो वो चीज नहीं होना। वो भी एक तरह से अगर बच्चा म्यूजिक की तरफ इंटरेस्ट ले रहा है तो वो म्यूजिक सीख रहा है या डांस सीख रहा है, तो उससे भी उसकी पढ़ाई पर पॉजिटिव असर ही पड़ेगा।
0: जी बिल्कुल। वीना जी, आपके टीचिंग करियर में कोई ऐसा प्रेरणादायक अनुभव रहा हो जो आज आप हमारी श्रोता बहनों के साथ शेयर करना चाहें?
1: जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे को 34 ईयर्स हो गए हैं पढ़ाते हुए सेंट जॉर्जेस में, तो मेरे साथ तो बहुत से बच्चे ऐसे जुड़े हैं जो शुरू में बहुत नॉटी थे, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे, लड़ाई झगड़ा, बहुत टॉकेटिव भी थे। तो ऐसे कई बच्चे थे जो फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में मैंने ऐसे देखा था, लेकिन उनको जब थोड़ा अगर उनको पढ़ाई में कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्यार से समझाने पे और उनकी शैतानी, जैसे उनको डांटना, पनिशमेंट, ये मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा लाभदायक होता है। उनको प्यार से समझाना, अगर प्रॉब्लम है उनको तो समझाना, बातें करने तो उनकी बातों को पॉजिटिव वे में जो मोड़ देना, वो सारी चीजें मैंने कई बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया और वो बच्चे आगे चलकर बहुत अच्छा कर रहे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वही बच्चे जो इतने नॉटी थे, टॉकेटिव थे, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे और बोर्ड में उन्होंने बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए।
0: वीना जी, अगर आप जैसी शिक्षिका हो तो ये तो बिल्कुल तय है कि बच्चे आगे भी हमेशा अच्छा ही करते रहेंगे। और
1: जी
0: आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़कर हमसे बातचीत की और हमारी श्रोता बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

बहनों, अभी आपने सुना वीना अब्राहम जी को अर्चना सिंघल से हुई बातचीत के द्वारा। अब बात करते हैं आज के अगले सेगमेंट होम डेकोर की। बहनों, घर केवल चार दीवारी का नाम नहीं है, बल्कि घर वह एहसास है जहां सुकून और अपनापन बसता है। हम हर समय यही कोशिश करते हैं कि अपने घर को कैसे संवारें, तो इसके लिए बहनों आपको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज हम एक ऐसे फर्नीचर के विषय में बात करेंगे जो हल्का है, टिकाऊ है, आकर्षक है और सबसे अच्छी बात, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं बैंत के फर्नीचर की। बहनों, बैंत का फर्नीचर देखने में तो बहुत ही सुंदर लगता ही है, साथ ही साथ प्राकृतिक सामग्री से भी बना होता है। ये इतना हल्का होता है, आप जब चाहें इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह रख सकती हैं। इसे घर के अंदर व बाहर, जैसे बालकनी, गार्डन, बरामदा, कहीं भी रख सकते हैं। बहनों, आजकल तो बैंत के फर्नीचर के साथ साथ प्लांटर स्टैंड, लैम्प, झूले व स्टोरेज बास्केट भी बनने लगे हैं। और बहनों, बैंत से बने सामानों का ट्रेंड आजकल मॉडर्न इंटीरियर डिज़ाइन में भी काफ़ी बढ़ गया है। तो बहनों, अगली बार जब कभी भी घर की सजावट का विचार मन में आए, तो प्रकृति की सादगी और खूबसूरती से भरपूर बैंत के फर्नीचर के विषय में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि बैंत से बने फर्नीचर का प्रयोग हमें पर्यावरण के प्रति प्रेम का सुंदर संदेश देता है। इसी संदेश के साथ हम पहुंच गए हैं बहनों अपने कार्यक्रम के अंत में, लेकिन हम आपसे कार्यक्रम समाप्ति की इजाज़त मांगे, इससे पहले आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

रेडियो 106.1 मीटर 31,530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम सुगम संगीत का, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं भजन। कलाकार हैं सौम्या।

अभी आप सुन रहे थे सौम्या के गाए कुछ भजन। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसके लिए हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं।

0: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। श्री सिंह इस समय सदन को संबोधित कर रहे हैं।
1: एंड फाइन अप टू 50 लाख एज फार एज द सर्विस प्रोवाइडर इज कंसर्न्ड। नाउ इफ जयराम जी हैज नॉट रेड दैट आई विल रीड आउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि आप ही बार बार टोक रहे हैं और कह रहे हैं आपको ज्यादा। सर्विस प्रोवाइडर मींस एनी एजेंसी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बॉडी, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी बिजनेस एंटिटी, एनी कंपनी, एनी पार्टनरशिप और सिंगल प्रोवाइडरशिप, एनी सब एसोसिएट्स, एनी सब कॉन्ट्रैक्टर्स, एनी प्रोवाइडर ऑफ सपोर्ट ऑफ एनी कंप्यूटर रिसोर्स और एनी मटीरियल बाई वट एवर नेम इट मे बी कॉल्ड विच इज एंगेज बाई द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन।
0: लोकसभा ने कल लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित कर दिया।
2: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह विधेयक संसद में लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
3: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
0: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
4: मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा

0: सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने पर मेटा ने अफसोस जाहिर किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना की वजहें बताने को कहा है, साथ ही ऐसी गलतियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब में फार्मास्यूटिकल्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में तीन निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 1 बजे तक पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर लगभग 20% मतदान हो चुका था। गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21.66% मतदान की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
2: वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने वडोदरा महानगर पालिका के पूर्व पार्षद सतीश पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भीखाभाई रबारी पर दाव लगाया है। इस चुनाव में 2,19,000 से अधिक मतदाता इन दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। निर्वाचन आयोग ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर दोपहर 1 बजे तक 48.91% वोट डाले जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
3: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। विधानसभा क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,20,000 मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच माना जा रहा है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान की महिला टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
4: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
1: ओडिशा के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ की बदलती स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
5: लगातार बारिश की सबसे ज्यादा मार 5 जिलों बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और केंदुझर पर पड़ी है। लगभग 5,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 1,76,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए 3 दिनों के भीतर नुकसान का विस्तृत ब्यौरा सौंपे। इस बीच ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वालों लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान

0: अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी कल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक गरज चमक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। भानु प्रताप सिंह के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। झारखंड के देवघर में आज से श्रावणी मेला शुरू हो गया है।
2: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आंख के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान न मिले, इसके लिए नए फुट ओवरब्रिज से लगातार सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति, पर्यावरण और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान मानव अस्तित्व का आधार है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सेवा की भावना विकसित करने तथा एक स्वस्थ, समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
3: अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज चिल्टमरु मध्य में जहाजों पर किए गए थे। इसके जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमरीकी कमांड के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान और उसके समर्थित समूहों से अमरीकी सैनिकों, वाणिज्यिक जहाजों तथा खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों को होने वाले खतरों को कम करना है। इस बीच ईरान के खुजेस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट के डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से पाकिस्तानी बलों द्वारा घातक गोलीबारी की घटनाओं में हस्तक्षेप करने की अपील की है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के ऑन्टेरियो में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमरीका से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में के फाइनल में भारत के दिलीप महादु गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, ये

वक्त है कार्यक्रम उप शास्त्रीय संगीत का, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं बेगम परवीन सुल्ताना का गायन। इसमें सबसे पहले सुनिए मिश्र पीलू।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत, जिसमें कलाकार थी बेगम परवीन सुल्ताना, गायन था मिश्र पहाड़ी। और अब समय हो रहा है इस कार्यक्रम के समाप्ति का।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मैं हूँ अंजलि और अब समय हो रहा है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का, जो है पुरानी फिल्मों पर आधारित। श्रोताओं, पुराने गाने सिर्फ गाने नहीं होते, एहसास होते हैं। हर धुन किसी की याद, किसी अपने की याद या किसी खूबसूरत लम्हे से जुड़ी होती है। इसलिए आइए इन्हीं यादों को फिर से जीते हैं इस बेहतरीन नगमे के साथ, जो है असली नकली फिल्म से, जिसे सुरों से सजाया है लता मंगेशकर ने और शब्द दिए हैं हजरत जयपुरी ने और संगीत है शंकर जयकिशन का।

कितनी सुरीली, कितनी मीठी, कितनी प्यारी आवाज थी लता मंगेशकर जी की। और अब आगे सुनिए हम ऐसे ही और गाने सुने इनकी प्यारी सी मीठी सी आवाज में। तो चलिए अगला गाना आ रहा है अनपढ़ फिल्म से, जिसे शब्द दिए हैं राजा मेहंदी अली खान ने, और जो है म्यूजिक है मदन मोहन जी का। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

जी हाँ श्रोताओं, जब मंजिल मिल जाती है ना तो जीने की जो चाह है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक बार फिर से लता मंगेशकर की आवाज़ में एक और गाना हम सुनते हैं फिल्म गाइड से, जिसमें शब्द दिए हैं शैलेंद्र ने और संगीत दिया है SD बर्मन साहब ने।

श्रोताओं, ऐसे ही आपका भी कभी कभी मन करता होगा ना ऐसे बेफिक्रे होकर जीने का, और ऐसे ही जो समय है, ऐसे मौसम जो है उसको एंजॉय करने का। तो चलिए कार्यक्रम का आखिरी गाना जल्दी से सुन लेते हैं, और जिस जो है नया दौर फिल्म से, और जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी साहब ने, साहिल लुधियानवी जी का शब्द हैं और

मीडियम वेव 196.1 मीटर का पर्याकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बज चुके हैं और अब समय हो रहा है कार्यक्रम गीत गुंजन का। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम गीत गुंजन की इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, अभी आपने सुना दीवाना फिल्म का ये गाना, जिसे आवाज़ दी थी कुमार सानू और साधना सरगम ने, और शब्द थे समीर के और म्यूजिक था नदीम श्रवण का। तो आइए आपको फिर से एक बार साधना सरगम की आवाज़ में फिर से सुनाते हैं अगला गाना, जो है मोहरा फिल्म से, और उसे गाया है पंकज उदास और साधना सरगम ने, और इसके जो है जो शब्द दिए हैं वो इंदीवर ने दिए हैं, और म्यूजिक दिया है बीजू शाहजी ने।

अभी आपने सुना पंकज उदास और साधना सरगम की बेहद सुरीली आवाज में ये प्यारा सा गाना। श्रोताओं, कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि दिल तक उतर जाती हैं, और ऐसी ही आवाजों में शामिल हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज, जो हम सुनेंगे अगले गाने में, जो है फिल्म दिल है तुम्हारा से, जिसे शब्दों में पिरोया है समीर ने और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना दिल है तुम्हारा फिल्म से गाना, जो गाया था अलका याग्निक और उदित नारायण ने, और शब्द से समीर के, और म्यूजिक था नदीम श्रवण का। श्रोताओं, अलका याग्निक जी की जो जोड़ी है ना सिंगिंग की, वो सबके साथ इतनी फिट बैठती है कि सबके साथ उनके गाने बहुत सुपर हिट जाते हैं। तो अगला हमारा गाना जो है वो अलका याग्निक और सोनू निगम जी का है, जो है फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे से, और जिसमें शब्द दिए हैं सुधाकर शर्मा ने और म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने।

श्रोताओं, कुछ गानों पर सिर्फ सुनने का ही नहीं बल्कि साथ साथ में डांस करने का भी मन करने लग जाता है। तो आइए आपको सुनाते हैं आशा भोसले की बेहद एनर्जेटिक आवाज़ में ये प्यारा सा गाना जो है फिल्म फिजा से, और जिसे शब्दों में पिरोया है गुलजार साहब ने और संगीत दिया है AR रहमान ने।

0: श्रोताओं, ये गीत गुंजन का सफर यहीं पर समाप्त होता है। अपने दोस्त अंजलि को दीजिए इजाजत और अब समय हो रहा है हमारे अगले कार्यक्रम का, जो है रेडियो डॉक्टर, जिसमें आज वार्ता है बच्चों के विरुद्ध आक्रामक व्यवहार और हिंसा पर, और जिसमें वार्ताकार हैं डॉक्टर साहब सिंह से अनिल सिंह की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, हर साल 4 जून को पूरी दुनिया में एग्रेशन यानी आक्रामकता

0: के खिलाफ जो बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे, उनको बचाने के प्रति जागरूकता प्रदर्शित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य रहता है कि ऐसे बच्चों को, उनकी पीड़ा को, उनके मनोभावों को समाज ध्यान दे, समझे, और जो भी उनको मानसिक प्रताड़ना होती है, जिसके वे शिकार होते हैं, किसी भी तरह के शोषण के, उपेक्षा के या आक्रामकता के, उनके प्रति एक जागरूकता समाज में आए। इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र आगरा से मनोवैज्ञानिक डॉक्टर साहब सिंह जी हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार।
0: साहब सिंह जी, देखिए आजकल जो घरों का माहौल है, बच्चों के सामने जो चुनौतियां हैं वो बदल चुकी हैं
1: जी।
0: घरों में भी तनाव बढ़ रहा है, जो हमारे इर्द गिर्द का जो वातावरण है, पूरी दुनिया में वैश्विक तनाव भी हमें नजर आ रहा है
1: जी।
0: और जो हमारा रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास सोशल मीडिया का प्रेशर है
1: जी,
0: और इन सब का प्रभाव हम पर तो पड़ता ही है। साथ में सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वो बच्चे होते हैं
1: जी जी,
0: उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है ना। तो ये जो हम दिवस मना रहे हैं इस पे अगर हम फोकस करें तो आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसे कहा जाता है, तो इसको मनाने की आवश्यकता और जो एग्रेशन है उसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे?
1: देखिए सर, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आज के समय में बहुत ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया है। जो मासूम बच्चे हैं, वो मासूम बच्चे का मतलब होता है जो छल कपट, बुराई, स्वार्थ, तो इनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती।
0: बच्चों को भगवान का रूप,
1: भगवान का रूप कहा जाता है।
0: बच्चे मन के सच्चे
1: होते हैं। ऐसे बच्चों को आजकल जो आजकल भागम भाग वाली जिंदगी है उसमें सब लोग स्ट्रेस से प्रभावित हैं
0: जी जी,
1: और उसका प्रभाव सीधे बच्चों पर पड़ता है। बच्चे कहीं ना कहीं अनेकों रूप से इस आक्रामकता के शिकार होते हैं, जो कि बहुत ही चिंतनीय विषय है। ये आक्रामकता एक प्रकार की नहीं होती, एक ऐसा व्यवहार होता है जिसका उद्देश्य किसी दूसरे व्यक्ति, किसी जीव, किसी वस्तु को जानबूझकर मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना होता है, जो अक्सर गुस्से, हताशा या किसी पर हावी होने की इच्छा से पैदा होता है।
0: मतलब कोई इंटेंशनल वो नहीं है, लेकिन परिस्थितियां जो होती हैं
1: जी,
0: वो इस तरह का मोल्ड कर देती हैं कि वो कहीं ना कहीं इसके प्रभाव में आके एग्रेसिव हो जाते हैं, और बच्चों में भी उसके असर जो है वो
1: देखने को मिलते हैं।
0: वो शारीरिक तौर पे आपने जैसा कहा
1: जी जी,
0: और भावनात्मक तो होते ही
1: जी।
0: और भी कुछ तरह के एग्रेशन है जो बच्चों में नजर आते हैं
1: जी? जो एग्रेशन है वो कई प्रकार के होते हैं। एक शारीरिक आक्रामकता होता है, शाब्दिक आक्रामकता भी होती
0: मतलब
1: है, यानी जो शारीरिक रूप से, यानी किसी को चोट पहुंचाना, किसी को थप्पड़ मारना, किसी को डंडे से पीटना या किसी को धक्का देके गिरा देना, ये शारीरिक आक्रामकता के अंतर्गत आता है। किसी को जैसे गाली देना, अपशब्द कहना, तो जिससे कि उसे बुरा लगे, इस तरह की आक्रामकता होती है, वो शाब्दिक आक्रामकता के अंतर्गत
0: शब्दों के जरिए शब्दों भला बुरा कह के
1: उसे चोट पहुंचाई। कुछ भावनात्मक या आवेगी आक्रामकता भी होती है, भावनात्मक रूप से, यानी उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। भावनात्मक रूप से वो लगाव मान रहा है किसी व्यक्ति से, उसकी बातों पर विश्वास कर रहा है, और उसे पता चला कि ये दिखावटी व्यवहार था, तो इस तरह का जो आक्रामकता होती है ये भी होती है। एक रणनीतिक आक्रामकता भी पाई जाती है, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो अपने व्यवसाय में या अपने जिस फील्ड में काम करते हैं उसमें सफलता पाने के लिए प्लानिंग के द्वारा किसी दूसरे को चीट करते हैं, चीट करके, उन्हें उकसा करके कुछ ऐसे गलत कार्य कराए जाते हैं जिससे उनकी गलती हो और वो अपने
0: एग्रेसिव होके और वो
1: गलती करें।
0: इसका सबसे जो बेहतरीन उदाहरण है वो हमें स्पोर्ट्स में
1: देखने को मिलता है। जैसे अगर कोई बैट्समैन बैटिंग अच्छी कर रहा है, वो आउट नहीं हो रहा, तो उसे विपक्षी टीम जो है स्लेजिंग करती है, और स्लेजिंग करके उसे गलत शॉट खेलने के लिए बाधित कर देते हैं।
0: ठीक बात।
1: ये घरों में भी मिलती है सर देखने को, घरों में भी अक्सर देखा होगा, एक व्यक्ति को जो बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है उसकी सब तारीफ कर रहे हैं, बाकी कुछ लोग उन्हें देखते हैं कि इसके बड़ी तारीफ हो रही है, तो उसके खिलाफ षड्यंत्र रच के इस तरह की घटनाएं कराई जाती है, उकसाया जाता है उसके खिलाफ। तो ये प्रकार की आक्रामकता ही होती है।
0: ये जो आपने इतने सारे कारण बताए आक्रामकता के, इनके मतलब अगर हम पीछे इनके कारणों पे जाएं, ये आक्रामकता जैसे एक तो आपने कहा कि हताशा में होती है
1: जी।
0: इसके मतलब बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं अगर हम समझना चाहें
1: जी।

0: तो क्या किन वजहों से होती है ये?
1: सर इसका एक तो देखो, सबसे पहला रीजन हर चीज का माना जाता है जैविक कारण, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। यानी जन्म से ही कुछ व्यक्तियों की मानसिक संरचना पूर्ण नहीं हो पाती, उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती है ब्रेन डेवलपमेंट में, वो भी एक कारण होता है।
0: तो वो एग्रेसिव
1: वो
0: व्यवहार
1: एग्रेसिव
0: करेगा,
1: व्यवहार करता है, मतलब वो सामान्य व्यवहार नहीं करता, वो स्वतः ही
0: मतलब
1: गुस्से
0: हाँ
1: प्रवृत्ति का होगा।
0: ठीक बात।
1: और इसमें कई बार आनुवंशिक लक्षण भी होते हैं जैविक के अंतर्गत, जैसे परिवार में उनके माता पिता
0: बीपी के
1: पूर्वजों
0: मरीज हैं, जल्दी बीपी
1: वो
0: बढ़ जाता
1: ज्यादा
0: है।
1: वो गुस्साबाज होते हैं, तो बच्चा भी वही सीखता रहता है, तो वो भी
0: हाँ
1: आनुवंशिक कारण हो जाता। कई बार जो टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स होते हैं उनका असंतुलित होना भी, ये भी एक कारण होता है,
0: हार्मोनल इम्बैलेंस।
1: हार्मोनल इम्बेलेंस होता है। कुछ पर्यावरणीय कारक होते हैं, पर्यावरण यानी जो जैसा माहौल मिलता है बच्चे को। हम सभी जो है किसी न किसी समाज के अंग होते हैं,
0: हिस्सा
1: किसी न
0: होते हैं,
1: किसी
0: बिल्कुल
1: पर्यावरण में रहते हैं, उसमें जैसा माहौल होता है, एक तो जैसे गंदी बस्तियों में देखा गया है कि जो गंदी बस्तियां होती हैं वहां का माहौल स्वतः ही एग्रेसिव होता है। बात बात पर लड़ाई झगड़े करना, छोटी छोटी बातों पर सुबह उठने से लेके शाम तक
0: कुछ
1: बात
0: ना
1: पर
0: कुछ
1: झगड़ा
0: तू-तू में
1: होता रहता है।
0: चलती रहेगी।
1: दूसरा नशेबाजी का, जहाँ नशा की प्रवृत्ति ज्यादा होती है लोगों में, वहां आए दिन झगड़े होते रहते हैं। और जो तनावपूर्ण माहौल होते हैं वहां, आपस में एक दूसरे से पड़ोसी पड़ोसी की नहीं बनती है, तो वहां किसी न किसी बहाने से हर समय वो तनाव बना रहता है, तो जिसमें आक्रामकता होती है। कुछ सामाजिक आक्रामकता भी होती है। सामाजिक आक्रामकता में इस तरह जैसे समाज में रह रहे हैं उनमें किसी दो समुदाय हैं, उन दो समुदायों में
0: आपस में
1: आपसी
0: थोड़ी सी
1: टकराव
0: जी
1: होता है,
0: जी जी
1: तो बात बात पर झगड़े होते हैं। घरेलू हिंसा भी इसी में आती है
0: तो
1: घर
0: ये
1: में।
0: ऐसे कारण हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते
1: जी
0: हैं। और आजकल की दुनिया है जिसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो घुस गई
1: जी
0: है,
1: जी
0: उस वजह से भी बहुत सारे
1: सर आजकल जो सबसे प्रभावशाली और सबसे नया कारण निकल के आया है वो मोबाइल और टेक्नोलॉजी। अब होता क्या है, बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, और ऐसा कोई नहीं, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब मोबाइल
0: सभी
1: प्रयोग कर रहे हैं।
0: ठीक।
1: अब उसमें कंटेंट ऐसे ऐसे आते हैं कि जो सोशल मीडिया पे या तो किसी धर्म के प्रति नफरत फैलाई जाती है, किसी व्यक्ति विशेष या राजनीतिक पार्टियों के
0: आपका
1: प्रति
0: आपके
1: फैलाई जाती
0: अंदर के
1: है,
0: जो भाव हैं उनको उद्वेलित किया
1: उद्वेलित
0: जाता
1: किया। जी
0: है
1: जी
0: और आपकी संवेदनाओं को कहीं ना कहीं इस तरह से मोल्ड किया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है इस
1: जी
0: तरह से कि आप थोड़ा सा एग्रेशन आपके अंदर, जाहिर सी बात
1: जाहिर
0: है
1: सी बात
0: हमारा
1: है वो।
0: शरीर जो है
1: जी जी
0: बायोलॉजिकल है
1: जी
0: और वो जो हार्मोन्स उन चीजों के प्रभाव में हमारे
1: जी
0: शरीर में पैदा होते हैं
1: जी
0: उनका असर जो है वो आक्रामकता के रूप में
1: में
0: हमें
1: आता
0: दिखाई
1: है।
0: देता है।
1: और दूसरा सर, बच्चों में ये देखा गया है कि जैसे मोबाइल यूज करते हैं, नई टेक्निक आई है AI, अब जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में बच्चे के जो मन में आया एक क्लिक पर उसे उपलब्ध है। अगर वास्तविक जीवन में उसे किसी इच्छा को पूरी होने में समय लगता है तो वो तुरंत आक्रामक हो जाता है, तो उसमें धैर्य की कमी हो जाती है, और धैर्य की कमी के कारण वो तुरंत आक्रामकता प्रदर्शित करता है।
0: तो
1: तो ये
0: ये जो
1: साइड इफेक्ट है बच्चों के ऊपर
0: उसके बहुत सारे रीजंस
1: तमाम।
0: हैं, अगर हम थोड़ा सा गहराई में
1: जी
0: जाएंगे तो ये तकनीकी आपने कहा जो एकल परिवार व्यवस्था
1: जी
0: आजकल
1: जी
0: है वो
1: जी
0: भी
1: वो मुख्य
0: एक
1: मुख्य
0: है ना।
1: कारण है। एकल परिवार भी एक है, दोनों गार्जियन जो जॉब पे हैं, बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं।
0: ठीक बात। डॉक्टर साहब कभी कभी कभी कभी क्या कई बार बच्चे अपनी पीड़ा खुल के व्यक्त नहीं कर पाते,
1: जी
0: तो ऐसे कौन से व्यवहारिक संकेत होते हैं जिनसे घर वाले या अभिभावक ये समझ पाएं कि बच्चा किसी मानसिक दबाव या उत्पीड़न का शिकार है?
1: देखिए सर, इसमें सबसे पहला तो बच्चा जो है, जो अपनी इंटरेस्ट की चीजें हैं ना, रुचि वाली चीजें,
0: जी
1: वो करना बंद कर देता है, उनसे दूर रहना शुरू कर देता है, घर में एकांत ढूंढता है, घर वाले लोगों से बातचीत न करना और अपने रूम में चला गया, और जो उसे दुनियादारी चीजों से, मतलब वो अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर देता है,
0: चुप्पी चुप्पी साध
1: चुप्पी
0: लिया।
1: साधना शुरू कर देता है। अगर उससे कोई पूछता है तो वो ये कहता है कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, और फिर अगर कोई ज्यादा प्रेशर देता है तो वो एकदम आक्रामक हो जाता है, चिड़चिड़ा व्यवहार
0: व्यवहार करता
1: प्रदर्शित
0: है।
1: करता है। तो अगर इस तरह का कर रहा है तो बच्चे को जरूर उस पर ध्यान देना चाहिए गार्जियन को, और उसे इसके लिए सबसे पहले वो ये है कि उसे प्यार से, उसको बजाय प्रेशर के, उसे प्यार से उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करके उसको समझना चाहिए, और ये बहुत आवश्यक है बच्चे के साथ इस तरह का, उसे बच्चे को
0: और कभी
1: समझना।
0: कभी डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है कि घर में बच्चा अच्छा कर रहा है, पढ़ाई लिखाई में
1: जी
0: अच्छे मतलब उसका परफॉर्मेंस है और अचानक ही उसमें बहुत
1: बहुत डाउन
0: डाउन
1: डाउन हो
0: चला
1: जाए।
0: जाता
1: जी डाउन
0: है
1: चला,
0: ना।
1: यही है वो, या तो स्कूल में किसी बुलिंग का शिकार हो रहा है,

0: या उसे किसी ने, टीचर ने कुछ ऐसी बात कह दी है जो उसके
1: पिंच कर गई।
0: पिंच करके उसे ठेस पहुंची है, ईगो हर्ट हुआ उसका। तो इस तरह की चीजें बहुत सारे टीचर्स को भी ये पता नहीं होता, बहुत सारे बच्चे को करते तो मोटिवेट करने के लिए हैं, उन्हें ताना मार देते हैं, को वो जो है
1: लेकिन
0: अगर
1: कभी कभी वो बात छुप
0: चुभ
1: जाती है।
0: जाती है, चुभ जाती है तो वो बच्चे गहरा असर डालती है उसके मन पर।
1: तो ये संकेत जो है हमें नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए,
0: नहीं
1: और
0: जी
1: बच्चे
0: जी
1: को जो है
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: उसी तरह से कॉन्फिडेंस में लेके
0: जी
1: और उसका ख्याल रखने की ज़रूरत है।
0: जी
1: डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में इस मोड़ पर अगर मैं कहूँ आपको कि कोई गीत सुनवाएं, तो क्या सुनवाना चाहेंगे श्रोताओं
0: जो
1: को?
0: बच्चों का है तारे जमी पे मूवी का है ये,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: हमारे ये बच्चे हुए हैं स्टार होते हैं, वो जीवन का भविष्य यही है, तो जो तारे जमी पे है गाना उसको अगर सुनवाएं तो बेहतर होगा।
1: तो अब सुनवाते हैं श्रोताओं को आपकी पसंद का ये गीत तारे जमीन पर।

0: डॉक्टर साहब, ये सब चीजें आपने जो बताई, इतने
1: जी
0: सारे कारण बताए, इतने सारे पहलू हैं उसके, कि आप अगर शुरू करेंगे तो बहुत समय लगेगा।
1: जी
0: अब हम इसके निदान खोजते हैं कि
1: जी
0: साहब ये समस्याएं तो हैं, हमारे
1: हाँ
0: इर्द गिर्द बहुत सारे प्रभाव हैं, बहुत सारे
1: जी
0: कारक हैं
1: बिल्कुल, इन्हें
0: जिनकी
1: हटाया
0: वजह
1: नहीं जा
0: से
1: सकता,
0: ये चीजें आएंगी ही आएंगी,
1: आएंगी
0: है ना।
1: आएंगी
0: अब मेन चीज है कि खुद और खास तौर से जो बच्चे हैं,
1: जी
0: मासूम बच्चे, जैसे कि आपने कहा कि बच्चा तो बच्चा होता है,
1: जी
0: लेकिन उसको इन सब कारकों से, इन सब प्रभावों से कैसे बचाया जाए, उसके आसपास वो सुरक्षा का आवरण कैसे तैयार किया जाए, उस पहलू को जो है आप हमारे श्रोताओं के साथ
1: जी
0: साझा करें।
1: देखिए, सबसे पहले तो बच्चे जैसे बिल्कुल मासूम होते हैं, उन्हें दुनियादारी का कोई ज्ञान नहीं होता। जैसे जैसे वो समाज के संपर्क में आते हैं, जैसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, वो सीखते हैं। तो आक्रामकता भी एक सीखा हुआ व्यवहार है, ये जन्मजात नहीं होता है।
0: और सबसे ज्यादा जो
1: जी
0: बच्चे संपर्क में रहते हैं वो माता पिता
1: माता
0: के
1: पिता
0: रहते
1: के
0: हैं,
1: संपर्क में रहते
0: तो
1: हैं।
0: वहां से एग्रेशन अगर उन्हें कम देखने को मिलता है
1: जी
0: तो वो बहुत हद तक वहीं सप्रेस किया जा
1: जी
0: सकता है।
1: सर, इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका ही माता पिता की है। अगर बच्चे को इन एग्रेशन से किस तरह से बचाना है, किस तरह से बच्चे को एग्रेशन हैंडल करना सिखाना है, वो उनकी जिम्मेदारी है। तो गार्जियन को सबसे पहले चाहिए कि बच्चे के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार करें। असुरक्षित माहौल हो उससे बच्चे को दूर रखें। जैसे गली मोहल्ले में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वहां बच्चों को दर्शक न बनने दें, उन्हें तुरंत वहां से दूर घर ले
0: ये
1: जाएं।
0: आम मतलब
1: आम
0: ये
1: बात है ना,
0: धारणा
1: जैसे कहीं
0: होती है
1: झगड़ा
0: कि
1: हो रहा
0: कहीं
1: है,
0: हो रहा
1: कहीं
0: तो
1: उसे
0: हम
1: सुनने
0: खड़े
1: लग
0: हो
1: जाते
0: जाते
1: हैं,
0: हैं।
1: खड़े हो
0: हाँ
1: जाते हैं, देखने लग जाते हैं, तो बच्चों को ऐसी दर्शक न बनने दें, वहां से हटाएं। दूसरा, जो बच्चे सबसे ज्यादा आजकल सीख रहे हैं वो सोशल मीडिया से सीख रहे हैं, यानी जो गैजेट्स यूज करते हैं बच्चे, उसमें जो उनके
0: सोशल
1: गेम्स
0: मीडिया
1: भी,
0: प्लेटफॉर्म्स
1: सोशल मीडिया
0: हैं,
1: प्लेटफॉर्म है, और बच्चे जो गेम्स भी खेलते हैं उसमें भी
0: आजकल
1: वो
0: गेम्स भी ऐसे
1: गेम्स
0: हैं
1: भी
0: बहुत
1: ऐसे
0: एग्रेसिव
1: हैं,
0: जहां पे बस
1: जी जी बस वो मार धाड़
0: मार
1: वाले
0: धाड़
1: हैं,
0: वाली चलती
1: वही
0: है।
1: गोली चल रही है। तो इस तरह के गैजेट्स से दूर रखना है। और जहां तक हो इन चीजों को बचाने के लिए, आजकल मोबाइल में ऐप भी आता है,
0: कंट्रोल लॉक लगा
1: कंट्रोल
0: देते
1: लॉक
0: हैं।
1: होता है ना,
0: हाँ

0: उसका यूज करें।
1: ठीक बात है।
0: तो ये है, कुछ सकारात्मक माहौल से जुड़ें बच्चों को इस तरह की चीजों में, जैसे स्पोर्ट्स वाले क्लब हैं या कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाता है, डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है।
1: म्यूजिक एक बहुत अच्छा एरिया होता है,
0: म्यूजिक, कोई म्यूजिक सीखने के लिए
1: संगीत कुछ सीखना, गाना बजाना
0: जी, इस तरह के चीजों से जुड़े तो निश्चित रूप से उनकी आक्रामकता से बचाया जा सकता है।
1: अच्छा, ये जो आपने घर की बात की थी
0: जी,
1: तो घर के भीतर का जो माहौल है वो बहुत हद तक बच्चे को प्रभावित करता है।
0: बिल्कुल।
1: तो घर का माहौल वो बहुत शांत होना चाहिए, बहुत ही जिसमें ओपननेस होनी चाहिए।
0: गार्जियन को सबसे पहले ये समझना होगा कि बच्चा केवल स्कूल में नहीं सीखता, सबसे ज्यादा वो माता पिता से सीखता है। तो घर का माहौल, जैसे कई जगह देखा जाता है कि पति पत्नी में कम बनती है या बात बात पे वो जो आक्रामक होकर जवाब देते हैं एक दूसरे को, तो बच्चे को बचाने के लिए ये उनको पहले खुद को कंट्रोल करना होगा। और खुद को कंट्रोल के लिए बच्चा है अगर घर में तो उसके सामने बहुत शांति से बात करनी होगी, अगर गुस्सा भी आ रहा है तो उसे कंट्रोल करना सीखना होगा, और घर का माहौल एकदम शांत रखने की जिम्मेदारी उनकी होगी।
1: बच्चे को सिखाते सिखाते आप भी अगर सीख लेते
0: जी जी,
1: तो आपका भी जो पारिवारिक जीवन है वो भी बेहतर,
0: वो मधुर संबंध हो जाएंगे। खुली बातचीत होनी चाहिए, ओपन।
1: ये तो घर का माहौल हो गया, माँ बाप का हो गया, स्कूल का आपने बात किया। एक और जो पीयर प्रेशर का जिक्र यहाँ मैं करना चाहूंगा, वो भी बहुत प्रभाव डालता है।
0: जी बिल्कुल, जब स्कूल के बाद सबसे ज्यादा बच्चा प्रभावित ही अपने साथियों के द्वारा होता है, तो ये पीयर प्रेशर में कई बार ऐसे निर्णय लेता है कि सब साथ वाले बोल रहे हैं कि भाई वहां चलना है, ये काम करना है, और जो अनैतिक काम है वो कर जाते हैं। तो बच्चों को ना कहना सिखाना है सबसे पहले, उन्हें ये बताना है कि गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स स्कूलों में सिखाई जाती हैं आजकल, और उसके अलावा बच्चों को यह समझाना है कि जो अच्छी चीजें हैं केवल उन्हीं के लिए हाँ कहनी है, अगर अच्छी चीज नहीं है तो उनके लिए आप ना कहना सीखिए।
1: बाउंड्री आपको
0: बनानी पड़ेगी। अगर ये चीज नहीं सीखेगा तो बच्चा जो है भटक जाएगा। इस चीजों को सिखाना बहुत जरूरी है, जिससे क्या है बच्चे में आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
1: ठीक बात।
0: और बजाय ग्रुप के साथ में या दोस्तों के साथ जो काम करता है उसके अलावा उसे सेल्फ डिपेंड बनाना चाहिए, उसे अपना काम खुद करने दें।
1: वो भी एक रोल मॉडल किसी के लिए बन पाए, ऐसा प्रयास जो है बच्चे को
0: सबसे पहले माँ बाप को ये इस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए कि जो बच्चा आप ही को अपना मॉडल माने, इस तरह का। और अक्सर बच्चे मानते हैं, माँ बाप को ही अपना मॉडल मान लेते हैं, तो इसलिए कुछ चीजें जो बच्चे को आप सिखाना नहीं चाहते वो बच्चे के सामने कभी न करें।
1: अब आपने जैसे तकनीक की बात की थी, मोबाइल की बात की थी, तो हम में से सब लोग ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा कम मोबाइल यूज करे
0: जी,
1: स्क्रीन टाइम उसका कम हो
0: जी,
1: स्क्रीन से दूर रहे, लेकिन हम जब तक खुद नहीं करेंगे
0: जी,
1: तक वो काम शायद मुश्किल है।
0: मैंने पहले ही बताया कि बच्चा जो है हमेशा देख करके सीखता है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं बच्चे के सामने स्मोकिंग करूं और बच्चा न करे तो ये संभव नहीं है। आप जैसा सिखाना चाहते हैं तो पहले त्याग माता पिता को करना होगा।
1: चलिए, अब बच्चों में आक्रामकता हो या उनका जो एक चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है
0: जी,
1: उसके कारण क्या होते हैं? एक तो ये आपने कुछ चीजें बताई
0: जी,
1: लेकिन और भी कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से उनमें एग्रेशन आता है
0: जी। इसमें सबसे पहले तो बच्चा जो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता
1: आजकल, खास तौर से ये चीजें ज्यादा पेश आ
0: जो अपने मन की बातें हैं ना, जैसे उसे मान लीजिए कोई चीज बहुत खराब लग रही है लेकिन उसे बता नहीं पाएगा कि मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं। बच्चे आजकल क्या है, ये जो टेक्नोलॉजी का युग ऐसा आ गया है कि बच्चे को माता पिता की और जो बड़ों की जो ज्ञान देने वाली बातें हैं ना वो अच्छी नहीं लगती, तो वो मना तो कर नहीं पाता, तो वो या तो सिर पकड़ लेगा या किसी चीज को फेंक मारेगा, है ना, तो इस तरह तोड़फोड़ वाला चीज सीखता है।
1: तो उसके अंदर खीज है
0: जी,
1: और अपनी भावनाओं को व्यक्त न कर पाने की हताशा है
0: जी, जी।
1: वो किसी न किसी रूप में जाहिर करेगा।
0: तो इसलिए अच्छा है उस बच्चे को ये बताएं कि जो आप फील कर रहे हो वो आप हमें फ्रेंकली कहें। अगर आपको हमारी कोई बात खराब लग रही है, अच्छी नहीं लग रही, तो आप कह सकते हैं कि ये बात मुझे बुरी लग रही है।
1: ठीक बात।
0: तो इस तरह से भावनाओं को अगर व्यक्त करना सीख जाएगा तो उसकी आक्रामकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी।
1: आजकल जैसे स्क्रीन टाइम की बात हम कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम ने लोगों की नींद भी खराब की है
0: जी,
1: वो भी एक बड़ी समस्या है।
0: सबसे ज्यादा इफेक्ट जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में जो तनावपूर्ण परिस्थिति जो उत्पन्न कर रहा है वो स्क्रीन का यूज है। तो इसलिए इसको सीमित करना बहुत आवश्यक है। क्या होता है, जो एक इसमें जो नीले रंग की स्क्रीन है ना, वो जो नीला रंग जो सोने से पहले अगर बच्चा मोबाइल

0: के या गैजेट्स देख करके सोता है तो उसे स्ट्रेस वो बना रहता है पूरी रात, तो वो रात में उसको नींद प्रॉपर नहीं आती। जब नींद प्रॉपर नहीं आएगी तो सुबह उठ के वो उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाएगा।
1: ठीक
0: तो
1: बात।
0: इसलिए आवश्यक है कि एक सोने का निश्चित टाइम टेबल निर्धारित करें, पूरी दिनचर्या निर्धारित करें, जिससे कि किस समय जगना है, किस समय सोना है, वो निर्धारित होगा तो निश्चित रूप से
1: ये
0: बच्चा
1: जो
0: जो है
1: चीजें हैं
0: स्ट्रेस से
1: आप
0: दूर रहेगा।
1: दूर रहेंगे,
0: जी
1: आपका स्क्रीन टाइम अगर निर्धारित होगा तो आपको नींद भी बेहतर आएगी।
0: जी
1: आप अगर समय से उठते हैं, अपनी दिनचर्या को फिक्स करके रखते हैं, शारीरिक अगर कुछ गतिविधियां हैं
0: गतिविधियां
1: उनमें भी हिस्सेदारी करते हैं, तो
0: बिल्कुल,
1: आप इन सब
0: सुबह
1: चीजों
0: उठते ही
1: से।
0: उसे व्यायाम की अब जरूर आदत डालें, कुछ न कुछ एक्सरसाइज बच्चे को जरूर सिखाएं। अब इन दिनों में छुट्टियां चल रही हैं तो छुट्टियों में

0: रूट से खाएं। अब इन दिनों में छुट्टियां चल रही हैं, तो छुट्टियों में जो बच्चों को सुबह मॉर्निंग वॉक पे अपने साथ ले जाएं या पार्क में ले जा करके उन्हें कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कराएं और मोबाइल की एक्टिविटी से अधिक दूर रखें।
1: एक और जो मसला आजकल देखने में आता है आमतौर पे स्कूलों में,
0: जी
1: वो साइबर बुलिंग
0: साइबर बुलिंग,
1: है
0: जी
1: ना,
0: जी
1: वो उस पर भी अगर थोड़ा बच्चों को या हमारे श्रोताओं को बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर
0: तो
1: रहेगा।
0: साइबर बुलिंग मतलब ये जो कंटेंट आते हैं ना, ये कहते हैं ना अल्प ज्ञान खतरे की घंटी होती है, लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग, तो वो वाली कंडीशन है। बच्चे को पूरा ज्ञान होता नहीं टेक्नोलॉजी का उस समय, तो उसमें जो चतुर लोग हैं, जो एक तरह से ये कहें कि उनके माफिया, वो बच्चों के गेम से इस तरह के डेवलप कर रहे हैं कि जिसमें बच्चों को, जैसे अभी एक ब्लू वेल गेम शुरू में आया था स्टार्टिंग में,
1: ऐसे
0: तो
1: कई
0: हाँ
1: कई
0: आया
1: गेम्स
0: था, तो
1: हैं।
0: उसके जो फाउंडर जो पकड़ा गया था, तो उसने ये बताया था कि ये जो बच्चे हैं जो गेम खेलते हैं ये समाज के लिए यूजलेस हैं, तो ऐसे बच्चों को जीने का कोई अधिकार ही नहीं है ऐसे लोगों समाज में। तो इस तरह की सोच, यानी वो
1: नेगेटिविटी,
0: नेगेटिविटी उसके अंदर ये थी, तो वो उसका ये सोचना था इस तरह के बच्चों की लत लगाकर जो इसमें फंसता है उसे समाज से हटा दो। तो इस तरह के ये लोग हैं, इनसे बचाना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए प्रॉपर स्कूलों में भी इस चीज की प्रॉपर नॉलेज दी जाए और गार्जियन को भी सबसे पहले इन चीजों का खुद को पता करके और ये सारी चीजें बताई जाए। और रियलिटी आजकल ये हो रहा है कि AI आने से इतना हो गया कि जो रियल में टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है, एक्सपर्ट है, उसको तो पता है कि क्या सही है क्या गलत है।
1: ठीक।
0: और AI के माध्यम से बहुत सारी झूठी बातों को सच साबित करके किसी और का नाम दे करके प्रदर्शित किया जाता है, और उसका जो समाज के अधिकांश लोग प्रभावित होते हैं उससे।
1: अगर कहीं से ऐसा लगता है गार्जियंस को, माँ बाप को, घर वालों को कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो एग्रेसिव है या उसको उसको जो है कुछ समस्या है
0: जी
1: और वो उसका व्यवहार हिंसक है या आक्रामक है या कहीं से वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, तो कब ऐसा समझना चाहिए कि इसको एक काउंसलर की या एक साइकेटिस्ट की ज़रूरत है?
0: जब बच्चा छोटी छोटी चीजों पर आक्रामकता दिखाने लगे, जैसे अगर आपने किसी बच्चे को किसी काम की कही, छोटे से कोई काम बताया बेटा ये लाना, और उस पर वो शुरू शुरू में तो इग्नोर करता है, और अगर आपने दोबारा कही तो वो एग्रेशन दिखाता है, तो उसी समय समझ जाना चाहिए और इसको किसी काउंसलर या साइकेटिस्ट के पास जाने से पहले शुरू में अगर गार्जियन खुद उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करना शुरू कर दें, उसके साथ टाइम स्पेंड करने लग जाएं, तो वो चीजें वहीं कंट्रोल हो सकती हैं। परिस्थिति आजकल ऐसी है कि दोनों माता पिता
1: वर्किंग है,
0: वर्किंग हैं, तो उनमें टाइम नहीं मिल पाता, तो ऐसी कंडीशन है, इस तरह के व्यवहार को ज्यादा इग्नोर न करें, तुरंत जो है किसी काउंसलर के पास संपर्क करें, जिससे कि उसके व्यवहार को वहीं की वहीं सही लाइन पर लाया जा सके।
1: तो श्रोताओं, बच्चों को सुरक्षित बचपन दे पाना ये माता पिता की जिम्मेदारी है, माता पिता की ही नहीं बल्कि कहें तो पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन हम सबको इनके बारे में सोचने की तो ज़रूरत है ही। बच्चे कल का भविष्य हैं, हम सब जानते हैं, और वर्तमान की भी वो सबसे अमूल्य धरोहर हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान होना, उनका आत्मविश्वास बनाए रखना और उनको स्वस्थ सुरक्षित बचपन दे पाना, ये एक संवेदनशील समाज की पहचान है। तो आज इस खास मौके पर हमारे श्रोताओं के साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रेडियो डॉक्टर, उसमें वार्ता का विषय था बच्चों के विरुद्ध आक्रामक व्यवहार और हिंसा, और इसमें वार्ताकार थे डॉक्टर साहब सिंह से अनिल सिंह की बातचीत। और अब समय हो रहा है, 4 बज रहे हैं और मीटर वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का आगरा केंद्र। अब आप सुनेंगे संदेश टू सोल्जर्स हमारे दिल्ली केंद्र से।

नंदन वंदन अभिनंदन आप सभी दोस्तों का संदेश टू सोल्जर्स के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में लाखों दिलों की धड़कन छुपी हुई है क्योंकि प्रत्येक भारतीय इस कार्यक्रम को सुनते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। ये कार्यक्रम वीरों की गाथा, उनके अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा, देशभक्ति का परिचायक है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज की मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया है और अपनी कर्तव्य निष्ठा से हमेशा ही परचम लहराया है। जितने भी ऑपरेशंस में इन्होंने अपना दम खम दिखाया, वहां ये साबित कर दिया कि अपनी दक्षता से, कुशलता से किसी भी परेशानी को, किसी भी जटिल समस्या को उससे निजात पाया जा सकता है, उसे लड़ा जा सकता है और जीत हासिल की जा सकती है। इनके तमाम ऑपरेशंस, इनके बारे में जिनमें इन्होंने हिस्सा लिया, जिनमें इन्होंने अपना साहस दिखाया, जिनमें इन्होंने अपना नेतृत्व किया, खासतौर पर अगर कारगिल युद्ध की बात की जाए, उसका जिक्र हम आज करेंगे यहां इसी शो पर जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स। और इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे इन्हें कई सम्मानों से अलंकृत किया गया। नेल्सन मंडेला नोबेल पीस प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया। इन्हें 21वां राजीव गांधी ग्लोबल एक्सलेंस अवार्ड 2020 इससे भी सम्मानित किया। और ये पहले ऐसे डिफेंस पर्सनल हैं जिन्हें TIIFATFA 2018 मुंबई अवार्ड्स यहां भी सम्मानित किया गया। तो सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। और कहते हैं कर्नल साहब की सेवानिवृत्ति जो है अपने साथ असंख्य

0: यादें, असंख्य बातें, असंख्य किस्से कहानियां लेकर आती हैं। तो आज हम कर्नल शैलेंद्र सिंह से उन सभी किस्सों कहानियों के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह भारतीय सेना ने हमेशा वीरों के जरिए, अपने सैनिकों के जरिए, ऑफिसर्स के जरिए बड़े बड़े जंग लड़े हैं और हमेशा हर मैदान में, हर जंग मैदान में फतेह हासिल की है। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह का। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: जय हिंद, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया है और मैं आज आपके थ्रू सभी को करेक्ट कर दूं, फौजी कभी रिटायर नहीं होता।
0: जी,
1: मेरा फौजी कभी रिटायर हो ही नहीं सकता। आप मान लीजिए मेरी बात अथॉरिटी के तौर पर, मेरे फौजी से जितना ज्यादा काम कराओगे वो उतना ज्यादा खुश होगा। जिस दिन उससे आप काम नहीं कराओगे उस दिन वो रिटायर हो जाता है। मैं ये जरूर मानता हूं और इस बात में मेरा पूरा विश्वास है और मेरे सारे फौजी भाई कि जिस कैपेसिटी में जहां पर भी हैं, आप पाएंगे गांव के लेवल पर, सिटीज के लेवल पर, कस्बों के लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो उनसे हो सकता है वो कंट्रीब्यूट जरूर कर रहे हैं और मैं यही कह सकता हूं, आई एम सो प्राउड ऑफ देम, मेरे से ज्यादा वो कर रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पे कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, और आपको देखकर इस वक्त ये प्रतीत भी हो रहा है कि वो जो डिसिप्लिन आप अपने कार्यकाल में सीखते हैं वो डिसिप्लिन निरंतर ही आपके साथ चलता है और जो सेवाएं हैं वो आप में कहीं ना कहीं समाहित हो जाती हैं और आप उन्हें उम्र भर जीते हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि कहाँ से ये कारवां शुरू हुआ, सबसे पहले कि जीवन का वो कौन सा मोड़ था, कौन सा पल था जहाँ आपने ये निर्णय लिया कि आपको भारतीय सेना ही ज्वाइन करना है।
1: अब ये तो बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि मुझे याद है कि लाइक हर स्कूल में ये किस्सा है कि एक लड़की थी जिसके ऊपर हमारा भी क्रश था और उस लड़की को फौजी पसंद थे। उस समय तो हमें रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन मेरे फादर फौजी थे, कैंटोनमेंट्स में हम रहे थे, एक अलग तरीके की लाइफ देखी थी। हालांकि हमें वो लाइफ कंफर्टेबल लगती थी क्योंकि हमें जब तक समझ आई कि फौज में हमारे फादर क्या कर रहे हैं तो उनका ओहदा जो था वो थोड़ा बढ़ गया था, तो इसलिए हमें तो सारा कंफर्टेबल लगा। हमने ये तो नहीं देखा कि 4 बजे कब उठे होंगे, जो यंगर डेज होते हैं। सो मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो ये जो दो अट्रैक्शन हैं जो मुझे SSB में भी पूछा गया था कि फौज आप क्यों ज्वाइन कर रहे हो
0: जी।
1: तो मेरा पहला आंसर था कि ऐसा समझा जाता है कि फौजियों को सुंदर बीबियां मिलती हैं।
0: अब निश्चित ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो स्पाउस हैं, जो बेटर हाफ हैं, वो बहुत ही खूबसूरत हैं और आपकी मुस्कुराहट से इस बात को महसूस कर सकती हूँ मैं।
1: मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, मेरी नजरों से देखोगे तो उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है। और जब भी किसी आर्मी ऑफिसर की बात की जाती है, जब आपसे बात की जाती है, तो वो यही कहते हैं कि हमारे घर को जिसने संजो कर रखा है, जिस खूबसूरती से संजो कर रखा है, हमारे पीछे भी जब हम मिशंस पे जाते हैं, वार्ड्स पे जाते हैं, ऑपरेशन पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज दुकान वही एक है जिसकी वजह से घर चहकता है।
1: नहीं देखिए, ये जो आपने बोला है ना कि जब हम बाहर जाते हैं, मैं अपने बेटे से जब पहली बार मिला तो जब मैंने बेल बजाई और वो जो जाली वाला था उसमें से मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा रुड़कता पुड़कता आ गया और उसने फिर मुड़ा और अपने मम्मी की तरफ आवाज निकाल के कहता है, मम्मा कोई अंकल आए हैं। आप सोचिए कि वो दैट लेडी जो इतने टाइम तक अपने बच्चे को, अपने घर को संभालती रही। मैं आपको ये निश्चित तौर पर बता सकता हूं ये बहुत डिफिकल्ट है। इट इज लिटिल मोर देन बहुत डिफिकल्ट, इतना ज्यादा मुश्किल का मामला है। ये एक अलग बात है कि आपको आदत पड़ जाती है, आपको लग्जरीज नहीं है, बिजली नहीं आ रही है, आपके पास जो सुविधाएं जो हैं वो नहीं मिल पाती हैं, बट उसके बावजूद आप छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हो कि मेरा हस्बैंड कल आ रहा है, देयर इज अ सेलिब्रेशन। अगर दिवाली पर नहीं आया तो जिस दिन आया उस दिन दिवाली जरूर हो जाती है।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है। जितनी भी आर्मी वाइफ, आर्मी मेन की वाइफ इस वक्त हमें सुन रही है ना, इट इज अ ब्यूटिफुल कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम यू टू देम। कितनी प्यारी बात इन्होंने यहाँ पे की है कि वैसे भी जिस घर में महिलाएं हैं, जिस घर को महिलाएं सजा रही हैं, और खासतौर पर जब घर के पुरुष देश सेवा में नहीं थे, देश सेवा में तत्पर हैं और घर से दूर है, ना जाने कितने समय तक घर नहीं पहुंच पाते हैं, वो कंप्लेन नहीं करती।

0: घर वैसे का वैसा ही चलता है जैसा कि आपने बताया कि जब घर पहुंचा तो बेटे ने जिस तरह से आपको देखा, तो इसके भी बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन एक पहलू आपके जीवन, आपके बचपन से जुड़ा हुआ। आप क्योंकि एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जो आपके पापा, आपके फादर खुद एक सर्विसमैन है, तो आर्मी मैन है, तो आप के लिए ये आपने बहुत देखा होगा कि इस शहर, उस शहर, उस राज्य बहुत ज्यादा ऐसे इधर से उधर ट्रैवल करते होंगे, तो ऐसे में बहुत सारे दोस्त भी बनते होंगे, बहुत सारे स्कूल्स भी चेंज होते होंगे, उसकी कुछ यादें बातें साथ हैं।
1: मुझे लगता है कि फौजीज के बीच में ना एक बड़ा फेमस है बात कि फौजियों की दोस्ती रेलवे स्टेशन तक ही होती है।
0: अच्छा।
1: हर रेलवे स्टेशन पर कुछ फौजी दोस्त पीछे छूट जाते हैं, जब आप अगले रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो कुछ नए फौजी आपके दोस्त बन जाते हैं। बढ़िया बात यह है कि पिछले वाले चलते रहते हैं, अगले वाले जुड़ते चले जाते हैं, इसलिए अगर आप किसी के साथ एक बार सर्व कर लें और अगर कल वो आर्मी चीफ भी बन जाता है और जब आपसे मिलता है और आपको सिर्फ ये बोलना होता है कि सर मैं वहां था, अरे तू वहां था, मतलब वो जो आप अगर एक आर्मी चीफ को भी देखेंगे उसके एग्जैक्ट वर्ड कुछ ऐसे ही होते हैं कि अरे तुम भी वहां थे, तुम कहां थे, दैट अमाउंट्स टू के पीछे का दोस्ती आगे बढ़ रही है और आगे की दोस्ती जुड़ती चली जा रही है। इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कि फौज के लिए एक अचीवमेंट हो सकती है कि वी आर एग्जेम्पलरी इन दिस, कि जो भी है सबसे बड़ी बात यह है हम हमेशा दोस्त हैं।
0: वाह क्या बात है, हमेशा दोस्त हैं। तो केवी स्कूल से आप पढ़े हैं और केवी स्कूल की जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ अलग ही तरीके का एटमॉस्फेयर, चाहे वहाँ की बिल्डिंग हो, वहाँ के बच्चे हों, वहाँ की टीचर्स हों, तो असंख्य यादें आपके साथ होंगी और वो दोस्त आज तक आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, ये तो इस बात को मैं सुनिश्चित कर चुकी हूँ यहाँ पर। ये बताएं मुझे कि क्या आपने ये सोच लिया था स्कूल खत्म होते होते कि जाना है तो आर्म्ड फोर्सेज ही जाना है, ऐसा कुछ था मन में?
1: नहीं, मुझे लगता है मेरे स्कूल में मेरे लिए सबसे खराब बात एक ही थी कि मेरे टीचर्स सोचते थे कि कैंटोनमेंट का स्कूल है, फौजी का बच्चा है, इसको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। दिस इज नॉट डन एज फार एज, जहां तक मेरे लिए बात है, भाई आप, मैं, मेरे फादर फौजी हैं, आप चाहते हो मैं भी डिसिप्लिन ही हूं, बिल्कुल सीधा हूं, जहां खड़ा कर दिया वहीं खड़ा हो जाऊं, जहां आपने लाइन में खड़ा कर दिया वहां पर खड़ा हो जाऊं, शोर नहीं करूं। अब वेल मैं इसमें काफी हद तक, अगर आज भी मेरे स्कूल वाले केंद्रीय विद्यालय चंडी मंदिर वाले बच्चे अगर सुन रहे होंगे तो उनके पास एक ही जवाब होगा कि सर आपसे ज्यादा बदमाश कोई नहीं था।
0: वाह क्या बात है, यही मैं आपसे जानना चाहती थी कि किस तरह के बच्चे थे आप, क्योंकि कहते हैं जो बच्चे बहुत शैतानी करते हैं ना, बच्चे शैतानी करते हैं, लेकिन वो बच्चे जो अलग से शैतानी करते हैं जिसकी वजह से वो रिकग्नाइज हो जाते हैं, जाने जाते हैं, याद किए जाते हैं, वो बच्चे लाइफ में आगे चल के बहुत एक्सेल करते हैं।
1: मेरे ख्याल हमारा स्कूल बड़ा इंटेलिजेंट था, हमारे प्रिंसिपल टीचर्स जो थे ना दे वर वेरी गुड, बहुत ज्यादा बढ़िया लोग थे। पता है क्यों? जो सबसे शैतान बच्चा होता था उसे स्कूल कैप्टन बना दिया जाता था।
0: अच्छा।
1: और मैं 2 साल तक स्कूल कैप्टन ही बना रहा।
0: वाह क्या बात है, क्या
1: मतलब आज भी मेरे स्कूल ग्रुप में लोग यही बोलते हैं कि सर हम तो आपको सिर्फ स्कूल कैप्टन के तौर पर जानते हैं, क्योंकि अब स्कूल में जैसे ही आप स्कूल कैप्टन बने तो शैतानियां कम हो गई।
0: क्या बात है, शैतानियां कम हो गई। मैं ऐसा करती हूँ कि आपके सभी जितने भी दोस्त हैं ना जो इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, उनके लिए एक बहुत प्यारा सा नगमा यहाँ पर प्ले करती हूँ।
1: बिल्कुल।
0: और कहते हैं कि खुशी जो है दोस्तों से बढ़ती है और दोस्तों की वजह से परवान चढ़ता है, हम किसी भी उम्र में क्यों ना हो जब भी वो दोस्त मिलते हैं तो खुशी में हमेशा इजाफा ही होता है।

0: वैसे आज स्टूडियो की खिड़की में से भी ना खुशियां ताक झांक रही हैं, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जिनकी किसी कहानियां जब आप सुनेंगे तो आप उनकी वीरता के गाथा जग जग तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सी बातें हैं जो उनसे जाननी है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना खुश मिजाज है, जिस तरह से हमारे पास संदेश भी आ रहे हैं कर्नल साहब, मैसेज यही आ रहे हैं कि आपकी खुश मिजाजी सुनकर ना सब लोग बड़े प्रफुल्लित हैं, उनको बड़ा मजा आ रहा है आपको सुनने में। तो निश्चित रूप से और भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन वो पल जिस वक्त आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन की, उससे पहले बहुत सारे सवाल जवाब जरूर हुए होंगे। घर पर किस तरीके का माहौल था? बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था क्या? घर से आपको ये हमेशा हिदायत दी जाती थी ज्वाइन करना है तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है? किस तरह से आप अपने गंतव्य तक पहुंचे, ये कहानी जरूर सुनाए।
1: मुझे लगता है कि फौजी अफसर के बेटे होने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि घर में हिटलर रूल चल रहा होता है।
0: अच्छा,
1: हमारे लिए उनको हम उस समय हिटलर रूल बोलते थे कि ड्राइंग रूम में आप आ नहीं सकते, सोफे के ऊपर आप चढ़ नहीं सकते, चारपाई में कूद नहीं सकते, अगर डाइनिंग टेबल पर बैठना

0: तो आपको एक पर्टिकुलर स्टाइल में ही बैठना है। आप जब तक खाना स्टार्ट नहीं कर सकते जब सब ना आ जाएं। खाना क्लोज करना है तो जब ही करना है जब कोई सारे क्लोज कर रहे हों। तो मुझे लगता है कि वो डिसिप्लिन वाला जो पार्ट है, एटलीस्ट मुझे लगता था इस सबसे हटके खाना चाहिए कि उस रोटी के अंदर हम आलू की सब्जी भरें, उसको गोल गोल घुमाएं और उसको पोंगा बनाकर खाते हुए घूमते जाएं। बट ये अलाउड नहीं था। सो ये मैं जरूर मानूंगा। बट एट द सेम टाइम ज्यादातर घरों में क्योंकि यही था, तो जब हम बाहर भी जाते थे तो कोई लड़का या लड़की जो कि हमारे केंद्रीय विद्यालय के होते थे, अगर इस तरह की कोई हरकत करी तो वो बाकी टोक देते थे, क्योंकि मे बी देवर मोर डिसिप्लिन। बट पर्सनली अगर मुझे लगता है, अगर मैं अपना याद करूं, तो मुझे लगा कि मैंने कोई गलत काम नहीं करे, बट मुझे डिसिप्लिन अपने आप में बहुत ज्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि मैं डिसिप्लिन को रुकावट के तौर पर देखता था। एंड आई वॉन्टेड टू फ्लाई फ्री, कि उल्टे सीधे सारे काम क्यों ना करूं। ये एक अच्छी बात हुई कि डिसिप्लिन इतना स्ट्रिक्ट था कि मैं कोई उल्टा काम कर ही नहीं पाया, जो मुझे लगता है आज भी, कि दारू पीने की बात कर लो या सिगरेट की बात कर लो, तो वो इतना बड़ा टैबू था कि नहीं। और उसमें मेरे फादर का कॉन्ट्रीब्यूशन है कि यस, वो खुद भी नहीं पीते थे, तो वो भी एक बड़ा वो था। वो खुद भी जिम्मेदारी से चलते थे, वो वॉक करते थे, वो पीटी करते थे, तो देख के अच्छा तो लगता था। हम उसी से स्पोर्ट्स में आ गए। और जहां तक बात आती है फौज ज्वाइन करने की, तो वेल कैंटोनमेंट्स में, स्कूल्स में ये एक माहौल बनता है कि आप 12वीं के करीब एनडीए का एग्जाम जरूर देंगे, अगर आप कॉलेज वाले हैं तो सीडीएस का एग्जाम जरूर देंगे। अब मेरे जैसे जो चाहे नहीं भी चाहते थे, क्योंकि 6-7 दे रहे हैं तो उसको दिखाने के लिए ईगो हैसल के चलो मैं भी दे लेता हूं, तो हम 7 बच्चों ने एनडीए का एग्जाम दिया और मानिए मेरी बात, 7 का क्लियर हो गया, 7 क्लियर हो गए। लेकिन एक 8वां बच्चा था, वो ज्यादा इंटेलिजेंट था, उसने नहीं दिया था। उसने कह दिया कि आईआईटी होता है जो भी एग्जाम असली, ये तो सब बेकार है। 7 के 7 एसएसबी एग्जाम देने नहीं गए।
1: अच्छा।
0: सो 8 के 8 ने आईआईटी के एग्जाम पर जोर लगाया और 8 के 8 में से सिर्फ वो एक आईआईटी निकल गया, हम 7 रुक के रह गए। मतलब आप सोचिए कि दूसरे के ऊपर जाने। और फाइनली ग्रेजुएशन के बाद उन्हीं 7 में से हम 4 वापस आर्मी के अंदर आ गए।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं कि कुछ नियतियां तय किया होता है और कुछ आपकी इंस्टिंक्ट्स ने, यानी कि जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ है, आप उस रास्ते पर जरूर चलते हैं। तो एनडीए के थ्रू तो एंट्री नहीं हुई आर्म फोर्सेस में, फिर कौन सा रास्ता था जिसकी वजह से आप पहुंचे?
0: वो हम ग्रेजुएशन, आई वॉज डूइंग ग्रेजुएशन, वो अपना शिमला में था, मैं हिमाचल यूनिवर्सिटी से, वहां पर माहौल में हमारे पास चार हम इकट्ठे थे। एक होता था एनसीसी वाला, तो वो बहुत ज्यादा तेज था। एक और होते थे, वो होते थे अपना एक बॉर्डर रोड्स के, और एक और लड़का था। तो हम 4 थे। तो सडनली वो जो एनसीसी का था, आज भी मुझे याद है, सतीश सूद उसका नाम था, वो अंडर ऑफिसर होता था, तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा फ्रेंड सिर्फ इसलिए था, नॉट बिकॉज ऑफ एनसीसी, क्योंकि मैंने एनसीसी नहीं ली थी, क्योंकि एनसीसी की सैटरडे को जब परेड हो जाती है तो चाय और समोसे मिलते हैं।
1: अच्छा।
0: तो हमारा अट्रैक्शन होता था कि चाय और समोसे मिलने चाहिए, तो वहां हमारा इंट्रैक्शन उससे बढ़ा। और देखा कि फाइनली वो एग्जाम दे रहा है, जब वो एग्जाम दे रहा था, हमने कहा चलो भाई हम भी एग्जाम देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा था कि अब ग्रेजुएशन के बाद क्या, कितना और। सो मुझे लगा कि इस एग्जाम को दे देने में कोई बुराई नहीं है, एंड स्पेशली बिकॉज मेरे फादर तब तक इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे थे और मैं अकेला रह रहा था, तो मैंने ये एग्जाम दे दिया। और एग्जाम देने के बाद मैंने अपना जो ग्रेजुएशन का फाइनल डे का एग्जाम दिया, उस दिन शाम को मैंने कॉरपोरेट हाउस में जस्ट लाइक दैट स्पेकुलेटिवली इंटरव्यू दे दिया, और उस इंटरव्यू में मेरे को उन्होंने थ्रू कर दिया।
1: अच्छा।
0: और उन्होंने बोला कल से आप ज्वाइन कर लीजिए। सो मतलब मेरा अभी ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मेरी जॉब लग गई। और उस जॉब के साथ ही साथ एक और खुशखबरी आई कि आपका सीडीएस एग्जाम क्लियर हो गया है। तो वहां से कॉल अप लेटर आ गया एसएसबी का। तो हमने उस जॉब के अंदर 3 दिन की छुट्टी लेकर गए कि भाई जाकर देख कर आते हैं बेंगलोर में।

0: क्या हो रहा है, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वहां गए, वहां पर देखा कि वो पहले दिन, अदरवाइज काफी को पहले दिन वापस कर दिया जाता है, तो पहले दिन हमारा पता नहीं क्यों सिलेक्शन हो गया।
1: अच्छा
0: अच्छा अगले तीन दिन उन्होंने और कराया, ग्रुप टास्क, ये टास्क, वो स्टाफ,
1: तो
0: हाँ जीटीओज वाला जो काम था वो भी आ गया, तो वहां फिर लाइनअप लगी। तो वहां पर तीन लड़कों को बोला गया कि तुम आगे और बाकी पीछे, और पीछे वालों को बोला गया पीछे मुड़, तेज चल, आप बाहर जाइए, आगे तीन वाले। तो वहां पर एक बड़ी अच्छी सी ड्रिल होती है कि बच्चा लोग गाड़ी में चढ़ो जो रिजेक्ट हो गए, साहब लोग आप आगे आओ।
1: अच्छा,
0: तो हम उस दिन साहब बन गए सडनली। सो आई हैड टू एक्सटेंड माई लीव के भाई चलिए अभी तीन दिन और मेडिकल होना है, तो इसने मेडिकल होता रहा। अब वो पता नहीं क्या किस्मत, यही बोलते हैं कि हर चीज पहली बार में होती चली गई। और उसके लिए आज मैं जरूर ये मानता हूं कि आई वाज डेस्टाइंड फॉर दिस, मेरी किस्मत जो थी भगवान ने फौज के लिए ही लिखी थी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने फौज के साथ शादी करी, काश मैं अपनी बीबी के साथ निभा पाता।
1: क्या बात है। अच्छा कनक साहब, एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगी, अगर मैं आपके अतीत के पन्नों को पलटूं, आपके बचपन जिसे आपने अंदर बताया कि आपको लगता था यू आर फुल ऑफ लाइफ एंड यू वर फुल ऑफ लाइफ, बचपन को जीना चाहते थे, खूब दुनिया को देखना चाहते थे, अपनी तरह से चीजों को करना चाहते थे, आपने कहा कि शैतानियां भरपूर करते थे, शैतानियों से ऊपर शैतानी करती, जिसकी वजह से आप स्कूल कैप्टन बन गए दो बार, क्या वो शैतानी फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद बरकरार रही या एक अलग सा ड्रिफ्ट आ गया आपकी जिंदगी में, सोचने समझने की क्षमता या सोचने समझने का नजरिया पूरा बदल गया सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद?
0: नहीं, बट मुझे लगा कि मैंने फौज में बढ़ चढ़ के शैतानी करी।
1: अच्छा,
0: बढ़ चढ़ के
1: क्या?
0: जो बारिश में मैं अपने एज अ सन ऑफ आर्मी ऑफिसर नहीं कर पाया कि मैं शर्ट खोलकर निक्कर पहनकर बारिश में भीगूं और इंजॉय करूं, जो मैं वहां नहीं कर पाया वो मैंने फौज में किया।
1: वाह।
0: अपने जवानों के साथ कि भाई चलो आज बारिश तगड़ी आ रही है, सब अपनी अपनी शर्ट उतारेंगे। अदरवाइज मेरे फादर तो कभी शर्ट उतारने नहीं देते कि पब्लिकली आप कैसे उतार सकते हो। हम तो जब बास्केटबॉल खेलते थे, तो अभी भी फौजी याद करते होंगे, मैं तो अभी भी याद कर सकता हूं, एक होती थी बनियान वाली टीम और एक होती थी नंगा टीम। नंगा टीम का मतलब आपकी बनियान नहीं होगी।
1: अच्छा।
0: और जो दूसरी टीम है उसके बाद बनियान होगी। पता नहीं क्यों मैं हमेशा नंगा टीम का पार्ट होता था, यार बनियान उतारने को मिल रहा है। सो मैंने अपनी तरफ से भरपूर शैतानी करी। मैंने अगर ऑपरेशनल शैतानी भी बोलो तो उसमें भी मैंने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, कि जहां लोगों का कहना था कि आपको गोली चलाने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर की परमिशन चाहिए, हमें कभी किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। अगर इनके कैनवस को देखूं ना मैं, तो मैं कहूंगी हिज कैनवस इज लार्जर देन लाइफ। व्हाई? क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के नाम किया है, और वो हिस्सा ना आज भी देश की ही बात करता है। लेकिन लेकिन कहते हैं कि जिंदा दिली व्यक्ति को हमेशा हमेशा अपने लिए और दूसरों के लिए भी जीने के लिए प्रेरित करती है, और इसकी जिंदा दिली की वजह से हमारा आज का ये शो, आज का ये कार्यक्रम किसी और दिशा में है। और मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस दिशा में ना गोते मार रही हूं। अब कर्नल सिंह, आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। भले ही आपने अपनी जिंदगी, आपकी सोच, आपका परसेप्शन जीवन जीने का मौज मस्ती के साथ रहा हो, पर मैं ये बात जरूर कह सकती हूं कि आपसे लोग डरते भी बहुत होंगे। जब डिसिप्लिन की बात आती होगी, जब फौज में रहे, जब कमांड किया, जब नेतृत्व किया, जब फैसले लिए, तो माहौल उस वक्त कुछ और रहा होगा, निश्चित है।
1: नहीं, देखिए, सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसीजन तो लेने पड़ते हैं, मैं मान लूंगा इस बात को। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने हर वो डिसीजन जो लिया उसमें मैं खुद इन्वॉल्व था। अगर मैंने अपने बैटरी को या अपनी कंपनी को बोला कि हम इस दिशा में जाएंगे, और मालूम है कि वो दिशा गलत है, तो मैं उसमें सबसे आगे चल रहा था कि यस, हम गलत जा रहे हैं, हमें मालूम है कि यहां रिस्क है और हम रिस्क लेने जा रहे हैं, लेकिन मैं उसमें आगे हूं तुम्हारे साथ। इसलिए मेरे को कभी नहीं नजर आया कि कहीं किसी ने आंख भी झपकी हो कि अगर मैंने कह दिया कि इधर, तो सिर्फ इधर ही होगा, उधर का मामला हो नहीं सकता। क्योंकि मेरी रेजिमेंट आज भी मुझे कई बार सो कॉल्ड ब्लेम कर लेती है कि जिसने इधर का उधर देखा उसका बैंड बाजा बारात उधर ही बज गया। मतलब हमारे टाइम में हमारे को ये कष्ट नहीं होता था कि हमने किसके थप्पड़ मारा या नहीं मारा, किसकी कुटाई हुई या नहीं हुई। बड़ी सीधी बात है कि जो तू कर रहा है वो मैं कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो तू करेगा। सो दैट इज द वे जो लाइफ है। और मुझे लगता है कि रेजिमेंट्स के अंदर जो लाइफ होती है वो बड़ी अलग लाइफ होती है। आप में और आपके जवान में फर्क नहीं है, फर्क है तो सिर्फ कंधे का है। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब हम गेम खेलते हैं तो हम कंधे पर स्टार लगाकर नहीं खेलते हैं। उसमें अगर मेरे जवान बिना बनियान का नंगा टीम का पार्ट है, तो मैं भी उतना ही नंगा टीम का पार्ट हूं कि मैंने भी सिर्फ अपना शॉर्ट्स पहने हैं, निक्कर पहनी है, जूते पहने हैं, इसके अलावा मैं बिल्कुल उसके साथ हूं। जिसको बोलते हैं ना, कंधे से कंधा नहीं, छाती से छाती टकराती है। और वहां हम पाते हैं कि हमारा जवान कभी नहीं ये सोचता कि मेरा अफसर कहीं डिसिप्लिन में स्ट्रिक्ट है या नहीं। यूनिफॉर्म पहनी है, यूनिफॉर्म सही पहननी पड़ेगी। सलूट मारना है, सलूट सही मारना ही पड़ेगा। इसके लिए कहीं कोई दो राय नहीं है, उसमें आपकी टुकाई नहीं होगी, मेरे तरीके से ठुकाई होगी। बड़ा सीधा सीधा तरीका है काम करने का। मुझे लगता है कि आज भी मेरी रेजिमेंट जब जिस तरीके से मुझे याद करती है, मुझे आज तक उसमें यह नजर नहीं आया कि किसी ने यह कहा हो कि सर आपने मुझे गलत मारा। आज भी लोग कहते हैं सर आप आरपी गेट में घुसते थे तो हम इधर उधर हो जाते थे कि भाई साहब बवंडर आ गया, पता नहीं आज किसको लपेटेगा। सो दैट इज अ सिकनेस। सिकनेस को अगर सिकनेस की तरह देखना है तो यस, इट वॉज सिकनेस। बट मुझे लगता है मेरी रेजिमेंट की इज्जत, मेरे रेजिमेंट की डिसिप्लिन किसी हालत में कंप्रोमाइज नहीं हो सकती। मैं इनडिसिप्लिन हो सकता हूं, मेरा जवान हो सकता है, बट रेजिमेंट के नाम पर गलत चीज होने नहीं दूंगा।
0: जी बिल्कुल। अब बात करते हैं उस दौर की, जिस दौर में आप सीडीएस आपने क्लियर किया। सीडीएस क्लियर करने के बाद घर पर बताया, पिताजी की क्या प्रतिक्रिया थी?
1: नहीं, पिताजी एक्चुअली बहुत ज्यादा कीन नहीं थे, क्योंकि देखिए ये जब 85, 86, 87 ये जो वो वाला दौर है जहां आर्मी में तनख्वाह बहुत कम थी, तब तक मेरा कॉर्पोरेट हाउस में ऑलरेडी जॉब लग गया। 2800 रुपए मेरे को

0: पहली तनख्वाह वहां मिली और फौज में वापस अगर मैं ज्वाइन कर रहा था तो जीरो थी। ये तो हमारी अगेन किस्मत है कि हमें 1500 रुपए महीना वहां पर भी अलाउड हो गए, लेकिन एकेडमी के रूल्स अपने होते हैं, वो 1500 आपको कभी मिले नहीं, बोला आपके जमा होते रहेंगे।
1: अच्छा।
0: आप नहीं तो खर्च कर दोगे, मतलब खाने पीने में दाएं बाएं कर दोगे। सो माई फादर वॉज वेरी क्लियर कि भाई एक काम करो बेटा, देखो देख लो, अच्छा खासा तुम्हारे पास 2500 का जॉब है, अब आप जीरो पर आ जाओगे। और उस समय एक लेफ्टिनेंट की, सेकेंड लेफ्टिनेंट की जो पे थी वो भी 2300 रुपए थी, मतलब 2800 से भी कम। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने मुझे अलाउ किया। हालांकि मैं अब अगर बाद में देखता हूं ना, सबसे बड़ी खुशी अगर कहीं किसी को हुई थी तो मुझे लगता है मेरे फादर को ही।
1: अपने बेटे को अपने पद चिन्हों पर चलता देख किसी भी पिता के लिए गर्व की बात हो सकती है, और आप उसका उदाहरण भी हैं। तो 1987 में आप ओटी गए, ओटीए चेन्नई, जहां से आपने अपनी ट्रेनिंग प्राप्त की। उसके बाद फिर 1988 में कमीशन हुए,
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: पहला डिप्लॉयमेंट कहां डिप्लॉय किए गए?
0: ये मेरी बदकिस्मती है कि पोस्टिंग आई जोरिया, दैट इज जम्मू, लेकिन उसकी एडवांस पार्टी जा रही थी मेरठ।
1: अच्छा।
0: सो हमें बोला गया एकदम से जाओ, और वो इसलिए जाओ क्योंकि वो गेम्स जो है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, तो इस वजह से हमें मेरठ आना पड़ा। लेकिन यहीं पर बोलते हैं कि किस्मत का टर्न देखिए, वर्स्ट राइट्स ऑफ इंडिया टुक प्लेस वो समय 1988 वाले वो मेरठ में हुए थे, और आज मैं कह सकता हूं तब से लेकर अब तक कभी कोई रॉइट नहीं हुआ मेरठ में। तो ये किस्मत वाली बात है कि मैं उसका पार्ट था, और वहीं से पंजाब की ऑप रक्षक वाला जो डिप्लॉयमेंट था वो हमारी यूनिट को मिला। तो मेरे को आज भी याद है, हम धालीवाल में थे, हम डेरा बाबा नानक वाला जो इलाका है वहां थे, जहां पर के ट्रेन जब जाती थी तो वो डेरा बाबा नानक के रेलवे स्टेशन पर नहीं जाती थी, वो उससे 2 किलोमीटर पहले ही रुक के वापस आ जाती थी, क्योंकि उसमें कोई होता ही नहीं था। तो एक बार तो मैं अकेला था, अकेला ट्रेवलर इन द ट्रेन, और सबसे बड़ी वो देखिए कि काउंटर इंसर्जेंसी का टाइम चल रहा है और मैं अपनी कार्बाइन लेके चल रहा हूं। तो जैसे ही मैंने देखा कि मैं कोई दूर दूर तक नहीं है, तो मैंने फटाफट अपना सूटकेस खोला, कार्बाइन उसके अंदर रखी और उसे बंद किया। मैंने कहा अगर यहां तो दिख गया किसी को तो शायद वो कार्बाइन के लिए आएगा। लेकिन जब मेरे को थोड़ी देर में रियलाइज हुआ कि भाई अगर मैंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है तो व्हाई नॉट कार्बाइन, सो आई टुक इट आउट, आई डिस्प्लेड। मैं 2-2.5 किलोमीटर पैदल गया, लोगों ने दाएं बाएं देखा लेकिन कहीं किसी ने उंगली नहीं उठाई, नजर नहीं उठाई कि भाई एक फौजी जा रहा है अपना सूटकेस पकड़कर। सो लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट। हमें सेकेंड लेफ्टिनेंट के तौर पर मौका मिला कि हम काउंटर इंसर्जेंसी पंजाब में पार्टिसिपेट करें।
1: क्या बात है, बहुत गर्व महसूस हुआ करता होगा ना उस वक्त, जब जैसे ऐसे ऑपरेशंस मिलते होंगे और जिन जिन ऑपरेशंस का आप हिस्सा बनते गए, तो जैसे आप खुद एक डेस्टिनी लावर हैं कि किस तरह के से आपकी किस्मत आपको आर्म्ड फोर्सेस ले आई, उसी तरह से जैसे जैसे आपको ऑपरेशन मिले होंगे और जिस जिस ऑपरेशन पर आपने हिस्सा लिया, गौरवान्वित महसूस करते होंगे बहुत ज्यादा।
0: गौरवान्वित तो बहुत अंडरस्टेटमेंट हो जाएगी।
1: अच्छा।
0: मुझे तो लगता था आर्मी चीफ जो है वो टाइम पास कर रहा है, मैं ही कर रहा हूं जो काम कर रहा हूं। मेरे लिए तो उससे बड़ी चीज, मेरे लिए कोई कमांडिंग ऑफिसर, जीओसी कुछ नहीं, मुझे लगता था मैं ही हूं, मैं मतलब मैं और मेरी कंपनी।

0: श्रीनगर,
1: जी
0: क्योंकि उसका रिवॉर्ड ये था कि मैं जेएनके के सो कॉल्ड काउंटर इंसर्जेंसी में था और मेरी वहां शादी हो गई. सो इससे बड़ा रिवॉर्ड क्या हो सकता है? अगर कहीं किसी और दिल्ली विल्ली में होता तो पता नहीं कोई शादी करता या नहीं, बट हवाई श्रीनगर में शादी हो गई.
1: वाह क्या बात है। तो आपने उन्हें चुना या उन्होंने आपको चुना या किसी और ने आप दोनों को मिलवाया और आपको प्रणय सूत्र में बांधा?
0: नहीं, ये ना एक्चुअली हमारे फौज में तो जो सीनियर फौजी होते हैं ना वो बड़े तगड़े होते हैं. तो मेरी वाइफ के जो चाचा जी थे वो फौज में थे और वो वहीं पर श्रीनगर में थे. उन्होंने मेरे ऊपर पूरा अच्छा खासा होमवर्क रिसर्च करके और ठा करके सामने रख दी लड़की. अब वही वाली बात है कि फौजियों की एक कमजोरी ये जरूर होती है कि सुंदर चीज को सुंदर मानने में बुराई कोई नहीं है,
1: वाह
0: ऐसा मुझे लगता है. एंड वी गॉट मैरिड,
1: क्या बात है,
0: श्रीनगर, काउंटर इंसर्जेंसी एंड शादी.
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। मतलब यहाँ से तो पूरी काया पलट हो गई। और जो सुंदर काया जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने आपके जीवन की काया को बहुत सुंदर बनाया हुआ है आज तक, वो

0: आप दोनों को मिलवाया और आपको प्रणय सूत्र में बांधा?
1: नहीं, ये ना एक्चुअली हमारे फौज में जो सीनियर फौजी होते हैं ना वो बड़े तगड़े होते हैं, तो मेरी वाइफ के जो चाचा जी थे वो फौज में थे और वो वहीं पर श्रीनगर में थे, उन्होंने मेरे ऊपर पूरा अच्छा खासा होमवर्क रिसर्च करके और ठा करके सामने रख दी लड़की। अब वही वाली बात है कि फौजियों की एक कमजोरी ये जरूर होती है कि सुंदर चीज को सुंदर मानने में बुराई कोई नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। एंड वी गॉट मैरिड।
0: क्या बात है,
1: श्रीनगर, काउंटर इंसर्जेंसी एंड शादी।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है, मतलब यहाँ से तो पूरी काया पलट हो गई। और जो सुंदर काया जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने आपके जीवन की काया को बहुत सुंदर बनाया हुआ है आज तक, वो आप ये जरूर बताएं। और इसका श्रेय मैं भारतीय सेनाओं को देना चाहूंगी कि एक एक बच्चा जो अपने घर से निकलकर, अपनी माँ की आंचल से निकलकर सीधा पहुंचता है ट्रेनिंग देने के बाद, उसको इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो सिर्फ देश के बारे में सोचता है, देश देश को बचाने के लिए सोचता है, जो अपने प्राणों की परवाह नहीं करता, जिसके लिए मृत्यु जो है, आप मृत्यु शायद शब्द यहां पर ठीक भी नहीं, जिसके लिए देश के लिए बलिदान देना सर्वोपरि है। आई कुड सी कर्नल शैलेंद्र सिंह हैव वेट आइज। किस तरह का पल वो रहा होगा शायद शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ आपकी नम आंखें इस बात का सबूत हैं, आपके एक एक लफ्ज इस बात को यहां साबित कर रहे हैं कि जब एक सोल्जर, एक सैनिक मैदान जंग में जाता है तो यही सोचकर जाता है कि मैं वापस नहीं लौटूंगा, मैं जा ही रहा हूं देश के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए। आप और उन तमाम, आप और 527 टोटल 528 वो सभी सोल्जर्स, उनको हमारी ओर से नमन। हम यही कहते हैं, अगर आप नहीं तो हम नहीं। एक और व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि अगर आपको मौका मिला, आपको ये मौका दिया गया, जो आपने अपना कार्यकाल जिया है, जो आपने अपनी सेवाएं दी हैं, आपने वो यूनिफॉर्म, वो पोशाक पहनी है, चौड़ा अपना सीना चौड़ा कर अपने मेडल्स लगाए हैं, अगर वो मौका दोबारा से मिले, क्या आप दोबारा से जीना चाहेंगे उन्हीं पलों को?

जहाँ पे आपका नेतृत्व पॉइंट टू पॉइंट डिसीजन लेने की ताकत, जिस वक्त निर्णय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासतौर पर अगर कारगिल युद्ध की बात करें जहाँ आपके बहुत सारे साथी पल पल क्षण क्षण साथ छोड़कर जा रहे थे, उस वक्त निर्णय लेना कितना मुश्किल होता है। मैं जानती हूँ कि भारतीय सेनाएं आपको तैयार करती हैं, इस मौके के लिए भी तैयार करती हैं, पर व्यक्तिगत रूप से जिस तरह के जहीन व्यक्ति आप खुद हैं ये जरूर बताएं। और इसका श्रेय मैं भारतीय सेनाओं को देना चाहूंगी कि एक बच्चा जो अपने घर से निकलकर, अपनी माँ की आंचल से निकलकर सीधा पहुंचता है ट्रेनिंग देने के बाद, उसको इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो सिर्फ देश के बारे में सोचता है, देश को बचाने के लिए सोचता है, जो अपने प्राणों की परवाह नहीं करता, जिसके लिए मृत्यु जो है, आप मृत्यु शायद शब्द यहां पर ठीक भी नहीं, जिसके लिए देश के लिए बलिदान देना सर्वोपरि है। आई कुड सी कर्नल शैलेंद्र सिंह हैव वेट आइज। किस तरह का पल वो रहा होगा शायद शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, आपकी नम आंखें इस बात का सबूत हैं, आपके एक एक लफ्ज इस बात को यहां साबित कर रहे हैं।

क्योंकि जब हम भारतीय सेना की बात कर रहे हैं, ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, तो उनकी फैमिली लाइफ के बारे में आपने हमें रूबरू कराया, ये और भी प्यारी और सुखद बात थी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। संदेश हमारे पास रोहित मेहर का आया है ओडिशा से, और इनको आपकी खुश मिजाजी बहुत ज्यादा पसंद आई, जिंदा दिली पसंद आई। थाईलैंड से हमारे पास संदेश आया है मिस्टर अमोल भवाने का। संदेश भेजने वालों में और भी बहुत सारे दोस्त हैं, जहां पे आपका नेतृत्व, पॉइंट टू पॉइंट डिसीजन लेने की ताकत, जिस वक्त निर्णय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासतौर पर अगर कारगिल युद्ध की बात करें, जहां आपके बहुत सारे साथी पल पल क्षण क्षण साथ छोड़कर जा रहे थे, उस वक्त निर्णय लेना कितना मुश्किल होता है। मैं जानती हूं कि भारतीय सेनाएं आपको तैयार करती हैं, इस मौके के लिए भी तैयार करती हैं, पर व्यक्तिगत रूप से जिस तरह के जहीन व्यक्ति आप खुद रहने के बाद, हम जीवन में कुछ भी क्यों ना करें, अपने गंतव्य तक पहुंच

0: के बाद हम जीवन में कुछ भी क्यों ना करें, अपने गंतव्य तक पहुंचे, लेकिन अपने अंदर के व्यक्ति को हमेशा जिंदा रखें, क्योंकि यही जिंदा दिली हमें परचम लहराने पर प्रेरित करती है।
1: देश अकेला है, जिंदगी अकेली है, जी लीजिए इसे अपने देश के लिए। जय हिंद, नमस्कार।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमने साक्षात्कार किया, बात की कर्नल शैलेंद्र सिंह से, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, और हम यही कहेंगे कि हम हमेशा आपके समक्ष, आप सभी ऑफिसर सैनिकों के समक्ष अपना शीश झुकाए खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे, और हमेशा गर्व से कहेंगे कि हमारी भारतीय सेनाओं ने हमें हमेशा मुस्कुराने की, जीने की वजह दी है, और आपको शत शत प्रणाम, शत शत नमन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं है बल्कि राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा ने विधेयक कल पारित कर दिया था। भोजनावकाश के बाद कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह विधेयक देश के छात्रों, युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल और प्रश्न पत्र लीक को कतई बर्दाश्त नहीं करने के मोदी सरकार के संकल्प को दोहराया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस विधेयक को लाने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं और प्रस्तावित संशोधन

0: सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में प्रभावी नहीं होंगे। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर मेटा ने खेद व्यक्त किया है। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना के कारण बताने को कहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के सदस्य देशों की परिषद के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो और जॉर्जिया के राजदूत बख्तंग जाउशविली से मुलाकात की। बैठक में परिकल्पित लोकतांत्रिक सहयोग को मजबूत करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 की विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि बख्तर पांडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बतूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बतूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाश अभियान चलाया। फिदायीन आतंकी जमीशा मुबीन और कई आईएसआईएस से जुड़े आतंकवादियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। हमलों में विस्फोटकों से भरी एक कार का इस्तेमाल किया गया था। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आज भी प्रदर्शन जारी रहे। सोमवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में 40 से अधिक लोग मारे गए थे। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन लीग ने सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग का आरोप लगाया है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने में सफलता पाई है। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई। नीरज पांचवें, रोहित और यशवीर नौवें और दसवें स्थान पर रहे। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। संध्या के 5:05 हुए हैं। आइए अब जानते हैं आज की सांध्यकालीन और कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर भक्ति परक फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सुर संध्या में। रोज की तरह कार्यक्रम युववाणी होगा 5:30 पर। आज के कार्यक्रम में मैत्री और विश्वास विषय पर होगी चर्चा। साथ ही आप सुनेंगे मृदुल सचदेवा से विनय प्रताप सिंह की बातचीत। विषय रहेगा हॉस्पिटैलिटी और होटल क्षेत्र में करियर संभावनाएं। हेल्थ प्लस में जानिएगा सकोर माइंड बोन अवेयरनेस के बारे में। शाम 6 का समय रहेगा कार्यक्रम ग्रामीणों का। आज के कार्यक्रम में पॉली हाउस की उपयोगिता विषय पर होगी चर्चा। साथ ही सुनिएगा डॉक्टर रेवतीलाल राजपूत की वार्ता। विषय रहेगा वर्षा ऋतु में दुधारू पशुओं की खिलाई पिलाई और देखभाल। कार्यक्रम मजदूर मंडल में मानव तस्करी के खिलाफ दिवस विषय पर सुनिएगा चर्चा। साथ ही उपभोक्ता के अधिकार और संरक्षण विषय पर हम आपको सुनवाएंगे मंजू द्विवेदी की वार्ता। विषय देश दुनिया घरेलू नुस्खे और फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। समय रहेगा 6:00।

7:10 पर डॉक्टर रेखा पसरिया हमें बताएंगी अंग्रेजियत का बढ़ता मोहपाश के बारे में। कार्यक्रम होगा विविधा। 7:31 का समय रहेगा देशभक्ति पर कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का। रात्रि 8:15 पर एक शब्द पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शब्द गीत और 8:30 का समय होगा चित्रपट संगीत का।

रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में बागेश्वरी कमल से सुनेंगे शहनाई वादन। अभी आपने जाना आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आइए अब जानते हैं कल की प्रातःकालीन सभा में क्या है खास। कल सुबह 6:05 पर होगा कार्यक्रम वंदना और 6:25 पर कार्यक्रम चिंतन। संदेश स्वर में सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान कल सुबह 6:35 पर। सुबह 7:10 का समय होता है स्वास्थ्य चर्चा का। कल के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे रूट कैनाल उपचार। विषय पर वार्ता, वार्ताकार होंगे डॉक्टर अंकित गर्ग। कल सुबह 9:25 पर गांधी चर्चा में होगी वचन और विचार के संबंध में गांधी जी के विचार। सुबह 9:45 पर सुनिएगा सावित्री दीक्षित से लोक संगीत और 10:30 पर देवाशीष चक्रवर्ती से गिटार वादन कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में। अभी आपने जाना आज की सांध्यकालीन और कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 5:10। आइए आनंद लेते हैं भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या का।

ये भक्ति गीत हमने लिया था फिल्म संत ज्ञानेश्वर से, जिसे लिखा था धर्मेश तिवारी ने। संगीत दिया था नंदू होलप ने और आवाज थी अनुराधा पोडवाल की। अगली प्रस्तुति फिल्म लोफर से है, जिसके रचनाकार आनंद बख्शी हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है और आवाज दी है महेंद्र कपूर ने।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

फिल्म नीलकमल के इस भजन को सुरों से सजाया था रवि ने। रचना साहिर की थी और आवाज थी आशा भोसले की। आकाशवाणी आगरा पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भजन संध्या। अगला भक्ति गीत फिल्म जोधा अकबर से है, जिसे लिपिबद्ध किया है जावेद अख्तर ने। संगीत और आवाज है ए आर रहमान की।

अभी ही आपने सुना भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या। मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। समय के 5:30 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा पर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त और होस्ट ऋषु वर्मा, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट कार्यक्रम युगवाणी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे ही होंगे और इस मॉनसून से अपने एज वेल एज अपनी फैमिली की हेल्थ को भी अच्छा रख रहे होंगे। वैसे दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग होने वाला है, लेकिन दोस्तों फॉर्मल शुरुआत करने से पहले अपने रूल को फॉलो करते हैं, यानी चलिए ज़रा अपने दिमाग के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प जनरल नॉलेज के सवाल से शुरू करते हैं। अब आपको जैसा पता ही है कि इन दिनों कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं और हमारे इंडियन एथलीट्स अलग अलग स्पोर्ट्स में मेडल लाकर हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में एक ऐसी इंडियन एथलीट ने हिस्ट्री रच दी है जिन्होंने एक ऐसा गोल्ड मेडल जीता जो पहले कभी किसी इंडियन ने नहीं जीता था। सोचिए जरा, कौन है ये एथलीट और क्या है ये अचीवमेंट? सोचिए, सर्च कीजिए, और अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपने पास संभाल कर रखिए, कार्यक्रम के आखिर में हम इस बारे में दोबारा बात करेंगे। दोस्तों सच बताऊं, ऐसी अचीवमेंट्स की बात करते करते मुझे एक और चीज़ याद आ गई कि आखिर फ्रेंडशिप और ट्रस्ट में क्या कनेक्शन है। वैसे आप ही बताइए, आपकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त है जिस पर आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं? मुझे याद है स्कूल और कॉलेज के दिनों में हम सब फ्रेंड्स के साथ बैठकर घंटों तक बातें किया करते थे, बिना ये सोचे कि सामने वाला हमारी बात का गलत मतलब निकालेगा या नहीं। वो एक ऐसा टाइम था जब फ्रेंडशिप बिना किसी शर्त के हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होती गईं। आज की जनरेशन को देख लीजिए, हम सब सोशल मीडिया पर हज़ारों फ्रेंड्स रखते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में ट्रस्ट करने लायक बहुत कम होते हैं।

दोस्तों, ट्रस्ट एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। असली दोस्ती की सबसे बड़ी पहचान यही है कि आप किसी के सामने अपने आप को बिना किसी मास्क के प्रेजेंट करो। वो दोस्त जो आपकी सक्सेस में जलता नहीं बल्कि खुश होता है, जो आपकी गलत बात पर टोकता है और फिर आपके साथ खड़ा भी रहता है, वही है असली दोस्त। दोस्तों सोचिए ज़रा, कितने लोग हैं आपकी लाइफ में जो सिर्फ आपके साथ पार्टी या आउटिंग के लिए जुड़े हुए हैं, और कितने ऐसे हैं जो मुश्किल वक्त में भी आपके साथ खड़े हैं। यही डिफरेंस हमें समझना है। और साथियों, विश्वास सिर्फ दूसरों पर करना ही नहीं बल्कि खुद पर ट्रस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं ना, तो हम दूसरों के साथ वैलिडेशन नहीं मांगते और इस वजह से रिश्तों में इनसिक्योरिटी और डाउट भी नहीं आता। एक हेल्दी फ्रेंडशिप तभी बनती है जब दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को स्पेस भी देते हैं और साथ ही इमोशनली भी सपोर्ट करते हैं। देखो, आजकल एक और चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, एंड दैट इज़ फ्रेंडशिप का टूटना। छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सालों पुरानी दोस्ती ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर हमें कम्युनिकेशन की वैल्यू भी समझ आती है कि अगर आपको किसी दोस्त से कोई शिकायत हो तो उसे अंदर ही अंदर रखने की बजाय खुलकर बात करो, वो ज़्यादा हेल्दी होता है। क्योंकि ट्रस्ट तभी मजबूत होता है जब दोनों तरफ ऑनेस्टी हो। एक और बात दोस्तों, सच्ची दोस्ती में जलन नहीं होती। अगर आपका दोस्त आपके आगे निकल गया तो आप उससे जलोगे नहीं बल्कि उसकी ग्रोथ को सेलिब्रेट करोगे, वही है असली दोस्ती। और एक और स्पेशल बात बताती हूँ, आज यानी 30 जुलाई को यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप सेलिब्रेट किया जा रहा है। दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप यूएन ने 2011 में ऑफिशियल रूप से डिक्लेयर किया था ताकि लोग अपनी फ्रेंडशिप्स को वैल्यू करें और अलग अलग कल्चर्स, रिलीजन्स और कंट्रीज के बीच भी फ्रेंडशिप बनी रहे। तो दोस्तों, इस इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप के मौके पर आज ही अपने किसी पुराने दोस्त को कॉल करो या मैसेज करो और उन्हें बताओ कि वो आपके लिए कितने मायने रखते हैं। क्योंकि सच्ची दोस्ती कोई मैजिक नहीं बल्कि छोटी छोटी ऑनेस्टी और केयर से बनती है। तो चलिए दोस्तों, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ सुनते हैं अपने कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: दोस्तों, होप सो आपने इतनी देर में अपने उस दोस्त को मैसेज ज़रूर कर दिया होगा है जिसे आप बात करना चाहते हैं और बहुत टाइम से आपने बात नहीं करी है। वैसे दोस्तों, ट्रस्ट चाहे दूसरों पर हो या खुद पर, हमेशा अपने आप पर भरोसा ज़रूर रखिए और सोचिए यही ट्रस्ट हमें अपने शरीर पर भी रखना चाहिए। अपने शरीर के सिग्नल्स को ध्यान से सुनना और उन्हें इग्नोर ना करना। और इसी वजह से आज हम करते हैं एक ऐसी ज़रूरी हेल्थ टॉपिक की बात जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, जुलाई का महीना दुनिया भर में सार्कोमा एंड बोन कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। सार्कोमा एक रेयर तरह का कैंसर है जो हमारे बोन्स यानी हड्डियों का फिर सॉफ्ट टिश्यूज जैसे मसल्स, फैट और ब्लड वेसल्स में होता है। सबसे चिंता वाली बात दोस्तों ये है कि सिर्फ 25% लोग ही जानते हैं कि सार्कोमा असल में होता क्या है, जबकि हर दिन करीब 15 नए केसेस डायग्नोस होते हैं। इसीलिए इसे कई बार फॉरगॉटन कैंसर भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके सिम्टम्स भी शुरुआत में बहुत आम लगते हैं, जैसे किसी हड्डी में लगातार दर्द हो और रात में दर्द बढ़ जाए, कोई लंप या सूजन हो जो ठीक ही ना हो रही हो, बिना किसी वजह वेट लॉस होना या फिर बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना। अक्सर यंग लोग और टीनेजर्स इन सिम्टम्स को नॉर्मल स्पोर्ट्स इंजरी या ग्रोइंग पेन समझकर इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से डायग्नोसिस में देरी हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को लगातार कोई दर्द, सूजन या लंप महसूस हो जाए तो उसे इग्नोर मत करिए, बल्कि डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। छोटी सी अवेयरनेस किसी की जान बचा सकते हैं। याद रखिए, समय पर की गई जांच और सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। दोस्तों, हेल्थ की तरह ही अपने फ्यूचर को लेकर भी सही समय पर सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम अपने करियर को लेकर कई सवालों में उलझे रहते हैं ना, कौन सी फील्ड चुने, कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आगे कैसे बढ़ें। तो आज हम एक ऐसे करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोगों को कम नॉलेज है कि इस फील्ड में भी करियर बनाया जा सकता है, एंड दैट इज़ हॉस्पिटैलिटी और होटल इंडस्ट्री को। आपको भी हॉस्पिटैलिटी और होटल इंडस्ट्री में करियर बनाने के बारे में जानना है तो अब समय है हमारी विशेष भेंट वार्ता का। इस भेंट वार्ता में विनय प्रताप सिंह ने मृदुल सचदेवा से हॉस्पिटैलिटी और होटल क्षेत्र में करियर संभावनाएं विषय पर बेहद रोचक और उपयोगी बातचीत की है। आइए बिना किसी देरी के सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात करेंगे युवाओं के लिए होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में रोजगार के बढ़ते आयाम के विषय पर। इस विषय पर जानकारी साझा करने के लिए हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है मृदुल सचदेवा जी को। नमस्कार मृदुल जी।
2: नमस्कार। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, मैं होटल मैनेजमेंट का मैंने 3 इयर्स डिप्लोमा किया है एंड विद दैट आई हैव डन अ 3 ईयर डिग्री फॉर टूरिज्म। आई डिड इट फ्रॉम JP होटल्स ट्रेनिंग सेंटर आगरा, जिसमें 3 इयर्स का मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया था एंड ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग डिग्री फ्रॉम इग्नू। तो इस इंडस्ट्री के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले वी शुड नो अबाउट द वर्ड हॉस्पिटैलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉस्पिटैलिटी। सो हॉस्पिटैलिटी मीन्स शोइंग जेन्युइन जेनरोसिटी टू पीपल, इट मे बी विजिटर्स आर कस्टमर्स आर गेस्ट, एंड शोइंग देम दैट दे आर टेकन केयर ऑफ, दे आर फीलिंग वैल्यूड, दे आर फीलिंग कम्फर्टेबल अंडर अस। सो दिस

0: is what is hospitality, and the industry is all about hospitality. It is basically divided into some key sectors. For example, lodging, which includes like accommodations like hotels, resorts, motels, then food and beverage outlets that are restaurants, bars, pubs, clubs, some travel and tourism sectors that includes cruise lines and airlines, and some recreational events, which includes banquets and conferences. So all these places, all these sectors needs hospitality of staff, of the personnel, so that the guests, visitors or customers are feeling valued.
1: जी मृदुल जी, जैसा आपने बताया कि जो होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है हमारा, उसमें किन किन क्षेत्रों में काम होता है और किस तरीके से वहां पर काम होता है, इसी बात को जोड़ते हुए मैं ये जानना चाहूंगा कि जो हमारे युवा हैं
0: जी,
1: वो 10+2 के बाद इस क्षेत्र में जा सकते हैं कोर्सेज करके, या स्नातक के बाद जा सकते हैं, इस पर आप कुछ जानकारी साझा करें।
0: जी, जो बेस लाइन है एंट्री की वो होती है 10+2 के बाद
1: जी,
0: जिसमें होते हैं डिप्लोमास, विच इंक्लूड्स डिप्लोमा ऑफ 1 ईयर, डिप्लोमा ऑफ 3 ईयर्स
1: जी,
0: एज वेल एज BHM डिग्रीज, विच आर स्पेशलाइज डिग्री फॉर होटल मैनेजमेंट
1: जी।
0: बट अगर इफ समवन वांट्स टू गो आफ्टर देयर 10th और इक्विवेलेंट, सो दे कैन गो फॉर सम 6 मंथ्स डिप्लोमा, विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर आइदर किचन ट्रेनिंग और फॉर बार ट्रेनिंग। अगर आपको एक स्पेसिफाइड आपका है कि आपको किचन में ही, किचन डिपार्टमेंट में ही अपना करियर परस्यू करना है, देन यू कैन गो फॉर 6 मंथ्स ट्रेनिंग, और आपको बार में ही जाना है, देन यू कैन गो फॉर 6 मंथ्स डिप्लोमा ट्रेनिंग्स। बट इनसे आपके करियर को वो बूस्ट नहीं मिलता है विच यू कैन गेट आफ्टर 12th द डिप्लोमास और डिग्रीज यू आर डूइंग।
1: मृदुल जी, आपने जैसा आपने परिचय में बताया कि आपने डिप्लोमा प्लस डिग्री दोनों ही कोर्सेज को किया है, तो क्या ये भी संभव है कि हम एक साथ इन दोनों कोर्सेज को कर सकते हैं?
0: जी बिल्कुल संभव है, लेकिन अगर आप डिग्री कर रहे हैं प्राइवेट, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग से डिग्री कर रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर ऑप्ट फॉर बोथ ऑफ दी थिंग्स, क्योंकि इफ यू वांट टू मेक योर करियर इनटू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, यू शुड, आई लाइक, इट्स माय प्रेफरेंस, यू शुड गो फॉर डिप्लोमा ऑन अ रेगुलर बेसिस। आपको जो डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर आप डिग्री कर रहे हैं होटल मैनेजमेंट की, तो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए, उस चीज में आपको प्राइवेट नहीं जाना चाहिए।
1: जी मृदुल जी, इसी चीज में अब बात आती है कोर्सेज, हमारे जो युवा हैं वो समझ रहे होंगे जैसा आप बता रहे हैं कि तरह तरह के कोर्सेज हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं, कुछ डिग्री कोर्सेज हैं, और 10+2 के बाद हमारे जो युवा हैं उनको इस क्षेत्र में जाने का अवसर मिल जाता है। इन डिग्री और डिप्लोमा को कंप्लीट करने के बाद बात आती है रोजगार की, जो कि आज के समय में एक महत्वपूर्ण विषय भी है हमारे युवाओं के सामने। तो हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट क्षेत्र में जो हमारे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हैं, उस पर आप जरा प्रकाश डालिए।
0: जी, जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है, उस टाइम पे सबसे पहले आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है।
1: जी,
0: इट माइट बी 6 मंथ्स ट्रेनिंग और 1 ईयर ऑन जॉब ट्रेनिंग, लाइक आई डिड 1 ईयर ऑन जॉब ट्रेनिंग।
1: जी,
0: उस ट्रेनिंग में हमें एज अ स्किल्ड पर्सनल डेवलप किया जाता है, हमारे अंदर जो क्वालिटीज हैं लाइक कम्युनिकेशन, लीडरशिप क्वालिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटीज, उनको डेवलप किया जाता है। उसके बाद हम बेस एंट्री लेवल पे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन लाइक वी कैन सी जेन ज़ीज़ आर लाइक फास्ट पेस्ड, वो चाहते हैं कि उनको एक जल्दी ग्रोथ मिले।
1: बिल्कुल।
0: तो उसके लिए दे कैन ऑप्ट फॉर MTs, विच इज मैनेजमेंट ट्रेनीज, जिसमें आपका यूजुअली 2 ईयर्स या 3 ईयर्स की डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग होती है, एंड आफ्टर दैट यू डायरेक्टली गो एज दी मैनेजर। आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, देन आपने 3 साल की मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए ऑप्ट कर लिया, आप सेलेक्ट हो गए, देन आप डायरेक्ट उस हार्डकोर ट्रेनिंग के अंडर जाते हैं, उसके बाद आप मैनेजर बनते हैं।
1: मृदुल जी, इसमें ये मैं जानना चाहूंगा और हमारे युवा भी जानना चाहेंगे कि जब हम ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग या इंटर्न के रूप में काम करते हैं इस इंडस्ट्री में, तो क्या हमें कुछ पैसे भी प्राप्त होते हैं, मतलब कुछ इंसेंटिव या फाइनेंशियल एड भी मिलता है, कि सिर्फ हम ऑनरेरी रूप में काम कर रहे होते हैं?
0: जी, हमको फाइनेंशियल एड मिलता है, इसमें एक बेसिक स्टाइफेंड मिलता है
1: जी,
0: और जो इसमें आपका काम होता है, आपका होता है, जो हमारी बेसिक एंट्री होती है वो होती है एज एन गेस्ट सर्विस एसोसिएट। आप गेस्ट सर्विस एसोसिएट से लेके मैनेजर तक के सारी ड्यूटी सीखेंगे उस टेन्योर में, और उस टाइम पे आपको जो कंपनी के SOPs हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उस हिसाब से आपको एक बेसिक स्टाइफेंड मिला जाएगा फॉर योर फाइनेंशियल हेल्प।
1: मृदुल जी, बात हो गई रोजगार में, हम ट्रेनी के तौर पर ज्वाइन करते हैं और निश्चित तौर पर जब हम इंटर्न या ट्रेनी के रूप में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो हम परमानेंटली उस जॉब में जा सकते हैं
0: जी।
1: एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है करियर ग्रोथ के विषय में, यानी जब हम इस सेक्टर में जाते हैं तो हम कितनी ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं? इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए
0: जी। आप करियर ग्रोथ में इसमें आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटीज हैं, आप नेशन वाइड अपने कंट्री में भी काम कर सकते हैं, ग्लोबल अब्रॉड भी जा सकते हैं। और जो आपकी ग्रोथ है, यस इट डिपेंड्स ऑन टाइम और आपकी आप किस हिसाब से काम कर रहे हैं, किस पेस पे काम कर रहे हैं। यू कैन

0: गो एज जीएम्स फॉर होटल्स एंड रिजॉर्ट्स. यू कैन वर्क इन 5-star सुपर डीलक्स प्रॉपर्टीज.
1: जी
0: लाइक आई हैव ऑल्सो वर्क एंड आई वॉज लाइक बटलर ऑफ सम वेरी बिग पर्सनैलिटीज, वेरी बिग बुल्स ऑफ द इंडस्ट्री.
1: जी
0: और आप एब्रॉड जाने के लिए पहले क्या होता था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स होते थे, बट
1: जी
0: अब मेजर रोल प्ले कर रही है कंसल्टेंसीज. दे हैव
1: जी
0: एंटर्ड इन टू द मार्केट. तो अब वो मेजोरिटी जो रिक्रूटमेंट हो रही है अब्रॉड के लिए, वो हो रही है कंसल्टेंसीज के थ्रू.
1: जी
0: बट हाँ, इसमें क्या है, फ्रॉडुलेंट्स भी बहुत हो रहे हैं.
1: जी
0: तो वन हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि ही इज
1: बिल्कुल
0: गोइंग थ्रू द राइट वे
1: बिल्कुल
0: और ही इज जस्ट
1: जी
0: ग्रेस्पिंग इट फॉर सम काइंड ऑफ
1: जी
0: क्रेविंग्स.
1: मृदुल जी, ये तो बात हो गई कि हमारे जो एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर जाकर हम अपने कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं और अपने उस करियर में ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है स्वरोजगार की। कई हमारे युवा चाहते हैं कि वो इस फील्ड में अपना खुद का नाम बनाना चाहते हैं, खुद की पहचान बनाना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं?
0: जी, जो चाहते हैं कि अपना खुद का अ काइंड ऑफ यू आर सेइंग कि बिजनेस अपना डेवलप करना
1: जी,
0: चाहते
1: इस
0: हैं.
1: इंडस्ट्री में अपना खुद का ब्रांड एस्टैब्लिश करना चाहते हैं या एक शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें?
0: जी, आपको वाइल यू आर इन द ट्रेनिंग और आप कोर्स चल रहा था, तो आपको फूड एंड बेवरेजेस के बारे में अच्छी तरीके से डीपली नॉलेज दी जाती है, जिसके थ्रू यू कैन स्टार्ट योर ओन रेस्टोरेंट्स, योर क्लाउड किचन्स, योर फूड आउटलेट्स. एंड अगर आप चाहें, आप अपने एकोमोडेशन भी डाल सकते हैं, जैसे कई लोग डालते हैं, अपने प्राइवेट एकोमोडेशन डाल देते हैं, हॉस्टल्स डाल देते हैं, होम स्टेज डाल देते हैं, एंड यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो.
1: जी
0: और वो ग्रोथ डिपेंड करती है स्टिल ऑन पर्सन कि आप उसको कितना इंटरेस्ट से काम को कर रहे हैं.
1: जी
0: बट आई हैव सीन मैनी ऑफ माई कलीग्स डूइंग बिजनेस ऑन गुड लेवल्स,
1: जी
0: क्योंकि आपका फूड एंड बेवरेज की आपको डीप नॉलेज होती है और आपको अपडेटेड नॉलेज दी जाती है कि करेंटली क्या चल
1: बिल्कुल
0: रहा है ट्रेंडिंग में.
1: जी
0: तो उस हिसाब से यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो.
1: जी मृदुल जी, आप हमारे स्टूडियोज आए और हमारे युवा साथियों को आपने होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में रोजगार के बढ़ते आयामों पर जो जानकारी दी, उससे निश्चित रूप से उन्हें बहुत फायदा होगा। आप हमारे स्टूडियोज आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों, अभी हमने सुनी हॉस्पिटैलिटी और होटल क्षेत्र में करियर संभावनाएं विषय पर भेंट वार्ता. और इस बातचीत में विनय प्रताप सिंह ने मृदुल सचदेव से इस फील्ड में बढ़ते करियर ऑप्शंस, ज़रूरी स्किल्स और आने वाले समय की अपॉर्चुनिटीज़ पर खुलकर चर्चा की. उम्मीद है कि इस भेंट वार्ता के थ्रू आपको कुछ नया जानने और अपने करियर को कैसे शेप देनी है वो समझ आया होगा. अब साथियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सेगमेंट क्वेस्ट वर्ल्ड में बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जहां लोगों ने अपने भरोसे और अपने सपनों दोनों को दांव पर लगा दिया, पर कई बार वो भरोसा गलत हाथों में चला गया. दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ डंकी रूट की. देखो, डंकी शब्द असल में पंजाबी के एक इडियम से आया है, जिसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह हॉप करते रहना, यानी बिना सीधे रास्ते के इधर उधर घूमते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना. देखिए, ये एक इलीगल इमिग्रेशन टेक्निक है जिसमें लोग एजेंट्स और ट्रैफिकर्स की मदद से कई कंट्रीज़ को इलीगली क्रॉस करते हुए अपने ड्रीम डेस्टिनेशन जैसे US, UK या कनाडा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. मोस्टली ये जर्नी शुरू होती है किसी टूरिस्ट वीज़ा के थ्रू, किसी लैटिन अमेरिकन कंट्री लाइक वेनेजुएला या निकारागुआ पहुँच कर वहाँ आगे कई कंट्रीज़ होते हुए खतरनाक जंगलों और बॉर्डर्स को इलीगली क्रॉस करते हुए माइग्रेंट्स अपनी डेस्टिनेशन कंट्री तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. दोस्तों, आपको याद होगा जब बजरंगी भाईजान मूवी में सलमान खान मुन्नी को पाकिस्तान पहुंचाने की कोशिश करता है, वैसे ही ये रास्ते जितने मूवीज़ में खतरनाक दिखाए जाते हैं ना, असल ज़िंदगी में भी उतने ही खतरनाक होते हैं. जैसे हाल ही में फेबररी 2025 में एक US मिलिट्री प्लेन जिसमें अराउंड 104 इंडियन डिपोर्टीज थे, अमृतसर में लैंड हुआ. इन डिपोर्टीज ने अपनी जर्नी के बारे में भी बताया कि उन्होंने रास्ते में हैंडकफ्ड रखा गया, बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिली और एजेंट्स ने उन्हें लीगल तरीके से पहुंचाने का झूठा वादा करके लाखों रुपए भी ठग लिए थे. इसीलिए दोस्तों, याद रखो, किसी पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोच लो, स्पेशली जब बात पैसों की हो. वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज यानी 30 जुलाई यूनाइटेड नेशंस ने 2013 से वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन के रूप में भी डिक्लेयर किया हुआ है. ये भी रीज़न है कि हमने डंकी रूट के बारे में बात की और जाना ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में. वैसे दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा सोच रहा है इलीगल रूट के थ्रू विदेश जाने का, तो उन्हें ज़रूर अवेयरनेस दीजिए. और ये रास्ते सिर्फ रिस्क नहीं बल्कि जानलेवा भी हो सकते हैं. सही जानकारी और लीगल तरीके से आगे बढ़ना ही असली रास्ता है. अब चलो दोस्तों, कार्यक्रम का ये अगला गीत सुन लेते हैं.

साथियों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, पर उससे पहले चलिए जान लेते हैं उस सवाल का जवाब जो मैंने शुरुआत में आपसे पूछा था। तो दोस्तों, बात हो रही थी इस बात के कॉमनवेल्थ

उससे पहले चलिए जान लेते हैं उस सवाल का जवाब जो मैंने शुरुआत में आपसे पूछा था। तो दोस्तों, बात हो रही थी इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया के पहले पैरा एथलेटिक गोल्ड मेडल की, और वो हिस्ट्री रचने वाली एथलीट हैं शर्मिला धानकर। उन्होंने विमेंस शॉर्ट पुट F57 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर एक हिस्ट्री बना दी जो पहले कभी किसी इंडियन पैरा एथलीट ने कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं बनाई थी। दोस्तों, जब भी हम किसी बड़े सपने के पीछे भागते हैं ना, तो अक्सर हमें लगता है कि कोई शॉर्टकट मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन चाहे वो शर्मिला जैसे एथलीट की मेहनत हो या किसी रिश्ते में ट्रस्ट बनाने की बात हो, हर जगह असली रास्ता वही है जो थोड़ा मुश्किल लेकिन ऑनेस्ट ही है। कई बार शॉर्टकट्स के पीछे हम भाग जाते हैं, बट शॉर्टकट्स चाहे वो पढ़ाई में हो, करियर में हो या लॉन्ग टर्म में, हमें नुकसान पहुंचा ही सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज से खुद से एक वादा करो कि चाहे रास्ता जितना भी लंबा क्यों ना हो, आप पेशेंस और ऑनेस्टी रखोगे और फिर देखना कैसे आप एक दिन वहाँ पहुँच जाते हो जहाँ आपने सोचा होता है। इसी के साथ अब मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त ऋषु वर्मा को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।

अभी आपने सुना युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा। संध्या के 6 बज चुके हैं, अब आप सुनेंगे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम ग्राम्य लोक।

किसान भाइयों और बहन, नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ग्रामीण लोग अपनी रेडियो साथी अनुराधा के साथ। साथियों, मेहनत तभी रंग लाती है जब उसके साथ सही तकनीक भी जुड़ जाती है। इसी विचार के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने कार्यक्रम में। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी आधुनिक कृषि तकनीक के बारे में जिसमें कम भूमि, कम पानी और बदलते मौसम की चुनौतियों के बीच भी किसानों को बेहतर उत्पादन और अधिक आय का रास्ता दिखाया है। हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पॉली हाउस के बारे में। साथियों, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे ना कि खेती पूरी तरह से मौसम की मेहरबानी पर निर्भर होती है। भाई, समय पर बारिश हो जाए तो किसान खुश, लेकिन यदि सूखा पड़ जाए, तेज आंधी आ जाए, ओलावृष्टि हो जाए या असमय बारिश हो जाए तो भैया महीनों की मेहनत कुछ ही घंटों में बर्बाद हो जाती है। आज जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम भी पहले जैसा नहीं रहा है भैया। कभी तो अप्रैल में लू चल जाती है तो कभी मई जून में बारिश हो जाती है। सर्दियां भी अनिश्चित हो गई हैं। ऐसे बदलते मौसम में खेती को सुरक्षित रखना आज सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन साथियों, हर चुनौती अपने साथ एक अवसर भी लेकर आती है। कृषि वैज्ञानिकों ने वर्षों के शोध के बाद एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे किसान मौसम की मार से काफ़ी हद तक बच सकते हैं, और वो तकनीक है पॉली हाउस। अब आप कहेंगे साथियों, ये पॉली हाउस क्या है और ये हमारे लिए कैसे उपयोगी है? तो पॉली हाउस एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसमें मजबूत लोहे के पाइप के ढांचे पर पारदर्शी शीट से ढका जाता है। इसके अंदर तापमान, नमी, प्रकाश, इन तीनों को नियंत्रित किया जाता है जिससे फसल को हर समय अनुकूल वातावरण मिलता रहे। अब साथियों, आप कहेंगे कि हमारे लिए कैसी उपयोगी है, इसका लाभ क्या है? तो भैया, इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें हम साल भर तक खेती कर सकते हैं।

0: साथियों, बरसात का मौसम अपने साथ हरियाली और नई उम्मीदें लेकर आता है, लेकिन यही मौसम दुधारू पशुओं के लिए कई तरह की चुनौतियां भी लेकर आता है। यदि इस समय पशुओं की सही से खिलाई पिलाई और देखभाल की जाए तो वे स्वस्थ रहते हैं, दूध उत्पादन भी अच्छा रहता है और बीमारियों का खतरा भी कम रहता है। तो साथियों, इस विषय में अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो सुनते हैं आज की ये वार्ता, वर्षा ऋतु में दुधारू पशुओं की खिलाई पिलाई एवं देखभाल। वार्ताकार हैं डॉक्टर रेतीलाल राजपूत।
1: प्रिय किसान भाइयों, बरसात का मौसम पशुओं के लिए परेशानी वाला रहता है। इस मौसम में सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती है, जिससे पशुओं में अनेक बीमारियां लग जाती हैं। हमारे द्वारा कुछ आवश्यक जानकारियां दी जा रही हैं, जिनको आप अमल में लाकर अपने दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखकर आप अच्छा एवं अधिक दूध प्राप्त कर सकते हैं। दूध उत्पादन के लिए आप गाय भैंस पालते हैं, लेकिन अधिकांश किसान भैंस पालते हैं क्योंकि गाय की अपेक्षा भैंस का पालना ज्यादा आसान है। एक

मुख्य बात यह भी है कि गाय बांझ या कम दूध देती है तो धार्मिक भावनाओं के कारण उसका बेचना संभव नहीं हो पाता है, जबकि भैंस के कम दूध देने पर या बांझ होने पर उसके बेचने में कोई परेशानी नहीं आती है। आमतौर पर दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखने तथा अधिक दूध प्राप्त करने के लिए तीन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात है कि पशु की अच्छी तरह से खिलाई पिलाई की जाए। दूसरी बात है कि उसके रहन सहन की उचित व्यवस्था रखी जाए। तीसरी बात है कि पशु का बीमारियों से बचाव किया जाए। बीमार होने पर तुरंत पशु डॉक्टर से संपर्क कर इलाज कराया जाए। जहाँ तक पशु की अच्छी खिलाई पिलाई की बात है, उसमें पशु को संतुलित राशन दिया जाए। संतुलित आहार का मतलब है कि प्रतिदिन दिए जाने वाले चारे दाने में पशु की आवश्यकता अनुसार सभी भोजन तत्व उचित मात्रा एवं उचित अनुपात में होने चाहिए। भोजन तत्वों में मुख्य रूप से प्रोटीन, शर्करा, वसा, खनिज लवण, विटामिन और पानी हैं। पशु की शर्करा तथा वसा की आवश्यकता साधारण रूप से दिए जाने वाले चारे दाने से पूरी हो जाती है, लेकिन अधिक उत्पादन के लिए प्रोटीन वाला हरा चारा एवं दाना दलिया देना नितांत आवश्यक है। अच्छे किस्म के हरे चारे में दाल वाली फसल का हरा चारा आता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक रहती है, लेकिन बरसात के मौसम में अधिकांश कृषक दाल वाला हरा चारा नहीं उगाते हैं। इस मौसम के लिए दाल वाला हरा चारा लोबिया की फसल है। इस चारे को किसान भाई अभी भी बो सकते हैं। इस चारे में खासियत है कि भरपूर मात्रा में खिलाने पर पशु को दाना दलिया कम देना पड़ता है। यह देखा गया है कि पशु को दाल वाला हरा चारा भरपूर देने पर उसे 6 किलोग्राम दूध बिना दाना दलिया दिए प्राप्त किया जा सकता है। इसके खिलाने से दूध उत्पादन पर खर्चा कम आता है, क्योंकि दाना दलिया दाल वाले हरे चारे की अपेक्षा महंगा पड़ता है, क्योंकि किसान भाई प्रोटीन की पूर्ति हेतु राशन में खली मिलाते हैं। इसके अलावा हरे चारे से पशु को विटामिन एवं खनिज तत्व भी प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए पशु को खनिज लवण मिश्रण की मात्रा कम खिलाना पड़ता है, जिससे खनिज लवण मिश्रण पर होने वाले खर्च की भी बचत हो जाती है, क्योंकि खनिज लवण मिश्रण बहुत महंगी कीमत पर मिलता है। सामान्य तौर पर पशु को 1 किलोग्राम दाना दलिया मिश्रण में 350 ग्राम अनाज जैसे जौ, गेहूं, जई, 350 ग्राम खल जैसे सरसों या मूंगफली, 150 ग्राम गेहूं की भूसी या चोकर, 150 ग्राम चुनी या दालों का टूटन रखा जाए। इसके अलावा 50 ग्राम खनिज लवण मिश्रण तथा 50 ग्राम साधारण नमक प्रतिदिन अवश्य दिया जाए। यह दाना दलिया मिश्रण पशु के जीवन निर्वाह यानी जो पशु खाली है, नहीं दूध दे रहा है, नहीं गाभिन है, उसे प्रति भैंस 1.5 किलोग्राम तथा प्रति गाय 1 किलोग्राम दिया जाए। जो पशु केवल गाभिन है, उसे जीवन निर्वाह के लिए जीवन निर्वाह के अलावा 6 माह से पहले गाभिन की अवस्था पर गाय को 1 किलोग्राम तथा भैंस को 1.5 किलोग्राम और 6 माह से अधिक दिनों का गाभिन है तो गाय को 1.5 किलोग्राम तथा भैंस को 2 किलोग्राम प्रतिदिन दिया जाए। दूध देने की अवस्था में गाय को 400 ग्राम तथा भैंस को 500 ग्राम दाना दलिया प्रति किलोग्राम दूध के हिसाब से दिया जाए। इस प्रकार 10 किलोग्राम दूध देने वाली गाय को 4 किलोग्राम तथा भैंस को 5 किलोग्राम दूध के लिए तथा 1 किलोग्राम गाय और 1.5 किलोग्राम भैंस को जीवन निर्वाह के लिए दाना दलिया मिश्रण की जरूरत पड़ती है। कुल मिलाकर गाय को 5 किलोग्राम तथा भैंस को 6.5 किलोग्राम दाना दलिया मिश्रण चाहिए। यदि इसकी मात्रा में बचत करनी है तो कृषक दाल वाला हरा चारा लोबिया भरपूर खिलाएं, जिसमें दाना दलिया की मात्रा आधी की जा सकती है। इस प्रकार दूध उत्पादन खर्चे की मात्रा कम हो जाएगी। किसान को लाभ के अतिरिक्त पशु की सेहत भी अच्छी रहेगी। ब्याने के 2-2.5 महीने बाद पशु गाभिन भी हो जाएगा। पशु के लिए पानी की पूर्ति के लिए पानी की नांद में हर समय साफ पानी उपलब्ध रहना चाहिए, ताकि पशु जब जरूरत समझे तभी पानी पी ले। सामान्य तौर पर वर्षा ऋतु में एक गाय भैंस के लिए 50-60 लीटर पानी की आवश्यकता है। दूध उत्पादन के लिए पशु को 2.5 लीटर पानी प्रति किलोग्राम दूध के हिसाब से चाहिए। बरसात के मौसम में पानी के खराब होने का डर रहता है, अतः पानी की नांद में बिना बुझा हुआ चूना डाल देना चाहिए। चूना डालने से पशु को कैल्शियम भी मिल जाता है। पानी में यदि कीड़े हो गए हैं तो वो भी मर जाते हैं, तब पानी की नांद में काई भी नहीं लगती है। पशु के रहन सहन को ठीक रखने के लिए आवश्यक है कि उसे बरसात

0: के मौसम में चरने के लिए कम से कम भेजा जाए। वर्षा होते समय खुले में न बांधा जाए क्योंकि बिजली गिरने की संभावना रहती है। कच्चे बाड़े की दिन में कम से कम 2 बार सफाई की जाए तथा उसमें चूना रखना चाहिए। पक्के बाड़े की सफाई प्रतिदिन नियमित रूप से धुलाई की जाए। धुलाई में फिनाइल का प्रयोग अवश्य किया जाए। दूध निकालने से पहले पशु को पानी पिलाना आवश्यक है। साथ ही दूध निकालने से पहले पशु को नहलाना भी जाए। दूध निकालते समय पशु को चारा दाना न दिया जाए। चारा दाना दूध निकालने से पहले खिला दिया जाए। दूध निकालने से पहले तथा बाद में पशु के थन पोटेशियम परमैंगनेट के हल्के घोल से पहले धोए जाएं ताकि पशु को थनैला रोग न हो सके। 5 माह से अधिक गाभिन पशु को पेट कीड़ों की दवा फेनबेंडाजोल 3 ग्राम की बोलस रात को केवल 1 बार रोटी गुड़ या आटे में खिलाई जाए। पशु के ब्याने पर जेर गिराने के लिए जेर गिराने की दवा भी जैसे 4 कैप्सूल इटोटोन तुरंत खिलाएं। लवारे को खीस माँ का पहला दूध जल्दी से जल्दी 1 से 1.5 लीटर पिलाया जाए तथा 3 दिन तक सुबह शाम नियमित रूप से पिलाएं। जहाँ तक बीमारियों से बचाव की बात है, यदि गलाघोंटू का टीका न लगा हो तो अविलंब लगवाएं। उसके 1 माह बाद अगस्त में खुरपका मुहपका का टीका लगवाएं। पेट कीड़ों की दवा प्रत्येक पशु को अवश्य दें। अभी जो लवारे पैदा हुए हों उन्हें पटेरों पेट के कीड़ों की दवा नियमित रूप से दें। जूं किलनी के नियंत्रण के लिए बूटेक्स दवा नियमित रूप से प्रयोग करें। दुग्ध जुर से बचाव हेतु पशु को ब्याने के 2 माह पूर्व तथा ब्याने के 2 माह बाद तक 100 मिलीलीटर प्रतिदिन के हिसाब से कैल्शियम पूरक अवश्य पिलाएं। लवारे के जन्म के बाद उसका नाल धागे से बांधकर अवश्य काटें और उसे टिंचर आयोडीन लगाएं ताकि नाल पक न सके। अधिक परेशानी होने पर आप पशु डॉक्टर से संपर्क करें।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता वर्षा ऋतु में दुधारू पशुओं की खिलाई पिलाई एवं देखभाल। वार्ताकार थे डॉक्टर रेवतीलाल राजपूत। आइए साथियों, इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, जाइएगा नहीं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: साथियों, नए खोज सेगमेंट में आज हम आपको कृषि के क्षेत्र में क्या क्या नई खोजें हुई हैं इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नैनो बबल सिंचाई के बारे में। इस तकनीक में सिंचाई के पानी में बहुत छोटे छोटे ऑक्सीजन के बुलबुले मिलाए जाते हैं, जिससे पौधों की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुँचती है। इससे 20-30% पानी की बचत होती है, जड़ों का बेहतर विकास होता है, फसल की वृद्धि तथा उत्पादन में सुधार होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कार्बन फार्मिंग की। तो कार्बन फार्मिंग एक ऐसी खेती है जिसमें मिट्टी में कार्बन बढ़ाने के लिए फसल अवशेष जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। इसमें मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता घटती है, पर्यावरण संरक्षण में भी हमें मदद मिलती है। इसके साथ साथ ही हम चलते हैं आगरा मंडी की तरफ और देखते हैं कि आगरा मंडी में आज के हमारे भाव क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनाज की। तो अनाज में गेहूं का भाव लगभग 2500 से 2865 प्रति क्विंटल के बीच में दर्ज किया गया, वहीं धान का भाव 5200 से लेकर 6480 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में दर्ज किया गया। बाजरे का भाव 200 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में रहा। सरसों के भाव की बात की जाए तो अलग अलग मंडियों में लगभग 7710 से लेकर 7800 प्रति क्विंटल के बीच तक रहा। सब्जियों में आलू 500 से लेकर 550 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में, तो वहीं भिंडी 1000 से लेकर 1400 रुपये प्रति क्विंटल, टमाटर 1800 से लेकर 2300 रुपये प्रति क्विंटल, हरी मिर्च 4600 और अदरक 6000 से लेकर 8000 तक दर्ज किया गया। इसी के साथ साथियों हम नज़र डालते हैं आज के मौसम पर। तो भाई, आप जैसे देख रहे हैं कि आगरा में आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिससे आगरा का न्यूनतम तापमान 26 से 17

0: 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में और वहीं अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। वही सुबह के समय आसमान में बादल थे, दिन में कुछ समय के लिए धूप निकली जिससे कि गर्मी बढ़ गई और उमस भी बढ़ गई, लेकिन उसके बाद फिर आसमान में बादल छा गए। शाम के समय भी आसमान में बादल छाए रहेंगे तथा बारिश होने की भी संभावना है। खेतों में काम करने वाले किसान भाई बहन मौसम का ध्यान रखते हुए अपनी कृषि गतिविधियों की योजना बनाएं। आइए साथियों, इसी के साथ लेते हैं छोटा सा अंतराल।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम लोक। मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 6:30 हुए हैं। अब समय है कार्यक्रम मजदूर मंडल का।

कार्यक्रम मजदूर मंडल सुनने वाले सभी श्रमिक भाई बहनों को अंजू बाला का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में। और बताइए साथियों, कैसे हैं आप? हमें पता है कि आप खुश हैं, मस्त हैं, क्योंकि जिसका हम सबको इंतज़ार था वो समय आ चुका है, यानी बारिश की फुहारों ने सभी का तन मन भिगो दिया है। पक्षी भी चहचहा कर इस मौसम का स्वागत कर रहे हैं। और फिर आज तो खास दिन है भाई, आज से सावन का पवित्र माह जो शुरू हो गया है, और साथ ही भक्तों का मन अपने भोले बाबा के दर्शन के लिए बेचैन हो उठा है। इस माह में बहन बेटियों को बाबुल के घर की याद सताने लगती है, और धीरे धीरे वो तैयारी भी करती रहती हैं, क्योंकि बेशक वो ज़्यादा दिन के लिए रहने मायके ना जा सकें, लेकिन रक्षाबंधन के त्यौहार पर तो मायके परिवार से मिलना पक्का है। साथियों, हमारे देश में व्रत त्यौहार पूजा की तरह मनाए जाते हैं। हर त्यौहार में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है, वैसे इसीलिए अपने देश की शान निराली है। अब देखिए ना, पूरे श्रावण मास में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्तों की श्रद्धा, भक्ति और विश्वास देखकर ऐसा लगता है जैसे वो सीधे ईश्वर के संपर्क में हैं और उनसे बात कर सकते हैं। वैसे साथियों, ये सच भी है कि कठिन से कठिन स्थिति में भी हमारे देश के लोग सब्र रखते हैं और अच्छी बुरी दिल की हर बात अपने प्रभु से साझा करते हैं। हमारे देश के मंदिरों की तो क्या कहें, सावन के महीने में दुल्हन की तरह सजे रहते हैं, खास तौर पर भोलेनाथ के मंदिर। और अटूट विश्वास देखिए कि कितनी दूर से पवित्र नदियों का जल ले

कर भोले बाबा पर चढ़ाते हैं हमारे भक्त। कई भक्त आपको इस माह में कांवड़ लेकर जाते आते दिख जाएंगे। ऐसा लगता है हम सभी एक ही हैं। और जब मंदिरों में आरती होती है, फिर देखिए वो घंटों की आवाज, वो तालियों की गूंज, पुष्प वर्षा, अमृत जल वर्षा और साथ में रिम झिम बारिश मिलकर बहुत सुंदर और भक्तिमय माहौल बनाते हैं। साथियों, ये एकता, ये प्रेम, ये श्रद्धा भाव सभी देशवासियों में दिखता है और शान से देश का सर भी ऊंचा हो जाता है। तभी तो हम कहते हैं मेरा देश मेरी शान है। तो साथियों, इस चर्चा को सुनते हुए आप इतने मगन तो नहीं हो गए ना कि भूल ही गए हो कि प्रश्न का आपको एक उत्तर भी देना है। भाई, आज के प्रश्न के अंतर्गत आपको प्रश्न याद है ना, आप कि हमें प्रश्न पूछना होता है, आपको उत्तर देना होता है। चलिए बताइए, आज विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये क्या प्रश्न सुनते ही माथे पर सिलवटें आ गई आपके? ऐसा मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता आपका ऐसा चेहरा। ज़रा मुस्कुराइए और फिर शांत होकर सोचिए। चलिए ये सब बाद में कीजिएगा, पहले हम सब मिलके सावन का स्वागत कर लेते हैं और स्वागत में सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: हाँ तो साथियों, गीत सुनकर झूम उठा ना मन, तो चलिए कार्यक्रम का रुख बदलें और अब करें कुछ अपने अधिकारों की बात। भाई अधिकार हमें आज़ादी भी देते हैं, अपने हक को मांगने की आज़ादी, लेकिन पहले हमें पता भी होना चाहिए कि हमारे अधिकार कौन कौन से हैं, वरना कोई भी हमारा अधिकार हमें नहीं बताएगा और हम जागरूक नहीं रहे तो नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकता है। अब अगर बात करें उपभोक्ता के अधिकारों की, तो बताइए आपको पता है इस बारे में? नहीं पता तो जान लीजिए। भाई हम वार्ता जो सुनवाने वाले हैं आपको, जिसका विषय है उपभोक्ता के अधिकार और संरक्षण, और वार्ताकार हैं मंजू द्विवेदी।
1: उपभोक्ता के अधिकार क्या हैं बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो उपभोक्ता को जागरूक होना सबसे जरूरी है। उपभोक्ता जागरूकता का तात्पर्य उपभोक्ता का अपने अधिकार, कर्तव्यों, जिम्मेदारी के प्रति सचेत होना है। यह एक ऐसी धारणा है जो उपभोक्ताओं को बाजार में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के प्रति सही निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। आज के युग में जहां बाजार में प्रतिस्पर्धा और विज्ञापन का बोलबाला है, उपभोक्ता जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। यह न केवल उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाता है, बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और सेवाओं द्वारा प्राप्त करने में भी मदद करता है। उपभोक्ता जागरूकता का महत्व इस बात में निहित है कि यह उपभोक्ता को अपने अधिकारों जैसे गुणवत्ता, सुरक्षा, सूचना, चयन और शिकायत करने के अधिकार के बारे में जागरूक करता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 संशोधित किया गया 2019 उपभोक्ता को उनके अधिकारों की रक्षा करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। जागरूक उपभोक्ता नकली उत्पादों, अधिक कीमत और असुरक्षित वस्तुओं से बच सकता है। इसके अलावा यह बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, क्योंकि व्यवसायी उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने को प्रेरित होते हैं। जागरूक उपभोक्ता न केवल अपने हितों की रक्षा करता है, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है। यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता को उचित मूल्य और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिले, साथ ही यह पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है, क्योंकि एक जागरूक उपभोक्ता पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ उत्पादों को प्राथमिकता देता है। इसके अलावा उपभोक्ता जागरूकता से सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ती है, क्योंकि लोग अनैतिक व्यापार प्रथाओं जैसे मिलावट, कालाबाजारी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। सबसे आवश्यक है कि हमारा उपभोक्ता जागरूक रहे। उपभोक्ता की अपनी जिम्मेदारी भी होती है। यदि हम जिम्मेदार नहीं होंगे तो हम एक अच्छे उपभोक्ता नहीं बन सकते। यदि दुकानदार आपको गलत सामान देता है, सबसे पहले उसे पक्का बिल संभाल कर रखें। अगर दुकानदार से बातचीत करने पर सामान बदलने के लिए मना करे, पैसे वापस ना दे, आपकी बात ना सुने, तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 या 1800 11400 पर शिकायत कर सकते हैं। मैं फिर दोहराती हूँ, अगर दुकानदार आपके साथ आपका सामान वापस नहीं करता है, आपसे बातचीत नहीं करता है, सामान लौटाने के लिए वो मना करता है, तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 या 1800 11400 पर शिकायत कर सकते हैं। शुरुआती कदम और सबूत रसीद रखें। दुकान से खरीदारी का पक्का बिल कैश मेमो हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि यह आपका सबसे बड़ा सबूत होता है। गलत या खराब सामान की साफ तस्वीरें और वीडियो सुरक्षित रखें। दुकानदार से मिलें, सामान और बिल लेकर तुरंत दुकान पर जाएं और शांत रहकर दुकानदार को बताएं, उसकी गलती बताएं तथा सामान बदलने या रिफंड का अनुरोध करें। यदि दुकानदार मना करे तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, अपने अधिकार का उसे याद दिलाएं। यदि दुकानदार मना करे तो आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत खराब सामान बदलना या रिफंड ना देना दुकानदार की जिम्मेदारी है। आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप शिकायत कर सकते हैं। बिका हुआ माल वापस नहीं होगा का बोर्ड लगाना गैर कानूनी है। अगर आप किसी दुकान पर यह देखते हैं कि वह दुकानदार अपने दुकान पे ये लिख रखा है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, तो आप हेल्पलाइन नंबर 1915 या 1800 11400 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं। बड़ी धोखाधड़ी या समाधान न मिलने पर आप जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कंज्यूमर कोर्ट में बिना वकील के भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप उपभोक्ता होने के नाते आपको कुछ कदम तुरंत उठाने पड़ेंगे, जैसे पक्का बिल सुरक्षित रखें, खरीदारी का बिल या रसीद हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि यह आपके सामान का सबसे मजबूत कानूनी प्रमाण है। दुकानदार से बात करें, बिल दिखाकर शांति से अपनी समस्या बताएं और सही सामान या रिफंड की मांग करें। सबूत संभालें, गलत या खराब सामान की फोटो और वीडियो लें। आपके कुछ कानूनी अधिकार हमारे सरकार ने हमारे संविधान में दिए हुए हैं। अगर दुकानदार का यह कहना है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा तो कानूनन गलत और अवैध है। आप इसकी शिकायत हेल्पलाइन पर कर सकते हैं। यदि दुकानदार सामान बदलने पैसे लौटाने से मना करे तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 पे कॉल करें। आप चाहें तो कंज्यूमर कोर्ट पर ऑनलाइन या जिला उपभोक्ता फोरम पर जाकर अपनी लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ता जागरूकता के रास्ते में कई चुनौतियां हैं, जैसे शिक्षा का अभाव, सूचना का अभाव। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कई उपभोक्ता अपने अधिकारों

0: से अनजान होते हैं और धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा जटिल कानूनी प्रक्रियाएं और समय की कमी भी उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत दर्ज कराने से रोकती है। उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ाने के लिए सरकार, गैर सरकारी संगठन और मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। हर उपभोक्ता को जागरूक होना जरूरी है। स्कूलों और कॉलेजों में उपभोक्ता अधिकारों को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। सरकार द्वारा समय समय पर जागरूकता अभियान जैसे जागो ग्राहक जागो चलाए जाते हैं, जो उपभोक्ता को शिक्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया, टेलीविजन के माध्यम से जागरूकता फैलाना भी प्रभावी है। उपभोक्ता मंच और शिकायत निवारण प्रणाली को और सशक्त करने की आवश्यकता है, ताकि उपभोक्ता आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सके। उपभोक्ता जागरूकता एक सशक्त समाज और अर्थव्यवस्था की नींव है। यह उपभोक्ता को न केवल उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करता है, बल्कि व्यवसायों की नैतिकता और गुणवत्ता के प्रति जवाबदेह बनाता है। शिक्षा, जागरूकता अभियान और प्रभावी कानूनी ढांचा के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देना आज की आवश्यकता है। प्रत्येक उपभोक्ता को जागरूक और सतर्क रहना न केवल अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए, बल्कि एक बेहतर निष्पक्ष बाजार व्यवस्था में योगदान देना चाहिए।
1: हाँ तो साथियों, मंजू द्विवेदी ने कितनी सारी जानकारी दी आपको, और उपभोक्ता के अधिकार और संरक्षण विषय पर ये जानकारी सभी को होनी ही चाहिए। आखिर सभी उपभोक्ता हैं और ये हम सबका अधिकार है श्रमिक साथियों, कि हम अपने साथ हो रही किसी भी गलत बात के खिलाफ आवाज उठाएं। आखिर आपका जीवन बहुमूल्य है। किसी चीज का इस्तेमाल करके अगर आपके स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव हुआ तो इसीलिए आप सबको जागरूक रहना चाहिए। लापरवाही, जल्दबाजी या बात छुपाने से आपके दिल पर गहरी चोट भी लग सकती है। साथियों, अपने लाभ के लिए दुनिया में दूसरों को भटकाने वाले कम नहीं हैं, इसीलिए आपको सचेत रहना चाहिए। आपने अक्सर देखा सुना होगा कि किसी के परिवार का कोई व्यक्ति न जाने कहाँ चला गया, कुछ पता ही नहीं, घर में कुछ बात नहीं हुई पर गायब है। तमाम गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई जाती है। किसी को कोई अपना मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? कभी कभी ये विचार भी परेशान करता है, खास तौर पर तब जब किसी के अपने परिवार या नज़दीकी मिलने वालों के साथ ये घटना हो जाए। साथियों, आज इस बारे में बात हो रही है तो मुझे भी अपनी रिश्तेदारी के एक परिवार के छोटे बेटे के साथ हुई घटना याद आ रही है। और पता है साथियों, इस घटना के बारे में पता चलने के बाद से ही पूरा परिवार, रिश्तेदार, मिलने वाले सभी अलर्ट हो गए थे, और घर की महिलाएं खास तौर पर अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखने लगी थीं। हुआ यूं कि वो बच्चा कहीं जा रहा था या शायद अकेले सुनसान रास्ता था, और दो लोगों ने उसे पकड़कर बोरी में बंद कर लिया और एक एक साइड से बोरी पकड़कर चल दिए। बच्चे ने समझदारी दिखाई और बोरी को दांतों से धीरे धीरे काटा और उसमें से आंखों से रास्ता देख लिया, और जैसे ही उसे लोग दिखाई दिए तो हल्ला मचा दिया, तो लोगों ने उसे बचा लिया। वो लोग भाग खड़े हुए जो उसे बोरी में डालकर ले जा रहे थे। चलिए, ये बच्चा तो बच गया, लेकिन ऐसी घटना किसी के बच्चे के साथ भी हो सकती है। कभी कभी तो लगता है कि आखिर ये कैसे लोग होते हैं? किसी के प्रति कोई हमदर्दी होती भी है क्या इनके मन में? कैसे इतने बेदर्द हो जाते हैं ये लोग? साथियों, इस तरह से बच्चों, महिलाओं और अन्य लोगों को गुमराह करके अपने लाभ के लिए उनका इस्तेमाल करना मानव तस्करी के अंतर्गत आता है। और यही आपके प्रश्न का उत्तर भी है कि आज का दिन मानव तस्करी के खिलाफ मनाया जाता है। पूरे विश्व के देश इसमें इसके खिलाफ एकजुट हैं, फिर भी नए नए तरीकों से

मानव तस्करी होती रहती है। इस मामले में जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। और ये भी ज़रूरी है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो आप अपने

0: किया जाएगा ताकि जो संचारी रोग हैं डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया उनकी रोकथाम की जा सके और प्रभावित जो इलाके हैं उनमें डोर टू डोर सर्वे होगा ताकि लार्वा नष्ट किया जा सके। इसको एक अभियान की तरह से चलाया जा रहा है। और साथियों ये भी हम बता दें कि 31 तारीख तक अगर आप संपत्ति कर जमा करते हैं तो आपको विशेष छूट मिलेगी। प्रदेश सरकार ने 15 अगस्त से नए नगर निगम के गृह कर संपत्ति कर जल कर और सीवर कर के बकाया को जमा करने के लिए एक मुश्त समाधान योजना की घोषणा की है। और साथियों अब एक छोटा सा अंतराल।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: और साथियों, अब आपको हम एक सेहत टिप्स देते हैं, वो ये कि इन दिनों में अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, जैसे अदरक, तुलसी और नींबू। और अब चलते चलते सुनिए एक मधुर गीत।

0: किया जाएगा ताकि जो संचारी रोग हैं डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया उनकी रोकथाम की जा सके और प्रभावित जो इलाके हैं उनमें डोर टू डोर सर्वे होगा ताकि लार्वा नष्ट किया जा सके। इसको एक अभियान की तरह से चलाया जा रहा है। और साथियों ये भी हम बता दें कि 31 तारीख तक अगर आप संपत्ति कर जमा करते हैं तो आपको विशेष छूट मिलेगी। प्रदेश सरकार ने 15 अगस्त से नए नगर निगम के गृह कर संपत्ति कर जल कर और सीवर कर के बकाया को जमा करने के लिए एक मुश्त समाधान योजना की घोषणा की है। और साथियों अब एक छोटा सा अंतराल।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: और साथियों, अब आपको हम एक सेहत टिप्स देते हैं, वो ये कि इन दिनों में अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, जैसे अदरक, तुलसी और नींबू। और अब चलते चलते सुनिए एक मधुर गीत।

0: संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा जारी है। लोकसभा ने ये विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये विधेयक देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और उन पर विचार करूँगा।
2: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्य की सहायता करना जारी रखेगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने बताया कि वायुसेना, SIDM, उद्योग और स्टार्टअप समुदाय 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमी

0: कंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि ये वर्ष भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। शाम 5 बजे तक बांकीपुर और मंजलपुर में लगभग 34% और दतिया में 69% से अधिक मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयंबटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयंबटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। फिदाइन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकवादियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने आज राष्ट्रमंडल खेलों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Parliament has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026, with the Lok Sabha approving it today. The Rajya Sabha passed the legislation yesterday. The law will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jana Gana Mana and make the insult to the national song a criminal offence. These offences are punishable with imprisonment of up to 3 years, a fine or both. In the Rajya Sabha, discussion is underway on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. Moving the bill in the House, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, said that this bill is a reaffirmation of the government's highest commitment to safeguard the welfare of the students and youth of this country.
2: Prime Minister Modi ji lost no time to declare that nobody will be allowed to jeopardize the future of our children. And hence this legislation, which seeks to make amendments in 2024 Act in order to make it more stringent, more deterrent, is being brought in. If there are any suggestions for improvement, I'll be taking note of it. This bill is a reaffirmation of the government's highest commitment to safeguard the welfare of the students and youth of this country.
1: Initiating the discussion, Leader of the Opposition Mallikarjun Kharge said the government has made only cosmetic changes in the new bill and the proposed amendments will not be effective to curb malpractices in the public examinations. The bill has been already passed by the Lok Sabha. Delhi government has said that Delhi police will not take any legal adverse action against individuals who participated in the NEET UG protest demonstrations in the national capital, but those with criminal background will have to face action. The Home Department said that with regard to arrests or detentions, if already made in these cases, the process for reviewing the arrests and releasing the arrested persons will be undertaken expeditiously. The Department of Telecommunications and the Government of Madhya Pradesh today signed a Memorandum of Understanding in New Delhi for the establishment of India's first telecom manufacturing zone, Phase 1, at Gwalior, Madhya Pradesh. The initiative seeks to create a world-class manufacturing ecosystem for telecom equipment and allied technologies. The MOU will boost homegrown telecom manufacturing, attract investments, create jobs, and strengthen India's journey towards Atmanirbhar Bharat. Prime Minister Narendra Modi today met with the members of Parliament from Arunachal Pradesh and Nagaland at the Parliament House and discussed the prevailing flood situation in both the states. In a social media post, the Prime Minister said the

0: central government will keep working with the respective state governments to address the challenges. He also prayed for everyone's well-being and safety. Protests continued in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK today, following brutal crackdown by Pakistani forces during peaceful demonstrations on Monday, leading to the death of over 40 people. Social media accounts linked to the Jammu-Kashmir Joint Awami Action Committee accused the security forces of using lethal force against protesters. The Joint Awami Action Committee has appealed to the United Nations, international human rights organizations and democratic governments to intervene, alleging the use of live ammunition and excessive force against peaceful protesters by Pakistani security forces. In Taipei Open Badminton, Unnati Huda, Devika Sihag, Tanvi Sharma and Kiran George have progressed to the singles quarterfinals. Unnati Huda defeated Tanya Hemanth in an all-Indian tie. Tanvi Sharma defeated Indonesia's Thalita Wirjawan to reach the last eight. Devika Sihag made it three Indians in the women's singles quarters, beating Indonesia's Nikadek Tinda Pratiwi. In men's singles, Kiran George won the other all-Indian clash of the day against Tarun Manipalli. Neeraj Chopra has qualified for men's javelin finals in Commonwealth Games at Glasgow. Javelin throwers Rohit Yadav and Yashveer Singh have also entered the finals. Neeraj finished fifth, Rohit Yadav 9th and Yashveer Singh 10th in the qualification round. And that is the end of this news bulletin.
1: Medium wave 196.1 meter arthat 1530 kilohertz aur news on air mobile app par aakashvani ka agra kendra hai. Hamare studio ki ghadi mein samay hua hai 7:10. Ab samay hai karyakram vividha ka. आज के कार्यक्रम में डॉक्टर रेखा पत्सरिया हमें बताएंगी कि अंग्रेजियत का बढ़ता मोहपाश क्यों है।
2: लगभग हजार साल का भारतीय इतिहास आक्रांताओं, लूट खसोट, जनधन हानि, संस्कृति, भाषा, सभ्यता के साथ खिलवाड़ का इतिहास रहा है। प्रत्येक विदेशी चीज को, चाहे वो भाषा हो, भोजन हो, वेशभूषा हो या जीवन मूल्य हो, उपयोगिता की दृष्टि से आत्मसात करने की भारतीय सांस्कृतिक विशेषता ने जहां कई मायनों में अपना भला किया, वहीं उसकी इस विशेषता ने परोक्ष रूप से कुछ अहित भी किया है। नष्ट भ्रष्ट परिवर्तित संशोधित होती हुई भारतीय संस्कृति का मूल रूप कहीं खो गया। आज की पीढ़ी को हम केवल अपनी संस्कृति की कहानियां भर सुनाते हैं। इस नए युग में एक अंश में भी वो भारत विरासत में नई पीढ़ी को हम नहीं सौंप पाए, जिसे देखकर ये बात स्मरण हो आती है, अरुण ये मदने देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। इस त्रिशंकु को संस्कृति में जब नई चकाचौंध भरी लुभावनी दुनिया हमारे सामने है, तो नई पीढ़ी बाहें फैलाकर उसका स्वागत कर रही है। आजादी के बाद विकास के नए सोपान पार कर भारत ने एक नई समाज संरचना, आर्थिक उत्पादन और जीवन पद्धति के नए आधार, नए आदर्श पनपने लगे और एक नई भौतिकवादी संस्कृति का जन्म भारत में हुआ और इस रूप में एक नया भारत आज हमारे सामने है। शिक्षा की नवीन सोपान, ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार, संचार माध्यमों का जीवन में बढ़ता प्रभाव, औद्योगिकरण के बढ़ते कदम, विश्व को एक धरातल पर लाने का प्रयास, सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा छोटा होता संसार, खुली बाजार नीति, नई अर्थव्यवस्था आदि सब ने मिलकर इस नए भारत का उदय किया है। और ऐसे में आजादी के साथ ही पनपी अंग्रेजी जमात ने चारों तरफ खूब खुलकर अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति और अंग्रेजों के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं ने तो बहुत पहले से ही पूरब की हवाओं में पश्चिम की सुगंध खोलना प्रारंभ कर दिया था। और पता भी नहीं चल पाया था

0: कि कब माता पिता वाली संस्कृति मम्मी पापा और फिर मॉम डैड वाली संस्कृति के समक्ष झुक गई थी, कब धोती कुर्ती की जगह पैंट कमीज ने ले ली, कब सिर की टोपी कंधे का शॉल हैट और टाई में बदल गया, कब पट्टे पर भोजन करने की परंपरा डाइनिंग टेबल के चारों ओर सिमट कर रह गई। आज के परिदृश्य में चारों तरफ नई चकाचौंध है, शिक्षा का सूर्य है, विकास के नए क्षितिज हैं, सुविधाओं से भरा नया संसार है, जीने के नए अंदाज हैं, सोचने के नए तरीके हैं, तीसरी दुनिया की रफ्तार से कदम मिलाने की होड़ है, उनके मध्य अपने को स्थापित करने की ललक है। फिर बात चाहे भाषा की हो, खान पान की हो, वेशभूषा की हो या हो जीवन शैली की, सब कुछ नए रूप में है। आज सौंदर्य के नए मानदंड हैं, सफलता के नए मानक हैं, संतुष्टि के अनोखे आधार हैं, संबंधों की नई परिभाषाएं हैं। हमारी संवेदनाएं थैंक यू और सॉरी जैसे दो शब्दों में सिमट कर रह गई हैं। बच्चों के नामों से लेकर आज हर स्कूल, दुकान, व्यवसाय और यहाँ तक कि हर देशी उत्पाद का नाम अंग्रेजी हो गया है। विडंबना यह है कि हमारे राजनीतिक दल, हमारी सरकारें भी इंडिया शाइनिंग और रियल फील गुड और फील गुड जैसे नारे देकर भारत को इंडिया बनाने पर तुली हुई है। खुले विश्व बाजार के रहते विदेशी कपड़े, विदेशी उत्पाद, विदेशी भोजन हमारे भारतीय बाजारों की रौनक बढ़ा रहे हैं। अंग्रेजी सिनेमा, हिंदी सिनेमा घरों में भीड़ बटोर रहे हैं। सिर से लेकर पैर तक कपड़ों के स्टाइल में विदेशी ब्रांड छाया हुआ है। पॉप म्यूजिक के प्रवेश के साथ पाश्चात्य प्रभाव ने हमारे संगीत नृत्य की पारंपरिक विरासत को भी विकृत कर दिया है। हर गांव में पाठशाला हो या ना हो, स्वास्थ्य केंद्र हो या ना हो, पर शराब की दुकानें हर गांव की शोभा बनी हुई हैं। हर गली, हर मोहल्ले में सौंदर्य प्रतियोगिताएं हो रही हैं। हर गली में कोई ना कोई लड़की मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बनने का ख्वाब देख रही है। सच्चाई ये है कि अंग्रेजी आज हमारे लिए फैशन है और फैशन का आधार आत्म प्रदर्शन है। आत्म प्रदर्शन अर्थात जो हम नहीं है, जैसे हम नहीं है वैसा बनना, जो हमारे पास नहीं है उसे अपनाना, यही हमारे आज की नई पीढ़ी की मानसिकता है। और जहां तक मैं सोचती हूं, इस मानसिकता में एक बदलाव की जरूरत है। कुल मिलाकर आज का हमारा समाज एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रीय गौरव का निरंतर क्षय हो रहा है, लक्ष्य भटक गया है। एक ऐसी कड़ी की कमी है जो सबको बांधे रख सके। उन्मुक्तता, स्वच्छंदता ने आज की पीढ़ी को जकड़ रखा है। आज का वातावरण दिग्भ्रांत है। एक तरफ मंदिरों में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और दूसरी तरफ डिस्कोथेक, बियर बारों में बढ़ती भीड़, यह है आज का भारत। आज के इस भारत को देखकर यही कहा जा सकता है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी।
1: अभी आपने सुनी कार्यक्रम विविधा में वार्ता, विषय था अंग्रेजियत का बढ़ता मोहपाश और वार्ताकार थी डॉक्टर रेखा पत्सरिया।

0: एक करोड़ से अधिक युवाओं से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गाजीपुर में 692 करोड़ रुपए की 268 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब यहाँ मेडिकल कॉलेज है, गाजीपुर से अन्य शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, गाजीपुर के स्पिरिचुअल टूरिज्म से जुड़े स्थानों का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में पीएम स्टार्टअप, पीएम स्टैंडअप, डिजिटल भारत, मिशन रोजगार के तहत लाखों नौजवानों को नौकरी मिल रही है। यूपी में पिछले 9 साल में 9 लाख से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी मिली है। उन्होंने गाजीपुर के लोगों से विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश व विकसित गाजीपुर के सारथी बनने का आह्वान किया।
1: आज के इस अवसर पर जब 692 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का उपहार जनपद गाजीपुर को प्राप्त हो रहा है, इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर के विकास की इस प्रक्रिया के सारथी बने, नए भारत में नए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के सारथी बने, विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गाजीपुर के निर्माण की दिशा में हम सभी मिलकर के कार्य करें।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यूपी रेरा बायर्स यानी घर खरीदने वाले ग्राहकों की सहूलियत और उन्हें सही जानकारी मुहैया कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा और जल्द ही रेरा की एक नई वेबसाइट लॉन्च होगी जिसमें प्रोजेक्ट की जानकारी और शिकायतों को दर्ज कराना आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि प्रदेश में लखनऊ जिला रियल एस्टेट के क्षेत्र में पहली पसंद बन गया है, जहां पिछले 6 महीनों में 37 नए प्रोजेक्ट आए हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर में 27 और गाजियाबाद में 19 नई रियल एस्टेट परियोजनाएं पंजीकृत हुई हैं। उन्होंने कहा कि रेरा ने अब तक 8000 से अधिक विवाद के मामलों में 2173 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खरीदारों को वापस दिलवाई है। इसके साथ ही रेरा संवाद के जरिए 5000 से ज्यादा शिकायतों का भी समाधान किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। श्रावण मास के पहले दिन आज प्रदेश के शिवालयों में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन शुरू कर दिया। राजधानी लखनऊ के मनकामेश्वर सहित प्रमुख मंदिरों में भक्तों ने भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर प्रदेश और देशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की सुरक्षा सुविधा और सुगम दर्शन की व्यवस्था को पूरे श्रावण मास में प्रभावी और निर्बाध रूप से बनाए रखे जाने का निर्देश दिया। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन का सिलसिला भोर से ही शुरू हो गया। मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: सावन मास के प्रथम दिन श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। धाम में आने वाले भक्तों का पुष्प वर्षा और रेड कारपेट के साथ स्वागत किया जा रहा है। इस बार पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20 लाख अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन की विशेष व्यवस्थाएं जारी हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ प्रबंधन के लिए धाम में 6 स्थानों पर जिग जैग बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा गौरी केदारेश्वर, तिलभांडेश्वर, महामृत

0: मृत्युंजय तथा बीएचयू स्थित विश्वनाथ मंदिर सहित प्रमुख शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पूरे सावन माह में दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन की विशेष व्यवस्थाएं लगातार जारी हैं। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
1: श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रदेश सरकार ने व्यापक कदम उठाए हैं। इसी क्रम में व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल और डीजीपी राजीव कृष्ण ने आज बरेली में बरेली व मुरादाबाद मंडल के जिला अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में पुलिस महानिदेशक ने बताया कि इस बैठक में सुरक्षा, ट्रैफिक, महिला सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
2: न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आयोजन होता है, इसमें करोड़ों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके पूरे व्यवस्थापन के लिए, आम जनता के कोई दिक्कत ना हो उसके लिए और एक सुव्यवस्थित ढंग से ये पूरी यात्रा संपन्न हो, इस विषय में चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा और मेरे द्वारा यहाँ पर गोष्ठी की गई है। इसमें सभी बिंदुओं पर, जो अवस्थापना के बिंदु हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिंदु हैं, डिप्लॉयमेंट के बिंदु हैं, उन विषयों पर चर्चा हुई।
1: मुख्य सचिव ने कहा कि सभी एजेंसियां आपसी तालमेल के साथ काम कर रही हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 किया पारित। वंदे मातरम को राष्ट्रगान, जनगण मन के समान वैधानिक संरक्षण का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत युवाओं से 2 अगस्त को करेंगे संवाद। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ऑनलाइन बैठक में की तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर को दी 692 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, प्रदेश में पिछले 9 साल में 9 लाख से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी तरीके से मिली सरकारी नौकरी। और श्रावण मास के पहले दिन आज प्रदेश के शिवालयों में उमड़े भक्त। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: APJ अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।
4: हम आकाशवाणी
5: मीडियम वीवी 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी की आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। समय हुआ है 7:31। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश।

दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे अध्याय की ओर जिसकी गूंज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं आजाद हिंद फौज की, और मैं हूं आज की शाम का होस्ट यानी मेजबान अली। दोस्तों, आजाद हिंद फौज जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नए जोश, नई दिशा और नए विश्वास के साथ खड़ा किया। 1940 का दशक जब भारत अंग्रेजों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जोर पकड़ चुके थे। परंतु कुछ क्रांतिकारी देशभक्तों का मानना था कि केवल अहिंसा से आजादी नहीं मिलेगी। उनकी सोच थी स्वतंत्रता कोई भीख नहीं बल्कि युद्ध से प्राप्त होने वाला अधिकार है। यही सोच लेकर सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने का बीड़ा उठाया।

दोस्तों तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सिर्फ एक नारा नहीं था बल्कि एक जुनून था जो लाखों भारतीयों के दिलों में आग की तरह फैल गया। आजाद हिंद फौज की नींव सबसे पहले भारत के गन्य वीर सपूत कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में जापान के सहयोग से रखी थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने सिंगापुर में हजारों भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया, तब इन बंदियों में से ही आजाद हिंद फौज बनाई गई। लेकिन इसका असली पुनर्गठन

नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में किया जब वो जर्मनी से जापान के रास्ते सिंगापुर पहुंचे। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। भारत की एक अस्थायी सरकार और खुद इसके प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। यह सरकार भारत से बाहर लेकिन भारत की स्वतंत्रता के लिए बनी पहली निर्वाचित सरकार थी, जिसे जर्मनी, जापान, इटली समेत कई देशों ने मान्यता दी। आजाद हिंद फौज की एक विशेष बात थी रानी झांसी रेजिमेंट। जी हां, यह महिलाओं की सैन्य टुकड़ी थी जिसकी कमान संभाली कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने। यह पहली बार था जब महिलाओं ने सेना में हथियार उठाकर युद्ध भूमि में उतरने का साहसिक निर्णय लिया।

दोस्तों फौज में कुल तीन ब्रिगेड थी, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। इन ब्रिगेडों के सैनिक भारत की आज़ादी के लिए लड़ने को हर वक्त तैयार रहते। इस फौज के सैनिकों का प्रशिक्षण कठोर था, लेकिन उनके दिलों में भारत माता के लिए अटूट प्रेम था। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना। नेताजी की अगुवाई में आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ मिलकर भारत के पूर्वोत्तर भाग मणिपुर और नागालैंड में घुसपैठ की। उन्होंने 1944 में इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई ऐतिहासिक थी, क्योंकि पहली बार विदेशी भूमि से कोई भारतीय सेना भारत की आजादी के लिए लड़ने आई थी। हालांकि ये लड़ाई हार में बदली, परंतु आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। ब्रिटिश सरकार को एहसास हो गया कि अब भारतीय सैनिक भी उनके खिलाफ हथियार उठा सकते हैं।

अगस्त 1945 में युद्ध समाप्त हुआ, जापान ने आत्मसमर्पण किया और नेताजी के लापता होने की दुखद खबर आई। कई सैनिक बंदी बनाए गए, अंग्रेजों ने इन पर मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। दिल्ली के लाल किले में सहगल, ढिल्लन और शाहनवाज जैसे तीन अफसरों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। लेकिन पूरे भारत में इस फैसले के खिलाफ गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। हिंदू, मुस्लिम, सिख एकजुट होकर आजाद हिंद फौज के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। इस एकता ने अंग्रेजों को डरा दिया, नेताजी अमर रहे, हम आजाद हिंद फौज के साथ हैं, ये नारे जन जन की जुबान पर चढ़ गए। यह आंदोलन इतना व्यापक था कि अंग्रेजों को मुकदमा वापस लेना पड़ा। इसने यह साफ कर दिया कि भारत अब एकजुट हो चुका है और आजादी बहुत दूर नहीं। आजाद हिंद फौज भले ही सैन्य रूप से जीत न सकी, लेकिन इसने भारतीय जनमानस, ब्रिटिश हुकूमत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर जो प्रभाव डाला वो अमूल्य था। नेताजी का सपना था पूर्ण स्वराज्य, और उनकी रणनीति ने अंग्रेजों को यह दिखा दिया कि भारतीय अब किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी मातृभूमि के लिए। आजादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन इसमें आजाद हिंद फौज के बलिदानों की तपिश भी शामिल थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके रणबांकुरों को हम आज भी श्रद्धा से याद करते हैं। आइए हम आजाद हिंद फौज के वीर सैनिकों को नमन करें और उनके बलिदान को कभी न भूलें।

अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। एक 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। रात्रि के 8 बजने को हैं। आइए अब सुनते हैं संसद में हुई आज की कार्यवाही पर आधारित संसद समीक्षा।

पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान अपराध माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। राष्ट्रगान जनगण मन के साथ ही उसी सम्मान के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य बनाने वाले राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को डीएमके समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी गई। इससे पहले उच्च सदन ने कल विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रगीत को वही सम्मान मिलेगा जो राष्ट्रगान को मिलता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने डीएमके सांसदों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य किसी व्यक्ति और किसी विचारधारा के विरुद्ध नहीं है। इससे पहले डीएमके सांसदों ने सदन में विधेयक पारित किए जाने का विरोध किया। विधेयक पर निचले सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा में भाग लेते हुए डीएमके सांसद के कणिमोई ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और आरोप लगाया कि सरकार इसके साथ हिंदुत्व के एजेंडे को राष्ट्रीयता के रूप में पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों के विरुद्ध है, इस तरह राष्ट्रवाद नहीं थोपा जा सकता। कणिमोई ने विधेयक को संघीय ढांचे के विरुद्ध बताते हुए ये भी कहा कि विभिन्न मुद्दों पर सदन में हंगामे के बीच विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे राज्यों के हितों की और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया। डीएमके सदस्य ने कहा कि तमिलनाडु और अन्य राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ने कहा कि साधारण विधेयक नहीं है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो राष्ट्र को नहीं समझते वे यहाँ शोर मचा रहे हैं। श्री पात्रा ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में संविधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि जन गण मन और वंदे मातरम दोनों एक ही रूप से गाए जाएंगे और दोनों को एक ही सम्मान मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 76 वर्ष में कांग्रेस की सरकारों ने एक परिवार को ऊपर रखा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को नहीं। डीएमके के ए राजा ने विधेयक पर अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुए कहा कि आज देश और संसद के लिए बहुत खतरनाक दिन है, ये विधेयक मजाक की तरह है। सदन ने उनके संशोधन को खारिज कर दिया और डीएमके समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके बाद सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस विधेयक के अंतर्गत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या किसी सभा में इसके गायन में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। इसमें बताया गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम को जन गण मन के समान ही सम्मान और बराबर का दर्जा दिया जाएगा। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों सजा के प्रावधान हैं। लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार

स्थगित की गई। सवेरे 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल लगातार 8वें दिन नहीं चल सका और कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्हें बधाई दी। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांगें उठाने लगे। कांग्रेस सदस्यों को कल सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान पैदा हुई गतिरोध की स्थिति का मुद्दा उठाते देखा गया। वो दिल्ली में पिछले सप्ताह प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की भी मांग दोहराते सुने गए। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल बाधित नहीं करने का अपना आग्रह दोहराया। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इस बीच विपक्षी सदस्य आसन के बीच करीब आ गए। उनके हाथ में तख्तियां थीं और वे अमित शाह जवाब दो के नारे लगा रहे थे। पीठासीन सभापति ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटने का अनुरोध किया, लेकिन हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके हैं। और अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लिखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग के आरोपों को लेकर सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग सभापति द्वारा अस्वीकार किए जाने पर विरोध जताते हुए बहिर्गमन किया। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद विपक्षी सदस्यों ने 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के संबंध में गृह मंत्री से सदन में आकर स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि संविधान मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति जवाबदेह बनाता है। उन्होंने कहा कि जब छात्रों पर लाठीचार्ज की गई और गोली चलाई गई, तब ये स्वाभाविक मांग है कि गृह मंत्री सदन में आएं और इस पर बयान दें। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने व्यवस्था का प्रश्न खारिज कर दिया और शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों से कहा। विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग नहीं माने जाने पर सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। उन्होंने विपक्ष के आचरण को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उसकी निंदा की। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन में नियत कामकाज जारी रहा और सदस्यों ने शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र नागर ने वन नेशन वन डिजिटल मेट्रो कार्ड की मांग दोहराते हुए कहा कि इससे यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो यात्रियों के लिए हर शहर अपने यहाँ नया मेट्रो कार्ड जारी करता है। ये प्लास्टिक के कार्ड होते हैं और एक शहर का कार्ड दूसरे शहर में नहीं चलता। नागर ने कहा कि इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा, क्योंकि मेट्रो कार्ड में चिप और एंटीना लगा होने की वजह से इसकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाती और इससे कार्बन भी उत्पन्न होता है। डिजिटल मेट्रो कार्ड जारी होने पर यह समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल मेट्रो कार्ड मोबाइल फोन से संबद्ध होगा, अतः इसके गुम होने से पूरी बैलेंस राशि का नुकसान नहीं होगा। अभी मेट्रो कार्ड गुम होने से उसकी पूरी बैलेंस राशि भी चली जाती है। कार्ड ब्लॉक भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी सुविधा नहीं है। डिजिटल कार्ड होने पर यह समस्या नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के देवरिया में बैतालपुर चीनी मिल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मिल करीब 20 साल से बंद पड़ी है, जिससे वहां के लोगों को रोजगार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 1,200 करोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 1,200 करोड़ रुपए बकाया है और वो इस राशि का इंतजार कर रहे हैं। शून्यकाल में ही घनश्याम तिवाड़ी, प्रकाश चिक बराइक, कणाद पुरकायस्थ, गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया, रेखा शर्मा, दोरजी छिरिंग लेपचा, बाबूराव निषाद, संजय भाटिया, डॉक्टर के लक्ष्मण, जोगेन मोहन, संगीता यादव, डीएमके के सदस्य एलके सुधीश, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बीजू जनता

0: दल के सुभाषीष खुंटिया ने भी आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजन अवकाश के बाद उच्च सदन में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक रोधी कानून में प्रस्तावित संशोधन इस बात का प्रमाण है कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रही है और किसी को भी देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ ये संशोधन लेकर आई है और सभी पक्षों से मिलने वाले रचनात्मक सुझावों का स्वागत करती है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रश्न पत्र लीक मामलों को रोकने के लिए सरकार के विधेयक के भविष्य में कारगर होने पर आशंका जताते हुए एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ज्यादतियों की न्यायिक जाँच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विधेयक में कड़े प्रावधान किए हैं किंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फर्क इससे पड़ेगा कि आप परीक्षाएं कैसे कराते हैं और प्रश्न पत्र लीक होने से कैसे रोक पाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से सवाल किया कि वो इस समय जो काम कर रही है उसने 2 साल पहले मूल कानून बनाते समय इस काम को क्यों नहीं किया। विधेयक के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के ब्रजलाल ने कहा कि विधेयक ये प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष SIT का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को केवल 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित आंदोलन अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। उन्होंने उल्लेख किया कि विशेष सरकारी वकील नियुक्त किए जाएंगे जो केवल इस प्रकार के मुकदमे की पैरवी करेंगे और अपील सीधे उच्च न्यायालय की खंडपीठ में की जाएगी तथा उस अपील पर 3 महीने के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के संजय झा ने कहा कि किसी भी देश के विकास में वहां की शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख योगदान होता है। उन्होंने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह बढ़ रहा है उसका एक मुख्य कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव हुआ है और शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ी है तथा शिक्षा की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या कहीं न कहीं छात्रों को परेशान करती रही है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि नए विधेयक में दंड को कठोर किया गया है और सुनवाई के लिए विशेष त्वरित अदालतों के गठन का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि दंड बढ़ाने से अपराध कम नहीं होता। पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास हुआ करती थी और तब इस तरह के प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। आज पेपर ही 13 भाषा में होते हैं। उन्होंने सलाह दी कि पहले की तरह ही नीट को खत्म कर मेडिकल परीक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को सौंप दी जानी चाहिए जब 15% सीट केंद्र के अधिकार में होती थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पिछले कुछ दिन में प्रश्न पत्र लीक मामले और उसके बाद हुए घटनाक्रम से केवल छात्र ही परेशान नहीं हुए बल्कि सरकार को भी पीड़ा हुई है और लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 इसी पीड़ा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाना ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सरकार ने कहा था कि नीट का पेपर लीक होने से 22,80,000 बच्चे प्रभावित हुए हैं लेकिन जब दोबारा नीट का पेपर हुआ तो 20 लाख बच्चे इसमें बैठे, 2,80,000 बच्चों ने ये परीक्षा नहीं दी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों में बेहिसाब मामले लंबित हैं, ये अदालतें कैसे जल्दी सुनवाई कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कई की इमारत खस्ता हाल है और कई स्कूल बंद हो चुके हैं। शिक्षा पर आखिर सरकार कितना खर्च करती है। उन्होंने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि इसका आदेश किसने और क्यों दिया। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि भाजपा की एक सांसद ने जैन जी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उन्हें गटर कहा है, उन पर सत्ता पक्ष रोक लगाए अन्यथा यही जैन जी आपको सबक सिखाएगी। चर्चा में राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, BRS के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जान ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी और शिवसेना के मिलिंद देवड़ा ने भी हिस्सा लिया। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अभी आप संसद में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग।

0: This is Akashvani. A review of today's Parliament proceedings read by Saira Mujtaba. First from the Lok Sabha. Writer is Achinta Bora of PTI. Parliament today passed a bill to make insult to national song Vande Mataram a punishable offence, with the Lok Sabha clearing the legislation amid opposition din. The government asserted that the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026 will grant status to with national anthem Jan Gan Man. The bill seeks to make insult to Vande Mataram a criminal offence. Responding to a brief debate in the lower house, in which only two members participated, Minister of State for Home Nityanand Rai said, "The government is giving the national song its due respect which it deserves for
1: अभी आपने सुनी संसद समीक्षा मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी आगरा से बोल रहे हैं। 8:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं एक शब्द पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शब्द गीत, जहां हम चुनते हैं एक ऐसा शब्द जो आपके दिल को छू जाए, आपके जहन में कुछ ही यादें ताजा कर दे, और फिर उसी शब्द से जुड़ी एक फिल्मी धुन सुनाते हैं आपको जो उस एहसास को और भी गहरा बना देती है। जी हाँ, और आज का हमारा शब्द है चूड़ी। हाँ दोस्तों, वही चूड़ी जो कभी किसी दुल्हन की हथेली पर सजी होती है तो कभी किसी बिटिया की खनकती हंसी के साथ झनकती है। दोस्तों, चूड़ी सिर्फ एक गहना नहीं, एक एहसास है। भारतीय संस्कृति में चूड़ियां सौंदर्य, स्नेह, सुहाग और स्त्रीत्व की निशानी भी है। क्या कभी आपने गौर किया है, जब कोई नवविवाहिता पहली बार ससुराल जाती है तो उसकी चूड़ियों की खनक पूरे घर को जीवंत कर देती है। चूड़ी का इस संगीत प्रेम और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक बन जाता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में चूड़ियों का अपना महत्व है। पंजाब में कांच की चूड़ियां, राजस्थान में हाथी दांत की चूड़ियां, महाराष्ट्र में हरी चूड़ियां सौभाग्य की निशानी है, तो बंगाल में शंख पोला की चूड़ियां पवित्रता की। लेकिन चूड़ियों की खनक केवल शादी ब्याह तक सीमित नहीं है। कभी किसी बिछो की पीड़ा में ये खनक मौन हो जाती है। कितनी ही फिल्मों में चूड़ियों की चढ़चढ़ाहट ने प्रेम, विरह और बलिदान की कहानियां बयान की हैं। और इसी भाव के साथ आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक ऐसा गीत जो चूड़ी शब्द को बहुत ही खूबसूरती से एक प्रेमिका की मासूम ख्वाहिश में ढाल देता है।

दोस्तों, चूड़ी शब्द में वो मिठास है जो किसी पायल की झंकार में नहीं, किसी हार की चमक में नहीं। चूड़ी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होते हुए भी हर स्त्री के भावनात्मक संसार की सबसे आत्मीय चीज है। बचपन में हर लड़की ने मां की चूड़ियां पहनी होंगी चुपचाप, और फिर पकड़े जाने पर हंसते हंसते भागी भी होगी। याद है ना आपको? और कितनी ही बार फिल्मों में चूड़ियों को लेकर रोमांटिक छेड़छाड़ भी होती रही है। चूड़ी मजा ना देगी, कंगन मजा ना देगा, इस मासूम सी पंक्ति में कितना गहरा प्रेम छिपा है ना दोस्तों? चूड़ी यह प्रेम का प्रतीक है, वो बंधन जिसमें सजन अपनी सखी को सजाता है और उसे अपनाता है।

अभी आपने सुना एक शब्द पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शब्द गीत। मीडियम वेव 106.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी आगरा है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हुए हैं। आइए आनंद लेते हैं चित्रपट संगीत का और सुनते हैं पहला गीत।

ये गीत हमने लिया था फिल्म यस बॉस से, जिसे लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत दिया था जतिन ललित ने और आवाज थी अभिजीत की। अगली प्रस्तुति है फिल्म गुलाम से, रचना समीर की है, संगीत से सजाया है जतिन ललित ने और आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आगरा केंद्र। अगला गीत हमने फिल्म एमएस धोनी से लिया है। संगीत और आवाज अरमान मलिक की है और रचना मनोज मुंतशिर की।

अभी आपने सुना कार्यक्रम चित्रपट संगीत मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 8:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।

0: लोकवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। अमरीका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय चर्चा चल रही है। लोक

0: सभा ने विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
1: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
0: विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं।
3: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
4: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
5: भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की है, उन पर लागू नहीं होगा।
0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
6: संकल्प एयरफोर्स और SIDM के द्वारा, जो आज जितने कहते हैं इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप के लोग, एक जिद है कि भारत को 2047 विकसित भारत बनाना है। और अभी आपने देखा होगा कैसे 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले से ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने अतुल्य भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पास एक असाधारण पर्यटन गाथा है, जिसे सरकार और इंडिगो मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिहार।

0: गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 34% से अधिक रहा, जबकि मंजलपुर में 37% और दतिया में 71% से अधिक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। फिदायिन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और युद्ध विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमरीका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि केशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की घातक कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। उड़ीसा की महानदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित जिलों में बचाव राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, हालांकि इसके मध्यम स्तर की बाढ़ बने रहने की उम्मीद है। भारी बारिश के कारण महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, ताकि बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने बताया है कि अब तक 20 जिलों के 7,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने बरगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, कलाहंडी, नवापड़ा और नवरंगपुर के लिए येलो चेतावनी लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात में अहमदाबाद, आणंद, सूरत और नवसारी समेत 13 जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राज्य में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाई अलर्ट वाले जिलों की प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया, जबकि आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की 3 सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिन तक रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में 1 डॉलर की तुलना

0: में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि 1 जुलाई तक देश में 33 करोड़ 13 लाख घरेलू LPG उपभोक्ता थे। इनमें से 10 करोड़ 58 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन शामिल हैं। श्री गोपी ने कहा कि सरकार घरों में किफायती कीमतों पर घरेलू LPG की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSpace ने कहा है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को किसी भी नियोजित अंतरिक्ष वस्तु की पुनः वापसी के दौरान दुर्घटना जोखिम को न्यूनतम करना होगा। INSpace अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की सभी गतिविधियों पर नजर

घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र आईएन स्पेस ने कहा है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को किसी भी नियोजित अंतरिक्ष वस्तु की पुनः वापसी के दौरान दुर्घटना जोखिम को न्यूनतम करना होगा। आईएन स्पेस अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की सभी गतिविधियों पर नजर

0: रखने वाली एजेंसी है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत और को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने कहा, नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। अमरीका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज। पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीद कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Parliament passes legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem. Prime Minister Narendra Modi chairs meeting of Cabinet Committee on Security to review West Asia situation, stresses on unified mechanism for safeguarding citizens' interest, including seafarers. Delhi government says no legal action against individuals who participated in NEET protests, no protection for those with criminal background. US and Iran exchange fresh strikes, dimming hopes for a quick resolution of West Asia conflict. Red alert issued for very heavy rainfall in Gujarat and Madhya Maharashtra tomorrow. Flood situation in Odisha remains critical. Javelin throwers Neeraj Chopra, Rohit Yadav and Yashvir Singh qualify for the men's final at the Commonwealth Games. The Parliament has passed the Prevention of Insults to the National Honour Amendment Bill 2026, with the Lok Sabha approving it today. The Rajya Sabha passed the legislation yesterday. The law will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Janagana Mana and make the insult to the national song a criminal offence. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine or both. Meanwhile, in the Rajya Sabha, the discussion is underway on Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, moved the bill. Chairman C.P. Radhakrishnan said that 7 hours have been allocated for the discussion on the bill. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. We have more from a correspondent.
2: Both the Houses of Parliament today transacted legislative business. The Lok Sabha today approved the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Rajya Sabha had passed the bill yesterday. After approving the legislation, the lower house was adjourned till 11 a.m. tomorrow. The Rajya Sabha is discussing the public exam.

के मुताबिक बांकीपुर हलके में आखिरी खबरें मौसूल होने तक 34% से ज्यादा वोटिंग हुई। मंजालपुर हलके में 37% से ज्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई, जबकि दतिया हलके में 71% से ज्यादा राय दहिंदगान ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने आज एक दूसरे पर ताज़ा मिज़ाइल के हमले किए, जिसके बाइस बड़े पैमाने पर इलाकाई जंग के अंदेशे उभर कर आए हैं। नीज किसी फौरी हल के लिए इम्कानात मादूम हो गए हैं। हलाकतों में कलील वक्फे के बाद इन ताज़ा हमलों ने इस तशवीश में इजाफा कर दिया है कि ये जंग मजीद मुल्कों में भी फैल सकती है। उर्दुन ने कहा है कि उसने मुसलसल दूसरे रोज़ 5 ईरानी मिज़ाइलों को नाकारा बना दिया है। कुवैत ने खबर दी है कि मुल्क के जुनूब में एक चीनी कंपनी से ताल्लुक़ रखने वाली एक इमारत ईरानी हमले से मुतासिर हुई, जिसमें एक शख्स हलाक जबकि बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। जंग का यह हालिया फैलाव ईरान पर वसी पैमाने पर अमरीकी हमलों के बाद हुआ है, जो उसने उर्दुन में एक फौजी ठिकाने पर ईरान के मिजाइल के हमले के जवाब में किया था। दोनों जानिब से मिजाइल के ये हमले सऊदी अरब के साथ तालमेल से अमरीका के जरिए इराक में ईरान की मुआविनत वाले मिलिशिया पर किए गए हमलों के बाद हुए हैं। खबर है कि हमलों में कम से कम 20 फाइटर्स और 6 ईरानी फौजी मुशीर हलाक हुए थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में पुरअमन मुजाहिरीन पर पाकिस्तानी मुसल्लह फौज की जानिब से वहशियाना हमले के बाद एहतजाज का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी मुसल्लह फौज की फायरिंग में पीर के रोज 40 से ज्यादा सिविलियन हलाक हुए थे। मुश्तरका अवामी एक्शन कमेटी JAAC से वाबस्ता सोशल मीडिया अकाउंट्स में मुजाहिरीन के खिलाफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के जरिए हथियार इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया है। सोशल मीडिया अकाउंट्स में कहा गया है कि मुजाहिरीन वहशियाना कार्रवाइयों के खिलाफ रावलकोट के डी चौक पर कई दिन से बैठे हुए हैं और वो एक लॉन्ग मार्च का नारा दे रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए बेरहमाना और बहिमाना हलाकतों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। JAAC ने अकवाम मुत्तहिदा, बैन अल-अक़वामी इंसानी हकूक की तंजीमों और जमहूरी हुकूमतों से मुदाखलत की अपील की है। उसने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के जरिए पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ कारामद, गोला बारूद और बहुत ज्यादा फोर्स इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट हाउस में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के मेंबरान पार्लियामेंट से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि दोनों रियासतों में सैलाब की मौजूदा सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज करते हुए तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने कहा कि मरकजी हुकूमत इन चैलेंजों से निमटने के लिए मुतल्लिका रियासती सरकारों के साथ काम करती रहेगी। उन्होंने सबकी सेहतयाबी और तहफ्फुज के लिए नेक ख्वाहिशात भी पेश की। भारत के महकमा मौसमियात ने गुजरात और मध्य प्रदेश में कल शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की रेड अलर्ट वार्निंग जारी की है। आइंदा दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी शदीद बारिश का इम्कान है। शुमाल मशरकी भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह के मौसम की सूरत हाल रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, केरला, माहे, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जजायर में कल गरज चमक के साथ बिजली चमकने और तुंध हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। दिल्ली के लिए महकमा मौसमियात ने कल आम तौर पर बादल छाए रहने की पेशगोई की है। उड़ीसा में हाई अलर्ट जारी है, क्योंकि सैलाब के पानी के बाइस महानदी दरियाई निजाम में तुगयानी आ रही है। इसी के साथ इम्कान है कि बहुत बड़ी मिकदार में सैलाब का पानी आज शाम तक मुंडाली पहुंच जाएगा। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में नीरज चोपड़ा मर्दों के जेवलिन थ्रो मुकाबले के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह भी इस मुकाबले के फाइनल में पहुंचे हैं। क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज 5वें मकाम, रोहित यादव 9वें और यशवीर सिंह 10वें मकाम पर रहे। इससे पहले भारत ने दौलत मुश्तरका खेलों के पैरा एथलेटिक्स मुकाबलों में मर्दों के 100 मीटर T47 फाइनल मुकाबले में दिलीप महादो गविट ने सोने का और मोहम्मद बासिल मोरिसिंग काथ ने चांदी का तमगा जीत कर तारीख रकम की। गाविट ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 10.71 सेकंड का एक नया रिकॉर्ड कायम किया और सोने का तमगा जीता, जबकि बासिल भी इस सीजन के बेहतरीन रिकॉर्ड 10.83 सेकंड में अपना गेम पूरा करके दूसरे मकाम पर पहुंचे। इंग्लैंड के केविन ने 10.85 सेकंड में अपना खेल मुकम्मल करके कांसे का तमगा जीता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में मर्दों के पैरा 100 मीटर T47 मुकाबले में सोने का तमगा जीतने के लिए दिलीप महादो गाविट को मुबारकबाद दी है। इसी के अब आखिर में

0: خاص خاص خبریں ایک بار پھر. پارلیمنٹ نے ایک بل کو منظوری دی ہے جس کی روح سے وندے ماترم کو وہی قانونی تحفظ حاصل ہوگا جو قومی ترانے کو حاصل ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سلامتی سے متعلق کابینہ کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی. انہوں نے ملاحوں سمیت شہریوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک متحدہ نظام قائم کیے جانے پر زور دیا. دلی سرکار نے کہا ہے کہ وہ ان افراد کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کرے گی جنہوں نے نیٹ احتجاج میں حصہ لیا تھا. البتہ مجرمانہ پس منظر رکھنے والوں کو کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوگا. امریکہ اور ایران نے ایک بار پھر ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں جس سے مغربی ایشیا کے تنازع کے فوری حل کی امیدیں ماند پڑ گئی ہیں. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: کنٹری وائز ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड. इसके अंतर्गत सुनिए दूर संचार क्षेत्र में भारत की विकास यात्रा पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे हैं दूर संचार विभाग के पूर्व सलाहकार राकेश कुमार भटनागर. कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार.
2: राकेश भटनागर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
3: धन्यवाद.
2: राकेश जी, भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार बन चुका है और ये डिजिटल अर्थव्यवस्था की एक तरह से मेरुदंड भी माना जाता है. तो ऐसे में अगर हम पिछले 10-11 वर्षों को देखें तो भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं? क्या ये केवल मोबाइल और इंटरनेट का ही विस्तार है या इससे कहीं अधिक सूचना प्रौद्योगिकी में बदलाव आया है?
3: जो एक सेगमेंट जिसमें की बहुत ज्यादा चेंज हुआ वो मोबाइल हैंडसेट की मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है. पहले जो है मोबाइल फोन जो था मोस्टली इंपोर्ट होते थे. अब इंडिया इस पोजीशन में पहुंच गया है कि इंडिया की रिक्वायरमेंट को भी मीट कर पा रहा है, उसके साथ साथ में विदेश में भी काफी हद तक एक्सपोर्ट कर रहा है. तो अगर एक सिंगल कंपोनेंट को हम लेके चले तो मोबाइल हैंडसेट एक बहुत बड़ा सेगमेंट हो रहा है जिससे कि हम अर्थव्यवस्था को और काफी उससे योगदान मिल रहा है. इसमें बस एक चीज की कमी है कि जो लोकल वैल्यू एडिशन है वो अभी बहुत हाई लेवल पे नहीं पहुंचा है. तो हमको कुछ आइटम्स जो है कंपोनेंट्स वगैरह है उस फिर भी अभी हमें इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार का अच्छा प्रयास है. आने वाले समय में भी जो अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं उसके रिजल्ट्स आएंगे और लोकल वैल्यू एडिशन भी जो है काफी हद तक बढ़ पाएगा.
2: भटनागर जी, जैसे भी आपने मोबाइल क्षेत्र की बात की तो भारत को मोबाइल फोन निर्माण के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी है और अभी हमारा जो फोकस एक तरह से देखा जाए टेलीकॉम के उपकरणों के निर्माण पर है. और डिस्प्ले की बात करते हैं, हम फैब की बात करते हैं, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मॉडल की सफलता को जिस तरह से हम आगे ले जा रहे हैं तो अभी क्या लगता है कि किन किन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा काम हो रहा है और उन्हें आगे चल करके देश को काफी सफलता मिलेगी?
3: देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का जहां तक है अभी आज की डेट में भी टेलीकॉम इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग जो है काफी हद तक लाइसेंस सर्विस प्रोवाइडर्स एयरटेल जियो वगैरह को अगर आप देखें तो विदेश से ही सामान मंगवा रहे हैं.
2: जी,
3: टेलीकॉम सेगमेंट में चाइना से भी जो लेवल ऑफ इम्पोर्ट है वो अभी तक काफी है. ऐसा नहीं है कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के पास में उसको करने की क्षमता नहीं है. हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं तेजस नेटवर्क HFCL जो 60-70 कंट्रीज को इवन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. वो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्वालिटी भी उनके पास में है, उनके पास प्राइसिंग भी वो कम्पिटिटिव है. तो सरकार की ओर से थोड़ा एडिशनल प्रयास करने की जरूरत है मार्केट एक्सेस, क्योंकि जब तक इनको डोमेस्टिक प्लेयर्स को ऑर्डर नहीं मिलते तब तक जो है उनका मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी कम रह जाती है. तो इसमें काफी क्षमता है और सरकार जो है मेरे को पूरी उम्मीद है कि मार्केट एक्सेस के ऊपर भी सरकार की तरफ से आने वाले कुछ हफ्तों में अच्छे स्टेप्स लिए जाएंगे.
2: जी, एक समय था जब भारत टेलीकॉम उपकरणों के लिए काफी हद तक आयात पर भी निर्भर था, जैसा कि आपने जिक्र किया, और सरकार अब घरेलू निर्माण पर काफी जोर दे रही है. तो इसके लिए सरकार ने भारत के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन फेज 1 की शुरुआत की है. तो ये किस तरह की परियोजना है, इसके पीछे की असली सोच क्या है और हमारे टेलीकॉम सेक्टर में कैसा बदलाव देखने को मिलेगा इसके क्रियान्वित होने के बाद?
3: ये एक बहुत अच्छा प्रयास है. ग्वालियर शहर में 70 एकड़ लैंड और ग्वालियर से करीब 15 किलोमीटर दूर वहां पर करीब 100 एकड़ लैंड का प्रोविजन किया गया है. ये फेज 1 में है, इसके आने वाले फेज में और भी बढ़ने की क्षमता है. ग्वालियर सिटी में जो 70 एकड़ एरिया है उसमें जो है वहां पर शेड्स वगैरह भी लगाए जाएंगे. जो लागत होगी वो कंपनीज को उसको प्रोक्योर करने की लागत भी बहुत नॉमिनल होगी. उनके पास वहां पर टेलीकॉम टेस्टिंग इको सिस्टम भी वहां पे लगाया जाएगा, टेलीकॉम सेंटर्स भी लगाए जाएंगे और उसके साथ साथ में जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी काफी योगदान मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है अलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन.

0: तो ऑलरेडी फील्ड विजिट्स में मैं भी ग्वालियर और भोपाल में एक विजिट में ऑलरेडी जा चुका हूँ। इंडस्ट्री के लोग जो है ज्यादा मीटिंग्स में भी जा चुके हैं, और इंडस्ट्री के साथ कॉपरेशन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोविजन किया है कि अच्छी से अच्छी सुविधाएं जो हैं, अच्छे से अच्छे इंसेंटिव जो दिए जा सकते हैं वो दिए जाए। कई सरकारों ने भी सिमिलर जोन स्थापित करने का प्रयास किए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का जो ये प्रयास है वो उन सब में एक अलग है, और मेरे को काफी उम्मीद है कि इसकी सफलता जरूर आनी चाहिए।
1: राकेश जी, जिस तरह से आपने जानकारी दी है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भारत का लक्ष्य अब केवल घरेलू जरूरतें पूरी करना नहीं बल्कि टेलीकॉम उपकरणों का निर्यातक बनना भी है। तो ये जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन फेज वन की शुरुआत की जा रही है, तो इससे आगे चल करके किस तरह के सुधार हमें देखने को मिलेंगे? क्या निवेश इसमें बढ़ेगा या अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी जो है वो बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना है?
0: टेलीकॉम क्षेत्र में जो है अगर आप देखें तो 5G और 6G में इंडिया का बहुत अच्छा रोल जा रहा है। दुनिया भर में 5G में नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग, ZTE एंड हुआई खाली 5 प्लेयर्स हैं, लेकिन इंडिया में जो है करीब 10 से 15 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इस ग्लोबल मार्केट में जाने में सक्षम है। ऑलरेडी BSL MTL के नेटवर्क में गैलोर और लेखा वायरलेस दो इन्होंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन जो है स्टार्ट कर दिया है।
1: जी
0: मे बी 15 अगस्त को दिल्ली में 5G जो है इन लोगों के माध्यम से वो भी इम्प्लीमेंट हो जाए। प्राइवेट 5G एक बहुत बड़ी मार्केट है, करीब ये 10,000 करोड़ की मार्केट है, एनुअल मार्केट। तो इसमें जो है इंडिया के प्लेयर्स को क्योंकि अभी तक मौका नहीं मिला था और अब मौका मिलना शुरू हो रहा है। मंत्री जी का भी प्रयास है कि इसके लिए स्पेक्ट्रम का भी अलॉटमेंट वगैरह उस दिशा में भी प्रयास चल रहे हैं। तो अब इसमें अगर सफलता मिलती है तो हम एक 10,000 करोड़ की मार्केट में हम इंडियन मार्केट में एंटर कर पाएंगे। हमने 77 यूज केसेस आइडेंटिफाई करके सरकार को अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए, अलग अलग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए आइडेंटिफाई करके हमने पूरी ओवरऑल इकोनॉमी की इम्प्रूवमेंट के लिए हमने शेयर किए हैं सरकार के साथ में।
1: जी
0: और ये सारे प्रयास हैं वो खाली इंडिया के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, ये विदेश के लिए भी एप्लीकेबल है। अभी इंडिया ने रिसेंटली जो है अगर लास्ट वीक में ही पहला समृद्ध गांव का अवार्ड WIS में जीता है, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं वॉइस का डायरेक्टर जनरल हूँ, वॉइस ने भी पहला इंडिया का स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज ITU की रिकमेंडेशन के हिसाब से हमने इम्प्लीमेंट किया। ऑलरेडी हमारे पास यूरोपियन यूनियन, UK और कई जगहों से रिक्वेस्ट आ रही है, क्या इंडिया लीस्ट डेवलप कंट्रीज को इसमें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है? तो नेशनल इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है।
1: जी
0: एक और इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
1: जरूर।
0: कल ही दीनदयाल उपाध्याय संचार अवार्ड जो है अनाउंस किए गए, उसमें एक अवार्ड फिनारा को जा रहा है। मैं इसके बारे में जस्ट बहुत संक्षेप में मेंशन करूंगा। अगर आप विजुलाइज करिए कि आपके पास एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन यूनिट जो है आपकी एयरपोर्ट पे लगी हुई है, उसमें आप जाके अपना पासपोर्ट उसमें डालते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपको कहा जाता है कि अपना पैन कार्ड दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में आपको कहा जाता है कि अपना आधार कार्ड दीजिए, 3 स्टेप की ऑथेंटिकेशन के साथ में आपका KYC कम्प्लीट हो जाता है। उस स्टेज में आप कहते हैं कि मेरे को रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना है, ₹10,000 आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इन टू डॉलर, तो ये मशीन जो है आपको डॉलर में भी कन्वर्ट करके दे देगी। और अगर आप डॉलर को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो हर एयरपोर्ट में, अब ये दिल्ली का एयरपोर्ट हो, बॉम्बे का एयरपोर्ट हो, लंदन का एयरपोर्ट हो या पेरिस का एयरपोर्ट हो, तो सब जगह पे कन्वर्शन सेंटर्स लगे होते हैं कि आप मैनुअल एक्सचेंज कर सकते हैं। नई सुविधा जो है ये हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स ने ये डेवलप करी है, तो इंडिया में ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो इंडिया में इस तरह करने की बहुत क्षमताएं हैं, और उन क्षमता के बेसिस में जो है वर्ल्ड मार्केट में इंडिया का जो रोल है अभी तक जो कंपैरेटिवली पीछे रहा है वो काफी आगे बढ़ सकता है।
1: इस दिशा में अगर थोड़ी सी बात और हम करते हैं, तो 6G टेक्निक पर भी भारत काफी काम कर रहा है, और भारत का फोकस शुरुआत में इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि 6G में हम वैश्विक नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं, थोड़ा इस पर भी रोशनी डालिए।
0: इंडिया में हमारे पास भारत 6G अलायंस है, इसमें जो है डोमेस्टिक जितने भी प्लेयर्स हैं जो R&D कर रहे हैं वो ज्यादातर प्लेयर्स उसके साथ जुड़े हैं, वो इंडस्ट्री के से भी हैं, एकेडमिया से भी हैं, और नए पेटेंट्स के लिए भी काम शुरू हो गया है। कुछ पेमेंट रेगुलर इसकी मीटिंग्स भी हो रही हैं, और कई कंट्रीज के साथ में MOU भी साइन हो चुका है। करीब 6-7 कंट्रीज के साथ में इसमें इंडिया ज्वाइंटली वर्क कर रहा है। UK इंडिया फ्यूचर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स के साथ में वर्क चल रहा है, US के साथ भी वर्क चल रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी साझा वर्क चल रहा है, जापान के साथ भी वर्क चल रहा है, और इंडस्ट्री जो है रेगुलरली जो है इसमें काफी क्लोजली कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क कर रही है। और ऐसा कोई कारण नहीं है कि इंडिया जो है 6G में एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे उभर के आए। पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी, 4G तक की जो टेक्नोलॉजी थी, इंडिया ग्लोबल लीडर नहीं बन पाया था, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया में 5G में भी करीब हमारे पास 10-12 प्लेयर सक्षम हैं जो कि ग्लोबल 5 प्लेयर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
1: जी राकेश जी, अभी आपने वैश्विक नेतृत्व की बात कही, ग्लोबल लेवल पर जो भी हम कर सकते हैं उसकी बात की, थोड़ा सा अपने देश में वापस आते हैं, गाँव की हम बात करते हैं, तो भारत नेट जैसी जो परियोजनाएं हैं उनका उद्देश्य

0: गांव गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है और इस योजना ने काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसको देख करके आपको क्या लगता है कि भारत की और कितनी ज्यादा संभावना है, खासतौर पे 5G और 6G को लेकर के जब हम गांव गांव तक पहुंचने की बात करते हैं?
1: इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ITU की एक रिकमेंडेशन आई थी Y4218।
0: जी
1: आपने स्मार्ट सिटीज का तो सबने सुना हुआ था, लेकिन स्मार्ट विलेजेस का नाम शायद आपने कंपैरेटिवली नहीं सुना होगा। ये रिकमेंडेशन स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेजेस के बारे में इसमें रेफरेंस था, और हमने इंडिया का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज सतनापुरी में हमने इंस्टॉल किया। इसमें सेटेलाइट सुविधा भी गांव में पहुंच रही है, 5G प्राइवेट नेटवर्क भी हम यूज कर रहे हैं, भारत नेट की बैंडविड्थ भी हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो मीडिया की जो जो ऑप्शन हो सकती है कि इंडिया में किसी भी देश के कॉर्नर में आपको इम्प्लीमेंट करना है,
0: जी
1: तो आपके पास जो है बैंडविड्थ उपलब्ध कराने के तरीके हैं। अब जहां तक यूज केसेस हैं, सबसे ज्यादा जो है एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर में अगर आप सॉयल की कंडीशंस को देखें और उसके बेसिस पे आप रिकमेंड करें कि कौन सा फर्टिलाइजर, पोटेशियम या फॉस्फोरस या कौन सा केमिकल डालने की जरूरत है, आप खेत में फसल की कंडीशन को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या वहां पर पेस्टिसाइड डालने की आवश्यकता है या नहीं है,
0: जी
1: तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक वे में हो सकती हैं। हमने जो है वहां पर एक एंड्रॉयड बेस्ड एक एप्लीकेशन भी हमने डेवलप करके वहां पे लगाई है। तो किसान अगर चाहे दिल्ली में बैठा हो या लंदन में बैठा हो, वो अपने खेत को वहीं से बैठे हुए कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इस एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन में आपको खेत की स्थिति पूरी तरह से पता लग रही है।
0: जी
1: अभी गाँव में तालाब है, तो तालाब में मछली पालन के लिए जो आपको योगदान चाहिए, तो वो भी आपको कितनी पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वेदर फिश को सर्वाइव करने के लिए ठीक है या कम है, वो आपको पता लग जाएगा।
0: जी
1: आपको जो है सर्वेलेंस है वो आप कर सकते हैं।
0: जी
1: हेल्थ केयर के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं दिल्ली में, अगर आप एक HbA1c टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, ACG कराते हैं, तो आपको रिजल्ट्स कब मिलते हैं? नॉर्मली आपको रिजल्ट्स अगले दिन तक ही मिल पाते हैं, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये दिखा दिया कि 15 मिनट के अंदर में आपके मोबाइल फोन में जो है आपका ब्लड टेस्ट जो है उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे, ECG के रिजल्ट्स आपके पास आ जाएंगे,
0: जी
1: और आप टेली कंसल्टेशन के माध्यम से जो विशेषज्ञ है वो लंदन में बैठा हो या बॉम्बे में बैठा हो या नागपुर में बैठा हो, कंसल्टेशन कर सकते हैं, और डॉक्टर की तरफ से जो रिपोर्ट है वो आपके स्क्रीन पे यहाँ जहाँ पे आप गांव में बैठे हैं वहां पे आ जाएगी, और वहीं पर ही आपको मेडिसिन भी दी जा सकती है।
0: जी
1: तो ये सारा प्रोसेस जो है 15 मिनट में हो रहा है। तो गाँवों में इस तरह की सुविधाएं अगर आप, अभी हमने एक गाँव में किया, महाराष्ट्र सरकार जो है 3580 के लिए प्रयास कर रही है, और इसी साल में 75 इसी तरह के गाँव जो है वो तैयार होने जा रहे हैं।
0: जी थोड़ा सा फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन और पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क क्या एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करेंगे, और इससे डिजिटल डिवाइड को किस हद तक हम खत्म करने में सक्षम होंगे?
1: हमने सतनावरी में जो इम्प्लीमेंटेशन किया था उसमें हमने सैटेलाइट का भी एडवांटेज हमने लिया था। 4G प्राइवेट नेटवर्क सैटेलाइट के से कनेक्टिविटी थी, और एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बैंगलोर में, ये पूरी हमने चेन बनाई थी। सैटेलाइट में हमारे ही कुछ प्लेयर इस वर्क इस तरह भी प्रयास कर रहे हैं कि वो 100 के करीब लियो ऑर्बिट में सैटेलाइट छोड़े,
0: जी
1: उनके थ्रू पूरे देश के रिमोटेस्ट कॉर्नर्स में भी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज का जो है योगदान मिल सके। और एक में बहुत आपको आश्चर्य भी हुआ कि नॉर्मली सैटेलाइट में रूफ टॉप के ऊपर में डिश एंटीना लगते हैं,
0: जी
1: और आपको स्पेशल डिवाइसेस चाहिए होती हैं जिसके माध्यम से आप सैटेलाइट सिग्नल रिसीव करते हैं। हमारा एक डोमेस्टिक प्लेयर ने उससे इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करी, 15 अगस्त को ही विल बी रेडी विद अ सॉल्यूशन जिसमें कि आपको ऑर्डिनरी फोन पे भी और वो भी घर के अंदर बैठे हुए भी आप सैटेलाइट का सिग्नल रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रयास दुनिया में किसी और देश में अभी आज तक नहीं हुआ है,
0: जी
1: ये इंडिया में होने जा रहा है।
0: जी राकेश जी, अंत में आपसे बस एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि आज हम AI, OpenRAN और इंटरनेट थिंग्स या फिर क्लाउड जैसी तकनीकों की चर्चा कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल अब बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो टेलीकॉम सेक्टर से इनसे क्या उम्मीदें हैं और आने वाले वर्षों में भारत को इनसे किस तरह से लाभ होगा और भारत कैसे वैश्विक स्तर पर अपने आप को इसमें श्रेष्ठ साबित कर सकता है?
1: आपने क्लाउड की आपने मेंशन करी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेंशन करी, तो हमने जो स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज का जो इम्प्लीमेंटेशन किया है तो उसमें ये ऑलरेडी बीच में यूज किया जा रहा है, और हमारे पास जो हमने सॉल्यूशन हमने इम्प्लीमेंट किया था, यूके एंड यूरोपियन यूनियन की एक टीम भी आई थी, 3 विशेषज्ञ 3 प्रोफेसर भी आए थे, और उसके साथ उन्होंने हमारे साथ एक MOU किया, और जो हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया उसको लीस्ट डेवलप कंट्रीज में डेवलप प्रोवाइड करने के लिए भी हमारे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो इंडिया में एज फार एज द इंडस्ट्रीज कंसर्न पूरी क्षमता है, वेदर इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस हैं या डाटा सेंटर्स हैं, हर क्षेत्र में हमारे पास क्षमता है। सरकार और इंडस्ट्री मिलकर काफी अच्छा काम कर सकते हैं,
0: जी
1: क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो है ऑर्डर बुक होती है। हमारे पास क्षमता है और ऑर्डर आ जाते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हम पीछे रह जाएं।
0: राकेश भटनागर जी हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए।

0: प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
2: नाउ क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन नंबर 121, श्रीमान कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन जी।
3: क्वेश्चन नंबर 21।
4: प्रश्न संख्या 121, क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही के उन अंतर्राष्ट्रीय आकलनों की जांच की है जो ये दर्शाते हैं कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण और सतत प्रबंधन में जनजातीय एवं स्थानीय समुदायों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए जैव विविधता संबंधी वित्त पोषण का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से इन समुदायों को प्रदान किया जा रहा है। ख, जैव विविधता से संबंधित वित्तीय सहायता को पात्र वनवासी एवं जनजातीय समुदायों तक पारदर्शी, जवाबदेह और न्याय संगत रीति से पहुंचाया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं। ग, ऐसी निधि के उपयोग के संबंध में निर्णय लेने में सामुदायिक भागीदारी हेतु स्थापित संस्थागत तंत्र क्या है। और घ, परिणामों की निगरानी करने तथा प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या रक्षोपाय स्थापित किए गए हैं।
2: ऑनरेबल मिनिस्टर
4: श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री।
5: माननीय सभापति महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा
2: है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन जी।
3: थैंक यू सर। विल द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बी प्लीज्ड टू स्टेट वेदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट्स एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। एनी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रपोज्ड फॉर एंश्योरिंग ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ ग्राम सभास, विमेन एंड ट्राइबल कम्युनिटीज इन planning and implementation. Any frequency prescribed for publishing the state-wise and district-wise performance reports. Whether government proposes to establish an integrated coordination mechanism among the ministers dealing with the environment, tribal affairs, agriculture, rural development and finance for biodiversity conservation. The expected...
2: Constantine ji, he is specific about your question. So okay. Long question, then come to the specific question, please.
5: Okay.
2: Carry on.
3: The monitoring mechanism proposed to prevent duplication of expenditure and improve accountability. Thank you, sir.
6: Sir, the member raised a concern about whether there is any mechanism to giving a profit to a tribal community and other community as per the biodiversity fund is concerned. Sir, I want to submit that India has a well-established domestic access and benefit-sharing mechanism which is under the Biological Diversity Act of 2002 as amended in 2023, supported by the Biological Diversity Rules 2024 and Access Benefit-Sharing Regulation 2025. The present ABS framework provides for fair and equitable sharing of benefit arising from the utilization of biological resources and associated traditional knowledge. It operates through a three-tier institutional structure comprising the National Biodiversity Authority at the national level, the State Biodiversity Authority and Biodiversity Council and management committees at local level. Sir, the ABS mechanism has mobilized more than 266 crore, including 21 crore during financial year 25-26, and approximately 153 crore has been disbursed to benefit claimers, including 78.8 crore rupees during financial year 25-26.
2: Second supplementary, Sriman Ashok Rao Sankar Rao Chavanji.
7: Sir, I would like to know from the Honorable Minister whether the Ministry will ensure that biodiversity finance mechanisms under the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework specifically reached, particularly vulnerable tribal groups such as the Kolam community, a forest dwelling PBTG found in the Kinwat and Maur forest ranges of Maharashtra, and whether a transport Gram Sabha based participation mechanism in line with the Forest Rights Act 2006 is being institutionalized so that such communities themselves decide how these funds are utilized in their own habitats.

0: Honorable Minister.
1: Sir, the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework provides the global roadmap to halt and reserve biodiversity loss by 2030. In alignment with the framework, India submitted its updated National Biodiversity Strategy and Action Plan 24-23 to the CBD Secretariat on 31st October plan. It comprised 23 national biodiversity targets and supported by 142 national indicators. Sir, India has also established safeguard for transparency and accountability, including statutory oversight by NBA and state biodiversity boards, biodiversity council, maintenance of records of BMC provide biodiversity registers, monitoring of ABS agreements, financial management and audit of biodiversity fund and field level monitoring and conservation activities. Sir, as per the Maharashtra is concerned, 11 crore rupees, the ABS amount sanctioned, including the administrative charges also, and definitely it's providing the benefit the concerned community, which is the question is raised by the particular member. Yes, also.
0: Third supplementary, Sriman Dr. Ashok Kumar Mittal ji.
2: Environment tatha biodiversity ke management mein महिलाओं की भागीदारी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है. वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थानीय स्तर पर वन उत्पादों के कलेक्शन और प्रोटेक्शन में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं. तो माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बायोडाइवर्सिटी से जुड़े फाइनेंशियल ग्रांट्स में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं. इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से जुड़े निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भूमिका सुरक्षित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए. धन्यवाद.
0: ऑनरेबल मिनिस्टर.
1: माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी का विषय है वह हमारी विकास की प्राथमिकताओं में है. बायोडाइवर्सिटी को सिक्योर करने का अर्थ है फूड सिक्योरिटी को, आजीविका को, इकोलॉजिकल बैलेंस को, हमारे जंगल, हमारे वेटलैंड, हमारे समुद्री तट, रेगिस्तान, घास के मैदान और मैरीन इकोसिस्टम की सुरक्षा करने का विषय है. और निश्चित रूप से जो ग्राम सभाओं का हम गठन करते हैं उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर हम पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें महिला सशक्तिकरण में जो उनकी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं. और ये निश्चित रूप से देश की बायोडाइवर्सिटी संरक्षण में उनकी बड़ी भूमिका है. इसका कोई वैधानिक प्रावधान तो नहीं है, लेकिन हम उनको पूरा प्रोत्साहन, उनको पूरी नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कार्य करते हैं.
0: फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर श्रीमती मेहता विश्रम कुलकर्णी जी.
3: धन्यवाद सभापति महोदय. बायोडाइवर्सिटी के बारे में ये जो प्रश्न है, पुणे में 25 साल पहले से 900 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन पर बायोडाइवर्सिटी का रिजर्वेशन किया गया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया. तो मेरा प्रश्न है और दूसरा भी इससे जुड़ा है कि मियावाकी फॉरेस्ट के जरिए अर्बन एरियाज में छोटे छोटे प्लॉट्स पर भी बायोडाइवर्सिटी हम कर सकते हैं. तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या मिनिस्ट्री अर्बन लोकल बॉडीज को ये आदेश देगी कि वो बायोडाइवर्सिटी पार्क का रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट करे, और मियावाकी गार्डन के लिए भी अगर मिनिस्ट्री बजट की सहायता कर सकती है क्या, ये मेरा प्रश्न है.
0: ऑनरेबल मिनिस्टर.
1: माननीय सभापति महोदय, मंत्रालय के द्वारा नगर वन और नमो वन की योजना चलाई जाती है. वो बायोडाइवर्सिटी से अलग है. अपने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से अगर सदस्य महोदय प्रस्ताव भेजेगी तो हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे.
0: नाउ क्वेश्चन नंबर 122 श्रीमान ए रहीम जी.
4: प्रश्न संख्या 122. क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने श्रम संहिताओं के लागू होने के पश्चात रोजगार सुरक्षा, संविदात्मक रोजगार, छंटनी और कामबंदी यानी ले ऑफ पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है, और यदि हाँ तो उसके निष्कर्ष क्या हैं? ख श्रम संहिताओं के अंतर्गत श्रमिकों की छंटनी करने वाले कर्मचारियों की कामबंदी अथवा अपना परिचालन बंद करने वाली स्थापनाओं की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या कितनी कितनी है. ग क्या श्रम संहिताओं को लागू करने से पूर्व और पश्चात छंटनी, कामबंदी, औद्योगिक विवादों तथा औपचारिक रोजगार के संबंध में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है. और घ क्या सरकार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन तथा श्रमिकों के अधिकारों एवं उनकी रोजगार संबंधी सुरक्षा पर इसके प्रभाव की स्वतंत्र समीक्षा करवाने का विचार रखती है.
0: सेकंड सप्लीमेंट्री थ्रू

0: Vi Wilson ji.
1: Through this house, I would like to ask the Honorable Minister, the reasons for the government decision to abstain from the International Labour Organization Convention on the Decent Work in the Platform Economy, which seeks to set minimum standards for the gig and platform workers, and was supported by the both Indian employers and workers, especially when such abstention risk denying lakhs of young Indians engaged in app-based work basic protections on working conditions, social security and fair treatment that the global community has recognized as essential. Thank you, Chairman.
0: Honorable Minister.
2: Dr. Mansukh Mandaviya, श्रम एवं रोजगार मंत्री.
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आईएलओ के गिग वर्कर्स के विषय के संदर्भ में जब क्वेश्चंस पूछा है, मैं बताना चाहूंगा कि गिग वर्कर्स हमारे देश में एक नई व्यवस्था खड़ी हो रही है और गिग वर्कर्स का हितों की रक्षा हो, गिग वर्कर्स को अपना एक एम्प्लॉइज के रूप में अधिकार मिले, उसके लिए पहली बार लेबर कोड में, नहीं केवल भारत में लेकिन दुनिया में पहली बार हमने गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करा है और उसको कानूनी दर्जा दिया. कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश है वो भारत है, और भारत में गिग वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए ई श्रम पोर्टल पर प्रावधान रखा गया है. और आज जो नीति आयोग के एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 लाख गिग वर्कर्स है और उसमें से 10 लाख गिग वर्कर्स ऑलरेडी ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हुए हैं. अभी विषय है उसके हितों की रक्षा के लिए या तो उसको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए. तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूंगा कि हमारे गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिले, उसको सोशल सिक्योरिटी का कानूनी प्रावधान मिले, उसके लिए ही हमने लेबर कोड में प्रावधान करा है. अभी आईएलओ ने जो अपना कन्वेंशन कर रहे थे, यूरोप और उनका एक मॉडल होता है, भारत का गिग वर्कर्स का एक अलग मॉडल है. हमारे यहाँ वो एक इमर्जिंग व्यवस्था है, उसके लिए कई प्रावधान हमने अभी करके रखा है. कई प्रावधान भविष्य में भी करने की आवश्यकता हो तो हम उसके में भी प्रावधान करेंगे. इसलिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, ना कि उसके सोशल सिक्योरिटी के हितों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करना. इसलिए फ्लोर के द्वारा, पार्लियामेंट के सदन के द्वारा मैं एश्योर करना चाहता हूं कि गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए हमने लेबर कोड में जो प्रावधान करा है उसका इंप्लीमेंटेशन करके उसको सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करी जाएगी.
0: थर्ड सप्लीमेंट्री, श्रीमान प्रमोद बोरा जी.
4: ऑनरेबल चेयरमैन सर, विद रेफरेंस टू द इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, विल द ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेट इफ एनी असेसमेंट हैज बीन मेड ऑन हाउ the new 50% basic wage rule under the code on wages will impact workers eligibility under the 21,000 ESIC ceiling, and what specific institutional mechanism or programs are being implemented under the new codes to currently clear pending provident funds of displaced workers and provide them financial literacy training to protect their social security resources. Thank you.
0: Honorable Minister.
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, जब लेबर कोड लागू होने से सोशल सिक्योरिटी को हम बढ़ावा दे रहे हैं. ये देश है जिसमें 2014 के पहले केवल देश में 29% लोगों को, 19 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलता था. पिछले 12 साल में मोदी गवर्नमेंट ने हो एक्सेस बढ़ा के आज देश में 68% यानी कि 101 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने वाला ये देश बन गया. सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित हो, और इसके लिए एसिक में हमारे न्यू लेबर कोड हमें प्रावधान करता है कि एसिक में पहले कई स्टेट बाहर थे, कई स्टेट ESIC के लाभार्थी नहीं थे, ईपीएफओ में उसको लाभ नहीं मिल रहा था. लेकिन अभी लेबर कोड ये सुनिश्चित करता है कि सारे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट को नोटिफाई करा जाएगा और सभी डिस्ट्रिक्ट में ESIC के तहत जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स है, ESIC के लाभार्थी है, उसको उसका लाभ दिया जाएगा. सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, हेल्थ सिक्योरिटी दी जाएगी, ताकि ऐसे वर्कर्स उसके लिए काम करते करते कोई भी दिक्कत आई हो, उसका काम छूट गया, उसके मैटरनिटी बेनिफिट की आवश्यकता हुई, तो ऐसी स्थिति में भी उसको लाभ मिले, वो भी हमने सुनिश्चित करा है. और माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के प्रारंभ में कहा कि उससे क्या कोई असेसमेंट करा गया है. माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमने लेबर कोड लागू करा, और लेबर कोड तो 2019 और 20 में बना था लेकिन कई कारणों से वो लागू नहीं हो पाया,

0: लेकिन हमने 2025 नवंबर में देश में लेबर कोड लागू करा और मई 2026 में हमने उसका रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करा। सभी स्टेट अपने रूल्स को उसके साथ अलाइन कर रहे हैं और स्टेट स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने एक प्राइमरी सर्वे करा था और हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने VVGNLI करके हमारी एक लेबर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक व्यापक सर्वे करा। उस सर्वे में वर्कर्स की ओर से जो फीडबैक आया, ये मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूंगा, 60% वर्कर्स का मानना है कि लेबर कोड के पूर्ण इंप्लीमेंटेशन से वर्किंग कंडीशन बेहतर बनेगी। 63% वर्कर्स का विश्वास है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अधिक पोर्टेबल बनेंगे। 60% कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेंट और गिग वर्कर्स का मानना है कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी का बेहतर कवरेज मिलेगा। 66% वर्कर्स का मानना है कि एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन अधिक स्पष्ट होगी। 66% वर्कर्स का मानना है कि महिला वर्कर्स की सेफ्टी और प्रोटेक्शन में सुधार आएगा और 63% वर्कर्स का विश्वास है कि वर्क प्लेस पर सेफ्टी इक्विपमेंट और प्रोटेक्टिव मेजरमेंट बेहतर होगा। ये कुल मिला के हमारा सर्वे से निकला है, वो बताता है कि देश के श्रमिक के लिए ये लेबर कोड हितकारी।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान मयंक कुमार नायक जी।
2: थैंक यू सर। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा खूब काम किया जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए औद्योगिक डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। सर मेरा माननीय मंत्री जी आदरणीय मनसुख भाई जी से प्रश्न है कि सर जो नए नए बिजनेस आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या श्रम मंत्रालय के द्वारा उस इंडस्ट्रीज को जिस प्रकार से कामदार चाहिए, लेबर चाहिए, उसकी ट्रेनिंग का कोई प्रावधान है क्या? और यदि हाँ तो उनके लिए सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा समन्वय करके इस तरह से देश के युवाओं को रोजगारी मिल जाए, जो आने वाले भारत में आत्मनिर्भर भारत का माननीय प्रधानमंत्री ने स्वप्न देखा है, उसको पूरे करने में सरकार का जो दायित्व है वो सरकार कैसे निभा रही है, वो मैं आपके माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। थैंक यू सर।
3: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। बदलते समय में टेक्नोलॉजी का भी बदलाव हो रहा है, बदलते समय में वर्किंग कंडीशन भी बदल रही है। एक समय था जब श्रमिक खेत में काम करने के लिए जाते थे तो हाथों से काम करते थे, आज समय बदला है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, फार्म इक्विपमेंट का यूज करते हैं। और जब स्प्रे करते थे पहले तो हैंड से उसको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना था तो हैंड से करते थे, आज समय बदला और ड्रोन से करते हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का समझदारी आए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेनिंग मिले, तब जाके हमारे ड्रोन दीदी आज देश में हजारों की संख्या में ऐसी महिला को ऐसे ड्रोन चलाने का तकनीकी का ज्ञान दिया गया है, ताकि वो ड्रोन को अपने अर्थोपार्जन के लिए उपयोग करते हैं और किसान के खेत में जाके ड्रोन से वो छिड़काव करवाते हैं। वैसे कई सेक्टर में, हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आई है और टेक्नोलॉजी के अनुरूप हमारे वर्कर्स में टेक्नोलॉजी का ज्ञान आए, इसके लिए स्किल इंडिया मूवमेंट के द्वारा उसको स्किलिंग करा जाता है। हर इंडस्ट्रीज को ये व्यवस्था और हर इंडस्ट्रीज को ये कहा गया है कि बदलते टेक्नोलॉजी के साथ उसको रिस्किलिंग करा जाए। तो आज जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आपकी इंडस्ट्रीज में करते हैं और उसका नया वर्जन आया और नया मशीन आया, तो नया मशीन का उपयोग करने के लिए उसको रिस्किलिंग करने की भी व्यवस्था करी गई है। स्किल इंडिया के तहत अभी लास्ट 2025 के बजट में अनाउंसमेंट करा गया था सरकार के द्वारा, जिसमें हर सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी बदल रही है और इंडस्ट्रीज क्लस्टर के आधार पर जिस टाइप का इंडस्ट्रीज क्लस्टर है, एक क्लस्टर के अनुरूप उसको स्किलिंग हो, इसलिए हब एंड स्पोक के द्वारा ITI की व्यवस्था करी गई है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक लेवल की इंडस्ट्रीज है तो डिस्ट्रिक्ट के हब के रूप में एक ITI काम करेगी और स्पोक के रूप में ये इंडस्ट्रीज के क्लस्टर में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उसकी स्किलिंग का भी इन्हेंसमेंट हो और इस स्किलिंग के इन्हांसमेंट का उपयोग हमारे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उपार्जन बढ़े। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, टेक्नोलॉजी कैसे रोजगार एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उपयोगी हो सकती है? भारत सरकार ने नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल बनाया है, तो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर आज देश में

0: 53 लाख से अधिक स्टेट गवर्नमेंट, देश की कंपनी, दुनिया की कंपनी उसके ऊपर जुड़ी हुई है। उनको की कोई भी टाइप का स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो तो स्किल मैन पावर उसको क्या चाहिए उसके ऊपर वो नोट करते हैं। आज सुबह से मैंने देखा 12 लाख से अधिक नौकरियां वहां उपलब्ध है, कोई ना कोई टाइप के उसको स्किल मैन पावर चाहिए, ताकि जिसको जॉब चाहिए वो जिस टाइप की स्किल की रिक्वायरमेंट है ऐसा स्किल वर्कर्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अप्लाई करा और फिर उसको स्किलिंग की आवश्यकता रही, विशेष स्किलिंग की आवश्यकता हुई तो भारत सरकार की ओर से उसको 15 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का स्किलिंग करा के जिस इंडस्ट्रीज को जिस टाइप का स्किल मैन पावर चाहिए ऐसा स्किल मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए भी भारत सरकार ने व्यवस्था करी है। इसलिए देश में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है, देश के युवाओं में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ने से उसका रोजगार प्राप्त हो रहा है और रोजगार निर्माण से देश में हमारे इंडस्ट्रीज का की जो स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही है। इसलिए समय बदलते समय के साथ स्किलिंग, रीस्किलिंग और रीस्किलिंग के बाद जॉब और जॉब के बाद अर्थोपार्जन की एक श्रृंखला मोदी गवर्नमेंट में हमने सुनिश्चित करी है।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 123 श्रीमान संतोष कुमार पी।
2: प्रश्न संख्या 123, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि आज की स्थिति के अनुसार अकुशल, अर्ध कुशल, कुशल तथा अति कुशल श्रमिकों सहित विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने मुद्रास्फीति तथा जीवन यापन की बढ़ती लागत के दृष्टिगत विद्यमान न्यूनतम मजदूरी की पर्याप्तता की कोई समीक्षा की है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ग, क्या सरकार मजदूरी संहिता 2019 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी लागू करने सहित न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने अथवा बढ़ाने का विचार रखती है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा संभावित समय सीमा क्या है? और घ, देश भर में न्यूनतम मजदूरी संबंधी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान सतपाल शर्मा जी।
3: धन्यवाद माननीय चेयरमैन महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में ये विषय लाना चाहता हूँ कि जो रेट्स ऑफ वेजेज है इंक्लूडिंग VDA पर डे वो एग्रीकल्चर के केस में बहुत कम है, जबकि हम सब जानते हैं कि जीवन व्यतीत करने के लिए एग्रीकल्चर का एक विशेष महत्व होता है। और जब मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ स्वीपिंग से, वॉच एंड वार्ड, लोडिंग अनलोडिंग, इन सब के संदर्भ में ये जो वेजेस हैं बहुत कम है, तो क्या सरकार इस विषय को गंभीरता से लेगी और किसानों के रेट्स को भी बढ़ाने का प्रयत्न करेगी? एक थोड़ा सा एक विषय क्लासिफिकेशन को लेकर भी है, 3 क्लासिफिकेशन दी है, A, B and C। आज के संदर्भ में जब हम पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं, ठीक है बड़े जगह हैं जैसे दिल्ली है, मुंबई है, मद्रास है, लेकिन इन जगहों को छोड़कर मुझे लगता है कि भारतवर्ष की सभी जगहों को मात्र बी में ही कन्वर्ट किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
2: डॉक्टर मनसुख मांडविया, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने किसान के हित की रक्षा की बात करी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी लोगों को जीवन व्यापन करने के लिए मिनिमम जरूरत है वो तो उपलब्ध होना ही होना चाहिए, और मिनिमम जरूरत उपलब्ध हो इसलिए ही प्रधानमंत्री जी ने आज देश में इस टाइप की सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था करी है, ताकि देश में सभी नागरिक को अपना घर मिले, पुरता खाना मिले और घर में उसको गैस का सिलेंडर मिले। ये सारी व्यवस्था सोशल सिक्योरिटी का एक पार्ट ही है और वेजेस का भी एक पार्ट है। और जब वेजेस तय करी जाती है तब व्यक्ति को कितना न्यूट्रिएंट फूड चाहिए, कितनी कैलोरी चाहिए, उसको विज्ञापन के उसको जीवन निर्वाह के लिए कपड़ा चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको फैन, घर में फैन चाहिए। तो पहले फैन नहीं था तो बिजली बिल नहीं आता था, आज अभी मोबाइल तो हम काउंट ना करें वो एडिशनल व्यवस्था है, लेकिन उसके जीवन में मिनिमम जीवन जरूरी चीजों को खरीदने के लिए उसको मिनिमम जो खर्च लगता है उसको मिनिमम वेज के रूप में माना जाता है। और मिनिमम वेज आज तक माननीय अध्यक्ष महोदय सरकार तय करती थी, लेकिन भारत सरकार तय करती थी, लेकिन वो एडवाइजरी के रूप में था, स्टेट उसको माने नहीं माने उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं था। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेबर कोड लागू करा, लेबर कोड में उसका फ्लोर वेज का प्रावधान करा गया।

0: तो भारत सरकार अभी नए लेबर कोड के मुताबिक फ्लोर वेज तय करेगी। फ्लोर वेज मतलब कोई भी राज्य उससे कम मिनिमम वेज नहीं देंगे, उसका तो इतना देना ही देना, उससे ऊपर राज्य जितना रख सकते हैं, जितना रखना चाहे इतना रख सकते हैं। उसमें से सभी राज्य अपने, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देश में बहुत डाइवर्सिटी है, हमारे देश में मैदानी प्रदेश भी है, हिमालयन रेंज भी है, नॉर्थ ईस्ट जैसे पहाड़ी प्रदेश भी है, विकसित प्रदेश भी है, अल्पविकसित प्रदेश भी है। तो ऐसी स्थिति में उसकी रिक्वायरमेंट और उसका जीवन निर्वाह का ABC यानी कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का खर्च, एक छोटे शहर में रहने वाले और उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का जीवन खर्च, और एक का दूर सुदूर गांव में रहने वाले और किसान का जीवन निर्वाह का खर्च अलग अलग होता है, उसको ध्यान में रख के फ्लोर वेज तय करा जाएगा। और एक फ्लोर वेज के ऊपर सब लोग वेज तय करे, उसमें सारा पैरामीटर को सुनिश्चित करके तय करा जाएगा। वर्तमान समय में जो वेजेस उपलब्ध है वो हर साल में 2 बार वेरिएबल डियरनेस अलाउंस होता है, उसके अनुसार एड होता है, और ये आज भारत सरकार सभी को बाधित करती है।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री थ्रू आर गिरिराजन जी।
2: सर, नाउ द मिनिस्ट्री इज अनाउंसिंग मिनिमम वेजेस 5 ईयर वंस और 3 ईयर वंस और 2 ईयर वंस रेगुलरली। द मिनिस्ट्री शुड अनाउंस द मिनिमम वेजेस एवरी फाइनेंशियल ईयर विदाउट फेल। सर, द मिनिमम वेजेस नॉट अनाउंस्ड ईयरली बाय द मिनिस्ट्री। द मिनिस्ट्री हैज एनी प्रपोजल टू अनाउंस मिनिमम वेजेस एवरी फाइनेंशियल ईयर, दैट विल हेल्प द लेबर्स अक्रॉस द कंट्री। थैंक यू।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, हर राज्य अपने अपने हिसाब से मिनिमम वेज में बढ़ोतरी करता है, लेकिन भारत सरकार तो जो महंगाई को ध्यान में रखते हुए हर साल में 2 बार VDS के द्वारा बढ़ोतरी करता है कि इस बार जो इन्फ्लेशन बढ़ा हो, अभी महंगाई बढ़ी हो, उसके आधार पर उसका खर्च बढ़ता है, तो उसके आधार पर सरकार बढ़ोतरी करती है, और उसको देखते हुए राज्य सरकार उसको प्लस माइनस प्लस कर सकती है, माइनस तो नहीं, और उसका लाभ अपने देश के, अपने राज्य के वर्कर्स को दे सकते हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती सुलादा देव।
3: थैंक यू सो मच ऑनरेबल चेयरमैन सर। जय श्री जगन्नाथ। सर, माननीय मंत्री अभी बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन के बारे में, किस तरह से हर चीज में प्राइस राइज हो रहे हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली भी अपनी घर चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग जो एकदम लोअर क्लास बिलोंग्स करते हैं, जो अनस्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर है, उन लोगों के लिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्राइस हाइक हो रहा है, उस माननीय मंत्री जी ये बोलेंगे कि उन लोगों की जो वेजेस है, डेली वेजेस है, वो बढ़ना जरूरी है, वो बढ़ाने की कोई प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है क्या? अगर है तो स्टेट को भी कम्युनिकेट करें। और दूसरी बात मैं मतलब ये जानना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे स्वास्थ्य मित्र है जो हमारे ओडिशा में काम करते थे हेल्थ में, आयुष्मान योजना में, उन लोगों को भी जो कंटैक्ट केयर में काम करते थे, उन लोगों को भी निकाला जा रहा है, वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों की फिर रिहैबिलिटेशन किस तरह से हो, और किस तरह से, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हेल्थ अगर किसी का खराब होता है तो अगर वहां पर कोई असिस्टेंट ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाते हैं, उन लोगों के लिए कुछ सोचे हैं क्या, और ये वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, और बढ़ाने कि अगर कोई योजना है तो सर बताए। थैंक यू सो मच सर।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात में ऐसा इस दृष्टि से ऐसा समझा हो कि उनके यहाँ हेल्थ वर्कर है, उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए, और उसने ये भी अपेक्षा रखी है कि जो अपने मिनिमम वेज है वो आपको रेगुलर बढ़ाता जाना चाहिए, समय समय पर बढ़ाते जाना चाहिए। मैं उसको, माननीय सदस्य को रिप्लाई देना चाहूंगा आपके द्वारा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश अभी बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, नया भारत बन रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा भारत दुनिया में डेवलप्ड कंट्री, यूरोप की बात करें 1-2% इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाइना USA 4-5% इकोनॉमिक ग्रोथ है, भारत की इकोनॉमी 7.5% से ग्रो कर रही है। जब कोई भी देश की इकोनॉमी ग्रो करती है तब देश के नागरिक का परचेस पावर बढ़ता है, देश के नागरिक का परचेस पावर बढ़ता है तो देश में डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो रोजगारी बढ़ती है स्वाभाविक तौर पर। यहां जो बात रखी गई है कि अपने वर्कर्स है उसको, हेल्थ वर्कर्स को अपना सैलरी बढ़नी चाहिए सभी राज्य को, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप 2 साल में बढ़ाओ, 3 साल में बढ़ाओ, 5 साल में बढ़ाओ, भारत सरकार

0: सरकार तो हर 6 महीने में बढ़ाती है, उसको देखते हुए हर राज्य सरकार, क्योंकि लेबर वेलफेयर वो कंकरेंट लिस्ट में है, तो ये राज्य सरकार का अधिकार है कि जब चाहे तब अपने राज्य में वो मिनिमम वेज बढ़ा सकते हैं। किसी का भी वेज में बढ़ोतरी करनी है तो राज्य सरकार उसमें पर बढ़ोतरी करके अपने एम्प्लॉइज को उसका लाभ दे सकते हैं।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 124 श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
2: 124
3: प्रश्न संख्या 124। क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क दिव्यांगजनों तथा महिलाओं के मध्य खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है। ख ऐसे वर्ग के युवाओं को सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं तथा वित्त प्रावधानों का ब्यौरा क्या है। और ग ऐसे वर्ग के युवाओं में नशीली दवाओं के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने तथा उनके करियर मार्गदर्शन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
3: रक्षा निखिल खडसे, युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री।
2: टल पे रखा है।
1: नाउ फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
4: माननीय सभापति महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहती हूँ कि जो पैरा एथलीट्स हैं, इन खिलाड़ियों के लिए आपने कितने सेंटर बनाए हैं और उसमें इन्हें प्रशिक्षित करने का क्या क्या माध्यम है और इसमें महिलाओं युवाओं की संख्या कितनी है।
2: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि पैरा फ्रेंडली फैसिलिटी सेंटर्स हमारे पूरे टोटल साई में 13 सेंटर है, जिसमें से गांधीनगर का जो सेंटर है वो डेडिकेटेड सेंटर है फॉर पैरा, और उसके अलावा 12 सेंटर है हमारा त्रिवेंद्रम में है, अर्नाकुलम में है, संभाजीनगर, बैंगलोर, भोपाल, कलकत्ता, लखनऊ, पटियाला, सोनीपत, आईजी स्टेडियम और केएसएसआर में। इन सभी जगह पे हमारे पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग दी जाती है और लगभग 172 एथलीट्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जिसमें से 62 जो हमारे एथलीट्स है वो टॉप स्कीम में भी है, जो एलए के लिए आने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि 2014 से पहले जो हमारा पैरा ओलंपिक में रैंक था पूरे वर्ल्ड में 67 था और मेडल सिर्फ एक ही था, पैरा एशियन गेम्स में हमारा रैंक 15 था और मेडल सिर्फ 14 थे। लेकिन 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स को लेकर काफी अग्रसर भूमिका रखी और उसके बाद हम देख सकते हैं है कि 2024 में हमारा रैंक 18 था, 29 मेडल्स हमने प्राप्त किए और पैरा एशियन गेम में हमारा रैंक अभी 5th है और जहाँ पे हमने 108 मेडल प्राप्त किए। तो सभी पैरा एथलीट्स के लिए हमारे सभी साई के सेंटर में सभी सुविधाएं दी जा रही है, जहाँ पे हमारे महिला एथलीट्स भी काफी बड़ी संख्या में आज प्रैक्टिस कर रही है। धन्यवाद।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान गुलाम अली जी।
5: शुक्रिया चेयरमैन सर, मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हमेशा कहीं षड्यंत्र से हमें हमारे युवाओं को खासकर नशा की लपेट में नस्ल कशी करना चाहता है। हमारे वहाँ हमारी जो यूथ मिनिस्ट्री है उसने बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ शुरू करे हैं और बच्चे जो हैं हमारे जो स्टोनिंग और उसमें मुलव्वस थे आज वो स्कूलों में और खेलकूद के जरिए बड़े बड़े अवार्ड लेके आ रहे हैं। मैं मिनिस्टर साहिबा को मुबारकबाद भी दूंगा और उनकी बहुत पार्टिसिपेशन रहती है और उनमें उत्साह रहता है खेलने का। मेरा मिनिस्टर साहिबा से क्वेश्चन है कि फिट इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विसेज का, नशा मुक्त के प्लेजेस भी हम लेते हैं, ड्रग फ्री इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, क्या नौजवान जो बच्चे बच्चियां हैं जम्मू कश्मीर के, क्या उनकी जो एक्सट्रीम लेवल पे चले गए हैं क्या उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशंस का जहां उनको मेन स्ट्रीम में फिर लाने का कोई प्रोग्राम, उस पर कुछ काम हुआ है? मैं उसकी जानकारी चाहूंगा। शुक्रिया।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि देश के युवा धन आज नशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसको बचाना उस समय की मांग है और न केवल सरकार लेकिन सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। वर्तमान समय में जिस तरह से एडिक्शन बढ़ रहा है, एडिक्शन के सामने मूवमेंट चलाने के लिए आज से एक साल पहले हमने सोचा कि देश के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसका बहुत बड़ा अनुयायी वर्ग होता है उसको भी उसमें शामिल करना चाहिए, स्कूल कॉलेजों को भी उसमें शामिल करना चाहिए।

0: इसलिए हमने वाराणसी में एक समिट करी थी, दो दिन की चिंतन बैठक करी थी और उसमें हमने तय करा कि आने वाले दिनों में हम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का कैंपेन को कैसे चलाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो आवश्यक है कि उसके देश के नागरिक फिट रहे, उसके देश के नागरिक स्वस्थ रहे। जब नागरिक स्वस्थ होगा तब सोसाइटी स्वस्थ होगी और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और इसलिए समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए, डेवलप कंट्री बनाने के लिए हमारे देश के युवा नशा से मुक्त हो, उसके लिए कई कार्यक्रम की श्रृंखला चलती है सरकार की ओर से। राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने हिसाब से रिहैबिलिटेशन सेंटर ये सब तो करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं, लेकिन हमने तय करा है 2 अगस्त को सारे देश में 100 वीक 2 साल के लिए बहुत बड़ा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कैंपेन ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी प्रारंभ करवा रहे हैं। एक ही साथ में देश के सभी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन एक मंच पर आ रहे हैं, देश के सब कॉलेज मंच पर आ रही है, यूनिवर्सिटी मंच एक मंच पर आ रही है और माय भारत के युवा उसको लीड कर रहे हैं। युवाओं ने अपने स्वयं को चिंता करी कि हम हमारे साथी को एडिक्शन से बचाए, नशा से बचाए। इसलिए 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी 10:30 बजे समग्र देश को संबोधित करेंगे और 1 करोड़ से अधिक युवा एक साथ में शपथ ग्रहण करेंगे कि हम तो नशा से मुक्त होंगे, लेकिन हम हर व्यक्ति एक एक व्यक्ति को नशा मुक्त करेंगे। एक कैंपेन हर वीक चलेगा, उसमें नुक्कड़ नाटक हो, उसमें क्विज कंपटीशन हो, उसमें पेंटिंग कंपटीशन हो, उसमें अलग अलग अलग सनडाउन साइकिलिंग के साथ उसको जोड़ा जाए, स्पोर्ट्स के साथ उसको जोड़ा जाए। हमें हमारे युवाओं को खेल के मैदान में लाना होगा, हमें हमारे युवाओं को में व्यापक अवेयरनेस लानी होगी और ये केवल सरकार नहीं कर पाएगी, उसमें सारी सोसाइटी सारे देश की जिम्मेवारी है। वो हमारा युवा है, देश का युवा है, देश का भविष्य है और यही हमारे देश के विकसित भारत के राहबर है और इसलिए देश के युवाओं को उसके साथ जोड़ के इस अभियान का प्रारंभ हो रहा है। सभी सम्मानित सदस्यों को मेरी प्रार्थना है, आप सब लोगों को भी लोकल लेवल पर इनविटेशन दिया जाएगा, जहां से भी आपको इनविटेशन मिले वहां आप उपस्थित रहे, युवाओं को प्रोत्साहित करें, हर वीक में कोई एक एक और एक कोई न कोई एक ऐसी एक्टिविटी करे जिसमें युवाओं के साथ नशा मुक्ति के लिए मेरे देश के जनप्रतिनिधि का भी संवाद हो, ताकि देश के युवा व्यसन मुक्त बने और विकसित भारत के राह पर राह पर आगे बढ़े। इस अभियान के साथ सभी को जुड़ने के लिए मेरी प्रार्थना है।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटेलदार।
2: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि ग्रामीण महिलाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
3: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में अस्मिता लीग्स की शुरुआत की थी कि जिसके माध्यम से आज पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे हम अस्मिता लीग्स का आयोजन कर रहे हैं और जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां या महिलाएं उनका पार्टिसिपेशन आज स्पोर्ट्स में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं आज इस हाउस को भी बताना चाहूंगी कि लगभग 3,500 से भी ज्यादा लीग्स आज तक हम करवा चुके हैं, 38 डिसिप्लिन में आज ये लीग्स हो रही है पूरे देश में और लगभग 6 लाख से भी ज्यादा महिलाओं ने इस लीग्स के माध्यम से पार्टिसिपेशन किया है और इन्हीं लीग्स के माध्यम से आज साई के सेंटर या स्टेट एक्सेलेंस जो सेंटर है हमारे स्पोर्ट्स के, उनमें इनका सिलेक्शन किया जाता है और जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं स्पोर्ट्स में आज आगे आते हुए दिखाई दे रही है, मेडल तक पहुंच रही है। और उसके साथ ही हमारे जितने भी साई के सेंटर है, स्टेट के साथ भी हम बात कर रहे हैं कि कोचेस जो महिलाओं की संख्या है कोचेस में, उनका भी प्रावधान ज्यादा से ज्यादा बढ़े कि जिसके माध्यम से एक अच्छा माहौल हम सभी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में महिलाओं खिलाड़ी के लिए दे पाए। धन्यवाद।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी।
4: हाल के वर्षों में हम अपने राज्य बिहार में देखते हैं कि सूखा नशा की प्रवृत्ति युवाओं में ज्यादा बढ़ी है, क्या सरकार इस बात से सहमत है? सरकार ने कोई स्टडी वहाँ इस विषय को ध्यान में रखकर कराया है? अगर नहीं कराया है तो सरकार कराएगी। एक दूसरा, लोगों के बीच इसके कारण को ढूंढते हुए विमर्श के रूप में बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है उससे भी कुछ लोग संबंध इसका जोड़कर देखते हैं कि क्योंकि शराबबंदी कानून लागू है इसलिए ड्रग लेने की प्रवृत्ति नशा के रूप में वहां के युवाओं में ज्यादा बढ़ी है, तो क्या शराब कानून लागू होने से भी कोई इसका संबंध है?

0: इस दृष्टि से भी कोई स्टडी कराना चाहेंगे?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
2: माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सार्वजनिक स्वीकार करने योग्य है कि नशा तो युवाओं में बढ़ रहा है और उसका समाधान करने के लिए हमें सामूहिक अभियान चलाना है, जिस उल्लेख में लास्ट क्वेश्चंस के रिप्लाई में कर चुका हूं। लेकिन जो पहले नशा था और बदलते समय में हेरोइन, सरस, उसके अलावा सिंथेटिक ड्रग्स, ये बहुत खतरनाक है, उसका उपयोग भी न्यू जनरेशन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नहीं, ऐसे कई टाइप की स्टडी ने ही ये बताया है और हम सार्वजनिक जीवन में देख भी रहे हैं कि उसको न्यू जनरेशन में स्कूल कॉलेज में भी उसका प्रवेश हो चुका है। चौराहे पर पान मसाला बेचने वाले शॉप पर भी ये चीजें जब हम खड़ा रहते हैं तब हमें पता चलता है। उसका समाधान कैसे करा जाए, उनके लिए दो ही रास्ता है। एक, कानूनी प्रावधान तो बहुत कुछ है और बदलते समय के साथ पब्लिक अवेयरनेस और काउंसलिंग, कई समस्या, उसके लिए हम कोई एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि क्या कारण है कि नशा बढ़ता जा रहा है, कई कारण है। आज बच्चे, उसकी स्थिति, उसका ट्रेस, उसकी जीवन शैली, ये सब एनवायरनमेंट जो आज वर्तमान सोशल मीडिया में दुनिया के साथ संपर्क में रहना और वहां जो कुछ हो रहा है उसकी इफेक्ट उसके मन मस्तिष्क में भी हो रही है। इसलिए ये सब स्थिति का एनालिसिस करके हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन एक खतरा हमारे सामने है, उसका समाधान जितना हो सके इतना करने की कोशिश करी है और आने वाले दिनों में सामूहिक चिंतन के आधार पर, सामूहिक रिसर्च के आधार पर, सतत उसके पर अध्ययन के आधार पर रास्ता तय करना होगा।
3: नाउ क्वेश्चन नंबर 125, डॉक्टर ज्योति नाथनाथ वॉक मारे।
4: क्वेश्चन नंबर 125।
5: प्रश्न संख्या 125, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 31.5 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों में महिलाओं की संख्या रिकॉर्ड 54% से अधिक हो जाने के उपरांत उन्हें वन टॉप सॉल्यूशन के माध्यम से केंद्रित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार की क्या योजना है? ख, क्या सरकार महाराष्ट्र सहित देश भर की कृषि, घरेलू कार्य तथा निर्माण क्षेत्रों में कार्यरत असंगठित महिला श्रमिकों को पालना योजना तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी पेंशन योजना से जोड़कर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सुनिश्चित कर रही है? और ग, मंत्रालय द्वारा ऐसी महिला श्रमिकों के लिए कौशल विकास, मातृत्व लाभ तथा सुरक्षित कार्य वातावरण, जल, सफाई एवं स्वच्छता और संरचना सुनिश्चित करने हेतु क्या विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं?
3: फर्स्ट सप्लीमेंट्री, यू कैन गो स्ट्रेट अवे।
4: आदरणीय सभापति महोदय, देश के निर्माण और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारी असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिक हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान देती है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूंगी कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले महिला श्रमिकों का शोषण न हो, उन्हें सुनिश्चित वेतन मिले, काम की जगह पर उन्हें सुरक्षा मिले, उनकी मैटरनल और मेंस्ट्रुअल हेल्थ की केयर हो, उनका ख्याल रखा जाए और महिला कामगारों के बच्चों के लिए पालना योजना अनिवार्य की जाए और सरकार के सभी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़ी महिला श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?
3: ऑनरेबल मिनिस्टर।
5: शोभा कारंदलाजे, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री।
6: माननीय चेयरमैन सर, पहली बार देश में 29 एक्ट को हम बदल के 4 कोड में लाए हैं, महिला का सुरक्षा इसी में है। ये 4 कोड में महिला के लिए हम एम्प्लॉयर्स कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं सर। महिला एंड पुरुष को एक साथ लेके जाना एंड एक ही पगार देना, जेंडर डिस्क्रिमिनेट को इसी में हम नकारा है। ऐसे ही महिला वो बच्चे का बात किया, वर्किंग जगह में क्रेश रखने के लिए ऐसे ही हम मैटरनिटी लीव पहले 8 महीने तक, अभी 26 वीक तक हम बढ़ाए हैं। एंड कोई पोस्ट मैटरनिटी में घर से काम करना चाहते हैं वो घर से भी काम कर सकते हैं। एंड 2 वीक का बीच में वो मैटरनिटी मेडिकल ब्रेक भी ले सकती है। ऐसे भी हम 3500 मैटरनल बेनिफिट भी उसको दे रहे हैं सर। एंड अभी फैमिली बोले तो केवल महिला नहीं है, कौन बच्चा पैदा करते हैं वो फैमिली

0: में एक्सटेंशन किया है, वुमेन एम्प्लॉय के साथ इसका इन-लॉज भी वो फैमिली में अभी आ रहे हैं। महिला का एम्प्लॉयमेंट कितना है देश में? हर साल महिला का अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है सर। अभी बार बार बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, मगर देश का सामने में एक आंकड़ रखना चाहती हूँ। ऑल इंडिया लेवल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 3.6% टू 3.1% इन इंडिया हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में। ऐसे ही यूथ का एम्प्लॉयमेंट भी अभी बढ़ रहा है, महिला का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है एंड वर्कफोर्स पॉपुलेशन भी बढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज फ्रॉम 54% इन 2022, इसका पहले का आंकड़ा ही नहीं है सर। हमारे देश में कोई आंकड़ा ही नहीं रखा है कितना एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में हम दे रहे हैं। पहली बार हम आंकड़ा लेने को शुरू किया, अभी वो बढ़कर 57.4% हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है सर। एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, उसका आंकड़ा किधर मिलता है? हमारा फॉर्मलाइजेशन करने के लिए भारत सरकार अभी तैयार किया, इसके कारण ईपीएफओ में 2007 to 2025 में ये केवल 8 साल का अंदर 8.23 करोड़ लोग सब्सक्राइब नया सब्सक्राइबर ईपीएफओ में बढ़ा है। नया सब्सक्राइबर पिछले साल लास्ट ईयर में वो नंबर था 1.69, लाइक इतना बड़ा रेट में हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इसके कारण है अलग अलग सर, हमें एमएसएमई को मदद दे रहे हैं। अभी एमएसएमई में उद्यम पोर्टल खोला हम, 9 करोड़ उद्यम पोर्टल में एंटरप्राइज जुड़े हैं। वो लोग बताया हम 39 करोड़ लोगों के लिए काम दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है। इसी में 40% महिला है सर, हमको बोलने के लिए खुशी होता है 40% इसी में महिला है। अभी एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा हो रहे हैं, महिला का ज्यादा हो रहा है। ऐसे ही स्टार्टअप्स केवल हम गिनती करते थे हाथ में, मगर अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 लाख स्टार्टअप्स के लिए भारत सरकार मदद दिया। इसके कारण नए बच्चे नए नौजवान युवती ये स्टार्टअप खोलने के लिए कर रहे हैं सर। मुद्रा में हम प्रधानमंत्री जी एक योजना शुरू किया, प्रधानमंत्री जी मुद्रा योजना, इसी में 3.8 करोड़ लोगों को हम जॉब दिया है एंड एंटरप्रेन्योर्स बनाया है। पीएमईजीपी में सर 97 लाख लोगों को पीएमईजीपी में हम एम्प्लॉयमेंट दिया है सर। इतना बड़ा नंबर में भारत सरकार एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए अभी एक योजना शुरू किया। अभी लास्ट महीने में प्रधानमंत्री जी पहले क्रंच का पैसा लोग एंटरप्रेन्योर्स एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज को दिया। वो योजना है प्रधानमंत्री जी विकसित भारत रोजगार योजना, इसी में हम 1 लाख करोड़ लगा रहे हैं। एंड किसके लिए? एम्प्लॉयर्स को भी मदद देना एंड नया एम्प्लॉय जुड़ा तो उसको भी मदद देने के लिए। इसीलिए मैंने बताना चाहती हूँ पूरे देश में महिला को एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए, जॉब दिलाने के लिए एंड सरकार में जॉब दिलाने के लिए 19 क्रेंचर्स सरकार का जॉब दिलाने का रोजगार महिला हम बनाए। इसमें 11 लाख लोगों को सरकारी नौकरी भारत सरकार ने दिया है।
1: सेकेंड सप्लीमेंट्री श्रीमती सीमा द्विवेदी जी।
2: माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अधिनियमित किया गया है जो 21 नवंबर 2025 से प्रवृत्त हुई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो इस अधिनियम में इसको प्रवृत्त किया गया है, इसमें महिलाओं को क्या क्या सुविधा दी जा रही है, इसके बारे में माननीय मंत्री जानना चाहती हूँ।
0: माननीय चेयरमैन सर, मैं अभी बताई 29 कानूनों को हम निकाल के और ब्रिटिश का समय का कानून था, हमारा देश वाले नहीं बनाए थे वो कानून, हम ऐसे रखे थे उसको हम पूरे निकाल के अभी 4 कोड में लाया है। इसी में बहुत बड़ा एंड अच्छा कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी कोड में महिलाओं के लिए हम पहले क्वेश्चन का आंसर में भी बताया सर, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते नया कोड में। एंड एक काम के लिए इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस, एंड इक्वल वेजेस देना इक्वल वर्क के लिए।

0: ऐसा हम किए हैं सर। ऐसे कोई भी बोर्ड हो, सरकार कुछ भी बोर्ड गठित करे और यानी इंडस्ट्री कुछ भी बोर्ड गठित करे, इसी में 1/3 उसी में बोर्ड में मेंबर्स महिला होना चाहिए। महिला का समस्या महिला ही जानती है, इसलिए महिला होना चाहिए, ऐसे ही प्रोविजन इसी में रखा है सर। मैटरनिटी लीव 26 वीक तक हम बढ़ाए हैं सर। वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन हम रखे हैं सर। ऐसे ही महिला को कहीं इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्रोविजन नहीं था। पहली बार महिला किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकती है, नाइट ड्यूटी भी कर सकती है, मगर उसका सुरक्षित का कायम रखना है ना, उसका सुरक्षित के लिए ध्यान रखना, ऐसा भी प्रोविजन हम रखे हैं सर। मेडिकल बोनस हम 3500 दे रहे हैं, नर्सिंग ब्रेक्स हम दे रहे हैं। ऐसे महिला का बच्चे के लिए क्रेश फैसिलिटी भी इंडस्ट्री के तहत और वर्किंग प्लेस में हम दे रही है। ऐसे ही सर हम ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ होम अरेंजमेंट्स फॉर फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ वुमेन वर्कर्स सेक्टर में स्टैंडिंग कमिटी बनाने के लिए हम इसी में रखा है सर। एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल, महिला के लिए अलग से ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल रखना चाहिए, ऐसे हम नया कोड में सोशल सिक्योरिटी कोड में महिला के लिए हम लाए हैं सर।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर धर्मशील गुप्ता जी।
2: माननीय सभापति महोदय आपका धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी महिलाएं काम करती हैं, रोजगार करती हैं, तो क्या बिहार में कितनी महिलाएं रोजगार कर रही हैं, या माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने रोजगार को बढ़ाया गया है, ये मैं जानना चाहती हूँ आदरणीय मंत्री जी से।
0: चेयरमैन सर, बिहार में ई श्रम पोर्टल में 3.2 करोड़ लोग जुड़े हैं। इसी में अलग अलग तरीके का लोग हैं। ई श्रम पोर्टल में जुड़ने वाले एग्रीकल्चर लेबरर्स है सर, विश्वकर्मी से, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, ऐसे ही सर्विस सेक्टर में कौन कौन काम करते वो है, ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन इसी में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स है, ऐसे अलग अलग तरीके का लोग बिहार में 3.23 करोड़ लोग जुड़े हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटीदार जी।
3: धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि लेबर कोड में महिलाओं के लिए क्या प्रोविजन रखा है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
0: कर दिया है, पहली बार महिला कोड में हम महिला के लिए प्रोविजन रखा है। महिला कोड देश का इतिहास में वो पहले बहुत साल से मांग था, लेबर कोड आना चाहिए। 2020 से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयत्न किया मगर नहीं हो पाया। पहली बार हमारा सरकार पिछले साल नवंबर 21 को पूरा देश में लेबर कोड को लागू किया। ये लेबर कोड में 4 कोड में महिला का विशेष प्रावधान हम रखा है सर, एंड महिला का सिक्योरिटी करने के लिए एंड इक्वल काम के लिए इक्वल वेजेस देने के लिए इसी में सब प्रोविजन है। मैंने पिछले आंसर में इसका सदन के नजर में लाया सर। थैंक यू।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 126 श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी।
4: क्वेश्चन नंबर 126 सर।
5: प्रश्न संख्या 126, क्या विधि और न्याय मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क गत 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सहायता तथा विधिक परामर्श प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है। ख आज की स्थिति के अनुसार देश के जिलों में स्थापित तथा कार्यरत विधिक सहायता बचाव परामर्श कार्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है। ग उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्गत निधि तथा तत्संबंधी उपयोग का ब्यौरा क्या है। और घ उक्त अवधि के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से संवितरित मुआवजे सहित अपराध के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
5: श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि एवं न्याय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार।
6: चेयरमैन सर, उत्तर सभा पटल पर रख दिया है। थैंक यू।
1: द फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी।
4: थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर, व्हाइल रिप्लाई इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, इट डज नॉट इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ द लीगल असिस्टेंस प्रोवाइडेड। सो माय पिन पॉइंट क्वेश्चन टू यू, हैज द गवर्नमेंट अंडरटेकन एनी

0: independent evaluation of the effectiveness of legal aid, including success rate, client satisfaction, or quality of representation provided to the beneficiary.
1: Honorable Minister.
2: धन्यवाद सभापति जी. माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से संबंधित है और इसमें कितना खर्चा हुआ, कितने लोग लाभार्थी हुए, ये जवाब इनको दे दिया गया है. मैं इस स्कीम के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि समाज के गरीब और वंचित वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन कर रखा है. ये जिलों में भी काम करते हैं, स्टेट में भी करते हैं. जब नेशनल लेवल पे करते हैं तो नालसा कहलाते हैं, जब राज्य स्तर पे करते हैं तो वो स्टेट का नाम से साथ उसको लीगल सर्विस अथॉरिटी से जोड़ देते हैं. डिस्ट्रिक्ट में वो डालसा कहलाते हैं, तालुका में भी काम करते हैं. जो संख्या ये पूछना चाह रहे हैं विगत तीन सालों में, तो 2023 और इसमें हमने 15.5 लाख इसमें लाभार्थी रहे, 24-25 में 16.5 लाख लाभार्थी रहे और 25-26 में 20 लाख लाभार्थी रहे. ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है. ये जो पूछना चाह रहे हैं कि क्या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से भी कोई आपने इवोल्यूशन करवाया है क्या, मैं ये इनको कहना चाहता हूं कि हर जगह सीएससी है, कॉमन सर्विस सेंटर, वहां पे न्याय बंधु प्रो बोनो जो गरीब हैं, दूर स्थानों पे रहते हैं, वकील कर नहीं सकते, उनको सरकार निःशुल्क ये विधिक सहायता देती है और उसमें एक कंसेप्ट है, हक हमारा भी है, उसके तहत हम काम करते हैं और इसका इवोल्यूशन भी हम कराते हैं. इतने लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए हैं और ये बहुत अच्छी योजना है गरीबों को न्याय के द्वार तक पहुंचाने के लिए. धन्यवाद.
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान सुभाषिस कुंदिया जी.
3: थैंक यू चेयरमैन सर. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ उड़ीसा के ट्राइबल क्षेत्रों के में स्थानीय भाषा में लीगल एड और लीगल अवेयरनेस सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं.
1: ऑनरेबल मिनिस्टर.
2: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं, अभी भाषिणी टूल हमारे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है. जितने भी हमारी भाषाएं हैं, जैसे 22 भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त है, तो संविधान भी हमने सभी भाषाओं में अनुवाद किया है और रीजनल जो भाषाएं हैं उनका भी भाषिणी टूल के माध्यम से आप भाषाओं का वो अनुवाद जान सकते हैं. लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी आपने देखा होगा कि अनुवाद जो है ज्यादा भाषाओं में हो रहा है. ये जो विषय आपने रखा है ये विषय जस्टिस से संबंधित ही है कि जो भाषा नहीं जानता है, जैसे अंग्रेजी में अधिकतर हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लोग बहस करते हैं, जो भाषा नहीं जानते हैं उनके लिए क्या भाषिणी टूल उसका एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है और इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद तेजी से काम हुआ है. भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए हम संस्कृति का विकास भी करेंगे, विरासत को भी बचाएंगे. धन्यवाद.
1: The House stands adjourned to meet at 2 PM.
4: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे. यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे. दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी.
5: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं. हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को है. अब से कुछ ही देर में सुनते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है।

की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है और मेडिकल सीटों में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। इससे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही मामलों की जांच 2 महीने और मुकदमे का निपटारा 3 महीने के भीतर करना होगा। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। भाजपा के बृजलाल ने कहा कि इस विधेयक में फास्ट ट्रैक अदालतों और विशेष कार्यबल का प्रावधान है। डीएमके के तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने नीट परीक्षा समाप्त करने की मांग की। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद जुर्माना